0: official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
4: अरे सारे तो सेम है।
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
4: ओ हाँ, ये तो अलग है।
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: Beta, 95% aaye?
7: Haan, mummy.
6: Good. Ab chaliye, papa, aap apna report card dikhaiye.
8: Mera?
6: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals, sare accounts updated?
8: वो
5: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
9: कफिंग और स्नीजिंग एट होम, योर एयर डक्ट्स मे बी टू ब्लेम, एंड क्लॉग्ड ड्राई वेंट्स कैन इवन कॉज फायर्स। डक्ट टाइम रिमूव्स डस्ट, पोलन, एलर्जेंस एंड लिंट, गिविंग यू क्लीनर एयर, बेटर हेल्थ, एनर्जी सेविंग्स एंड पीस ऑफ माइंड। Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
10: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
11: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
12: समझ नहीं आ रही, टिकट लू तो कहाँ से लू?
13: इट्स लॉसन।
12: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
13: इट्स लॉसन।
12: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
14: इट्स लॉसन ट्रेवल्स फॉर ऑल योर ट्रेवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे, 214-631-2458। द ट्रेवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रेवल।
9: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
5: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
15: Weekend ka plan abhi tak nahi bana? Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स ओल्ड टू गेम।

कैसे हैं आप सभी लोग? आपकी दुआ से मैं वापस आ गई हूँ. दिस इज योर फेवरेट होस्ट इपी द हिपी एंड यू गाइस आर लिसनिंग टू एन इवनिंग इन डेलस ओनली ऑन फन एजिया रेडियो 104.9 FM. हाँ जी, येस्टरडे आई वॉज आउट. एज आपको पता ही लग रहा होगा, मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी हो रखी है. आई वॉज अ लिटल अनवेल. मुझे थोड़ी सी वीकेंड पे थोड़ी सी जुकाम भी हो गई. थोड़ा सा जुकाम या थोड़ी सी जुकाम, अब मुझे हिंदी इतना ग्रामर नहीं आता, मतलब ग्रामर पे मत जाओ, फीलिंग पे जाओ, ठीक है? तो थोड़ा सा जुकाम भी हो गया था, जो अभी काफ़ी रिकवर हो रहा है. अगर आपको मेरी आवाज़ में सुनाई दे रहा है थोड़ा सा भारीपन है, आई साउंड सुपर. मुझे किसी ने एक टाइम पे बोला था, जब मुझे जुकाम होता है ना, या फिर मेरा गला जब ख़राब होता है, देन इट बिकम्स लाइक दिस रियली लो सेक्सी वॉइस. टोटली गाइस, आई एम ऑल फॉर इट, माइनस द एक्सेंट, माइनस दैट टेरेबल फेक एक्सेंट दैट आई जस्ट पुट ऑन बिकॉज आई थॉट इट साउंड्स फनी. बट मूविंग ऑन, हाउ हैव यू गाइज बिन डूइंग? आपका वीकेंड कैसा रहा? डिड यू गाइज गो टू द विशाल एंड शेखर कॉन्सर्ट ऑन संडे? आई हर्ड इट वॉज अमेजिंग. गाइज, आज कुछ अलग ही चीज़ हो रही है. यहाँ पे ना बड़े सारे कॉल्स आ रहे हैं मुझे. एक कॉल आई मुझे पूछते हुए यही कि भाई आज कौन सी मूवीज चल रही है. मैंने कहा मूवी? ये तो फन एजिया रेडियो है, आप कहाँ पे कॉल कर रहे हैं? एंड ही वाज लाइक, अच्छा, मुझे लगा ये मूवी थिएटर है. फन एशिया के ऑफिस में बहुत कुछ रंगीन चीज़ें होती है. तो आप तब तक के लिए ये गाना सुनिए.

गाइस, सपने देखना बहुत अच्छा होता है। आपको सपने देखना अच्छा लगता है? मुझे सपने देखना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उससे ज़्यादा अच्छा मुझे तो नींद भी अच्छी आती है कि अगर आप अच्छे अच्छे सपने आते हैं। डू यू नो द होल स्टोरी कि अगर आपको सपने आ रहे हैं, इफ़ यू आर ड्रीमिंग दैट मीन्स यू आर इन डीप स्लीप, दैट्स वाई यू आर एक्चुअली हैविंग दोज ड्रीम्स। ड्रीम्स की बात करते हुए गाइज, ड्रीम होम मॉर्गेज, योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक विद ड्रीम होम मॉर्गेज। सिंस 1998, ड्रीम होम मॉर्गेज हैज हेल्प्ड फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री टर्न होम ओनरशिप इन टू रियालिटी विद पर्सनलाइज मॉर्गेज सोल्यूशन एंड ए स्मूद एंड स्ट्रेस फ्री प्रोसेस। इफ यू लुकिंग टू बाय अ हाउस इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और फ्यू वीक्स और अ ईयर, यू मस्ट गिव अ कॉल टू ड्रीम होम मॉर्गेज। दे आर लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स। देयर एक्सपीरियंस टीम इज कमिटेड टू फाइंडिंग द राइट loan options tailored to your needs, whether you're buying your first home, upgrading or refinancing. To start your journey today with confidence, call 972-245-5626 and or visit dreamhomemortgage.com for more details. Dream Home Mortgage, making dream homes happen. So guys, agar aap ghar khareedne ka soch rahe hain, then make sure you give them a call. Abhi aapko gaana bajate bajate mujhe badi ek interesting si call aayi. भाई आप ऑडियंस में, आई लव कि मेरी ऑडियंस इतनी इंटरैक्टिव है। आप लोग सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, आप मुझे बोलते भी हैं, मतलब कॉल करके सजेशंस भी देते हैं और ये भी बोलते हैं कि भाई आपकी आवाज़ हमें पता तो नहीं खांसी हुआ है कि नहीं, पर ये ज़रूर लग रहा है कि दारू पीकर आया। वेल यू नो वॉट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर थिंकिंग दैट। कभी कभार इट्स नाइस टू यू नो लेट गो अ लिटल बिट, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कोई दारू शारू नहीं पी के आई हूँ, क्योंकि पता है क्या मेरा फिलॉसफी क्या है, आई एम ऑन दिस लाइक हेल्थ जर्नी राइट नाउ। और पता है दारू में कितनी कैलोरीज होती हैं, और मैं ना अपनी कैलोरीज लिख के खाती हूँ रोज़ कि आज मैंने एक टोस्ट खाया या दो टोस्ट खाया या दो अंडे खाए। आई एम दैट काइंड ऑफ अ वियर्ड पर्सन लाइक दैट। तो दारू में जितनी कैलोरीज होती है उसमें से उसकी जगह पे आप एक पीस ऑफ चॉकलेट खा सकते हो, सेम कैलोरीज होती है। इसीलिए अगर कोई मुझे दारू और डिजर्ट के बीच में ऑप्शन देगा तो मैं हमेशा डिजर्ट ही चूज करूंगी। तो इसलिए मैं आजकल दारू पीती नहीं हूँ, बट थैंक यू फॉर थिंकिंग कि मैं दारू पी कर आई हूँ, क्योंकि मैं लाइफ, आई एम हाई ऑन लाइफ यू गाइस, मुझे दारू पीने की जरूरत ही नहीं है। बिकॉज आई लाइक टू लिव अ हैप्पी लाइफ एंड आई लाइक टू हैव फन एंड आई मेक श्योर यू गाइज हैव फन वेन यू आर लिसनिंग टू माई शो हियर ऑन फनीशा रेडियो 104.9 FM एंड दिस इज इपी द हिपी।

अदिति तो थोड़ा वेट कर सकती है गाइस, है ना? तो हम अपनी बात करते हैं, अदिति थोड़ा वेट करेगी, तब तक हम अपनी बातें करते हैं। आपको पता है कि टैक्स इज वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, एंड यू नो जितने भी फाइनेंशियल गुरुज है ना, उनको ये लगता है, आई मीन एटलीस्ट मैं जितने कोई वीडियोस देखती हूँ, उनको सबको ये लगता है कि इट इज रियली डिफिकल्ट टू, अरे ये क्या हो रहा है बैकग्राउंड में, इतना कुछ चल रहा है गाइस, आज कुछ अलग ही सीन हो रहा है, तो लेट्स नॉट गेट ओवर दैट। तो मैं कह रही थी कि अ लॉट ऑफ दीज फाइनेंशियल गुरुज दैट आई लिसन टू, सम ऑफ दीज गाइज आर अमित सेठी, केलब हैमर वगैरह वगैरह, एंड वी ऑलरेडी नो ऑल ऑफ दीज, दे ऑल से दैट इट इज इम्पॉसिबल इन टूडेज टाइम्स टू ग्रो योर वेल्थ बाय जस्ट सेविंग। सो इफ यू वॉन्ट टू ग्रो योर वेल्थ एंड इफ यू वॉन्ट यू नो राइज अप इन द फाइनेंशियल एस्पेक्ट, देन यू नीड टू रियली स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड यू नीड टू बिल्ड स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज। दैट इज वेर माई टाइम इक्विटी कम्स इन टू पिक्चर। माई टाइम इक्विटी इट इज लेड बाय CPA सुधीर पाई एंड हेल्प्स इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज बिल्ड स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल इस्टेट अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ ढूंढ रहे हैं, रिटायरमेंट ढूंढ रहे हैं, या फिर अगर आप जस्ट इफ यू आर जस्ट लुकिंग टू ग्रो योर इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्ट इन अ रॉथ IRA, व्हाट स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन वगैरह वगैरह, माई टाइम इक्विटी ऑफर्स पर्सनलाइज सोल्यूशंस डिजाइन अराउंड योर गोल्स। विजिट mytimeequity.com और कॉल 4697021272 टूडे। ठीक है, वी आर अबाउट टू गो इन टू अ ब्रेक इन अबाउट 6 मिनट्स, तब तक के लिए आप ये गाने सुनिए एंड देन वील कम बैक एंड लिसन टू मोर स्टफ।

0: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
1: हाँ।
0: घर रिलोकेट करनी है?
1: हाँ।
0: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
1: हाँ भाई हाँ।
0: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
2: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
3: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
4: Kya matlab?
5: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
5: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
4: Ab to karna hi padega, madam.
6: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
8: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
7: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
8: Papri chaat se malpua rabri tak, har dish mein mile zindagi ke flavors ka asli swaad. Visit their new website or download the Flavor Lounge app for exclusive deals. The Flavor Lounge, har bhai super hit.
9: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At shopcompareinsure.com, we are not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship and access to top-rated products like annuities, term life, whole life and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
10: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
11: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Funasia Radio.
12: Hi, this is Ippy Roy. I'm not Akshay Kumar, but this is Ippy Roy, your one and only Ippy the Hippie, only on Funasia Radio 104.9 FM. And you are listening to my show, An Evening in Dallas. भाई आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो इसीलिए आई विल फोकस ऑन प्लेइंग मोर म्यूजिक एंड डूइंग लेस टॉकिंग. लेकिन वो बोलते हुए आई मस्ट रिमाइंड यू गाइस दैट फ्रेंड्स, आज ये पूरा हफ्ता, एक्चुअली ये पूरा महीना शायद आपका लकी मंथ है, क्योंकि हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, पूरे तीन गिव अवे हैं. दैट्स राइट, सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज ऑल द गिव अवेज हैपन फ्रॉम 8 PM टू 9 PM. सो मेक श्योर यू आर ट्यूनिंग इन सो यू कैन विन सम फ्री प्राइजेस. ओके, तब तक के लिए आप ये गाना सुने, दिस इज माई सॉन्ग, क्योंकि व्हाई नॉट.

Friends, I knew there was something amazing when Zoran Mamdani was elected as the mayor of New York. I mean, some things that he has done is so incredible. और मेरे ना Instagram पे ये चीज आ रही है बार बार और मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है. आपको कभी लगता है कि आप किसी भी जैसे किसी चीज के लिए आप साइन अप करते हो, जिम मेंबरशिप है या कोई भी फूड सर्विस की मेंबरशिप है, जैसे यू नो आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स बिकॉज रेडियो पे वो अलाउड नहीं होता, बट एनीथिंग दैट इज अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस, ठीक है, मतलब चाहे वो प्राइम की भी सब्सक्रिप्शन क्यों ना हो. तो कई बार क्या होता है ना, वो सब्सक्रिप्शन आप जब लेते हैं तब आपको लगता है कि नहीं नहीं आई विल यूज इट, बट कुछ महीने यूज करने के बाद यू आर लाइक मैन आई डोंट इवन यूज दिस, ये पता नहीं क्यों मैं फालतू में पैसे $30-35 महीने के दे रहा हूँ या दे रही हूँ. तो ममदानी स्टार्टेड दिस थिंग वे ही इन क्रिएटेड दिस न्यू रूल विच इज कॉल्ड क्लिक टू कैंसिल रूल टू बैन सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स. मतलब अगर आप ऐसे सब्सक्रिप्शन में फंस गए हैं, हर बार आप कैंसिल बटन हिट करते हैं वो लोग कॉल करते हैं, वो कहते हैं कि हम आपको एक महीना फ्री दे देंगे, यू डोंट हैव टू कैंसिल. तो आप उसके उसमें आ जाते हैं कि नहीं चलो फ्री महीना हो रहा है, फिर आप कैंसिल करना भूल जाते हैं. तो ममदानी हैज़ कम अक्रॉस दिस. कई बार तो जिम मेंबरशिप्स अनलेस यू आर मूविंग दे डोंट लेट यू कैंसिल द मेंबरशिप्स, मेरा खुद का एक्सपीरियंस हो रहा है. तो दिस रूल इज सच अ ब्रिलियंट आइडिया. आई फील लाइक यू जस्ट हिट अ बटन एंड यू क्लिक एंड यू कैंसिल. Isn't that amazing? And another really cool thing that I came across today was Mamdani launches free parents night out scheme, okay, which is a free like daycare center, night care center, whatever you can say that, free care center for children where parents can leave them, because we all know that child care is expensive. Matlab Dallas mein ho, chahe New York mein ho ya kahin bhi ho, minimum pricing if you want a babysitter or if you want somebody to come and watch your kids so you can have a date night out with your husband or your partner is around $20-30 per hour, which is really expensive. Agar aap child care mein utna de rahe ho to aapke paas date night mein jaane ke liye paise nahi bachte fir, hai na? Don't you think so? I think offering that is such a good idea. I think Texas should have that too. What do you say? I think Dallas should have that, or Frisco ya Plano. वहाँ पे तो यू नो द मेयर्स डेफिनेटली, इफ यू गाइस आर लिसनिंग, यू आई नो यू डिड एडवर्टाइजिंग ऑन फनेशिया, यू शुड हैव दैट फॉर आवर पेरेंट्स ओवर हियर बिकॉज पेरेंट्स डिजर्व अ नाइट आउट.

भाई अभी आप सबको गाना प्ले करते करते मुझे बड़ी अच्छी एक कॉल आई आनंद जी, आनंद पटेल जी की, हु हैज़ बिन इन डैलस फॉर द लास्ट 34 ईयर्स। तो उनको भी बड़ी खुशी हुई कि ममदानी जी ने ही मेड चाइल्ड केयर फ्री फॉर पेरेंट्स हु वॉन्ट टू गो आउट ऑन डेट नाइट्स, एंड दैट ही सेड दैट इट्स सच एन अमेजिंग थिंग। होप डैलस में नहीं होगा क्योंकि यू नो इट्स नॉट द सेम पोलिटिकल थिंग, बट वी डोंट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स ओवर हियर। बट ही सेड, और उन्होंने मुझे ये एम्फसाइज करके बोला कि प्लीज बोलना जरूर कि ही सेज दैट ममतानी इज अ रियल हिंदुस्तानी बिकॉज ही मेड दिस। भाई आई डोंट नो अबाउट हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, क्योंकि हम फन एशिया के लोग हैं, यहाँ पे हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी को एड्रेस करते हैं। लेकिन आई विल टेल यू दिस, ही इज सच ए गुड ह्यूमन बींग एंड सच ए ग्रेट पोलिटिकल लीडर। आई डोंट नो अबाउट कंट्री एंड ऑल दैट, क्योंकि हम वो सब बाउंड्रीज को आगे भूल जाते हैं, बिकॉज बाई द एंड ऑफ इट हम सारे वी आर पीपल ऑफ द वर्ल्ड, वी आर पीपल ऑफ द यूनिवर्स। गॉड, देयर इज ओनली वन गॉड, जो भी है आप उसको कुछ कुछ अलग अलग नाम में बोलते हैं, जो भी है, मेरा ये मानना है कि ह्यूमैनिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यू हैव टू बी अ रियली गुड पर्सन इन ऑर्डर टू बी अ रियली गुड पोलिटिकल लीडर एंड टू थिंक अबाउट ऑल दीज अमेजिंग थिंग्स एंड पॉलिसीज, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रेस, ऑल ऑफ दैट थिंग, है ना? ये सारी चीज़ें डजेंट मैटर, लेकिन जब आप ये अच्छी चीज़ें करते हैं देन वी ऑल कैन सी इट।

0: एंड वी आर बैक गाइस. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हम लोग 8 to 9 PM तक वील प्ले लॉट्स ऑफ गेम्स. लॉट्स ऑफ तो नहीं, 3 गेम्स तो पक्का हम खेलेंगे, जिसमें है 2 giveaways, एक्चुअली 3 giveaways. 2 हमारा है फ्रॉम द कॉपी कैट चैलेंज एंड 1 इज फ्रॉम कंप्लीट द बॉलीवुड डायलॉग. तो वेयर आई टेस्ट योर बॉलीवुड नॉलेज कि आपने कितनी मूवीज देखी है कि नहीं, है ना. तो यू विल कंप्लीट दैट. लेकिन जाने से पहले गाइज, अगर आप कभी भी गाड़ी के एक्सीडेंट में फंस जाते हैं, इफ़ यू आर एवर स्टक इन अ कार एक्सीडेंट और समथिंग दैट यू नो इज नॉट योर फॉल्ट एंड समथिंग मेजर हैज हैपेंड एंड यू फील लाइक यू डिजर्व सम कॉम्पेंसेशन, देन यू नीड टू कॉल अटर्नी ओमर ख्वाजा. ही विल कम एंड फाइट योर केस. ही विल हेल्प यू गेट द कॉम्पेंसेशन दैट यू डिजर्व, बिकॉज डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज कैन बी वेरी वेरी स्ट्रेसफुल एंड यू नीड एन अटर्नी दैट विल मेक श्योर दैट यू आर कॉम्पेंसेटेड. You don't pay until you actually win. For a free consultation, call 469-300-5046 or visit attorneyomer.com. So guys, make sure you call Attorney Omer Khwaja if you are ever in trouble. Call the police and then call attorney, okay? Then he will sort it out for you. That's all. Easy peasy, lemon squeezy.
1: Today is a, there is a link between January 16th espionage case and the stolen art pieces from the National Museum. The Ministry for the Interior has revealed...

He goes to catch this criminal, which is why you heard that news kind of thing in the beginning, जो कि गाने के उसमें बज रहा था. And then he goes to catch this girl who is like a prime suspect with something. They didn't mention what was her crime, but she was a criminal. And then he falls in love with the criminal that he's trying to catch. I mean, I know there are a lot of movies based on that, but I think it is so wild. It is literally so wild to know that you are falling in love with a red flag and then you are still pursuing the relationship. I mean, come on. अगर क्या आप जानबूझ के किसी क्रिमिनल के साथ प्यार कंटिन्यू करेंगे या रिलेशनशिप बढ़ाएंगे? आपको आप क्या करोगे? आप ये बताओ. मैं तो कभी नहीं करूंगी भाई. आई लाइक टू बी सेफ. कल को पता नहीं क्रिमिनल अपने उसमें सिचुएशन में कैसे आ जाए. ऑफ कोर्स सब अपने क्राइम्स के अपने अपने रीजंस होते हैं. नॉट एवरीवन यू नो डिसाइड्स कि यू नो दे वांट टू बी अ क्रिमिनल. लेकिन दैट बीइंग सेड, कई बार आंखें खोल के डिसीजंस लेनी पड़ती है. एंड आई एम वेरी प्रैक्टिकल व्हेन इट कम्स टू ऑल दिस. तो व्हाट डू यू थिंक?

गाइस, आपने वो वाले गाने का वीडियो देखा है कभी? टू थिंक अबाउट इट, अगर आपने वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो गो चेक इट आउट. दैट सॉन्ग वॉज कॉल्ड तेरे मेरे साथ जो होता है बाय लकी अली. उसमें दिखा रहे हैं कि लकी अली इज बेसिकली लाइक सम काइंड ऑफ अ डिटेक्टिव और अ बाउंटी हंटर, एंड देन

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
3: Call 857-891-8942 today.
4: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
5: लिया.
4: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
5: नहीं आया.
4: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jamani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
6: Visit www.sanadainc.com today.
7: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
8: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है. चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
9: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
10: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
11: ये तारा वो तारा हर तारा.
12: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
17: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
18: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
19: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
20: Calculating route, rerouting.
19: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
20: Look
3: लोकेशन अपग्रेडेड नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ
5: क्यों
3: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ
5: अच्छा तो सीधा वही ले चलो
6: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ स्विच द रूट
3: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड
20: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.
21: And we are back, friends. जैसे मैंने आपको बोला था, 8 to 9 p.m. हमारा giveaway होगा, so stay tuned because the giveaway is going to start in just a short while. लेकिन उसके पहले, you guys are listening to Hippie the Hippie on Fun Asia Radio 104.9 FM, and I'm going to be here with you for the next 2 hours. 8 से 10 बजे तक विद लॉट्स ऑफ अमेजिंग म्यूजिक एंड लॉट्स ऑफ फन चैट फ्रॉम 9 o'clock टू 10 o'clock आज हम सुनेंगे एक स्टोरी इट्स अ रियली कॉन्ट्रोवर्शियल लव स्टोरी ऑफ टू पीपल द टू पीपल आर मिर्सेया एलियादे एंड मैत्री देवी ड्यूरिंग अ टाइम वेयर इंटर रेशियल और इंटर कास्ट मैरिजेस वर लाइक अ बिग नो नो दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट कोलोनियल इंडिया We will talk about this incredible story about these two people. And both of them, fun fact, both of them wrote a book from each other's perspectives and each other's narratives. Lekin wo sab sunne ke liye, you have to keep listening to my show. This is Ippy the Hippie on Fun Asia Radio 104.9 FM. And this is my show.

0: Hi.
1: Hello.
0: Yes.
1: Okay, first of all, tell me your name and then tell me the correct answer.
0: The movie name is Tamasha.
1: नहीं, मूवी नेम तो मैंने ही बता दिया आपको, वो बेशरम है मूवी का नाम. गाना गाना कौन सा है, द हिंदी वाला गाना?
0: Oh,
1: मूवी का
0: I
1: नाम तो
0: don't know.
1: मैंने ही बता दिया.
0: Okay.
1: मूवी तो बेशरम है, वो तो मेरा हिंट था, बट कोई बात नहीं, थैंक यू फॉर कॉलिंग. हाय, यू आर ऑन एयर, कैन यू हियर मी?
0: Yeah, I can.
1: ओके, सो टेल मी योर नेम एंड देन टेल मी द नेम, द करेक्ट आंसर.
0: Yeah, my name is Sandeep. Correct answer is, I think, Love Ki Ghanti.
1: That is absolutely correct. Woo-hoo! Congratulations! ताली बजाते हैं, चलो. Congratulations,
0: सब कुछ
1: संदीप
0: आपने
1: जी.
0: बता ही दिया था.
1: हाँ, मैंने इतना बड़ा हिंट दिया था क्योंकि मुझे लगा लोगों को मिलेगा नहीं, मतलब आया थोड़ा मुश्किल ही होगा. तो संदीप जी, स्टे ऑन द लाइन, मैं ये गाना बैकग्राउंड में बजाती हूँ एंड देन आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन आफ्टर दैट, ठीक है?
0: ओके श्योर.
1: ओके, स्टे ऑन द लाइन गाइज. आप ये गाना एंजॉय करिए, जो जो गाना एक्चुअली क्विज का था. मे बी नेक्स्ट टाइम यू कैन आंसर.

0: गाइस दैट वाज कोमोरेबी विद चंदा. अगर आपको नहीं पता हु कोमोरेबी इज, शी इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड दिस वाज हर ओन सॉन्ग दैट शी रोट एंड शी सैंग ऑन इट हरसेल्फ. तो इट हैज 600,000 व्यूज ऑन यूट्यूब, सो मेक श्योर यू गो चेक इट आउट एंड वी आर गोइंग टू ब्रेक नाउ.
1: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
2: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. Luxury brilliance celebration. Tanmay Jewelers in Irving. Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
3: Zindagi ek safar hai suhana. यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
4: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम. 9191 Survey, Suite 205, Frisco.
5: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
6: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
7: इट्स लॉसन.
6: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
7: इट्स लॉसन.
6: डैडी व्हाट इज द लॉ?
8: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स. गिव देम अ कॉल टुडे. 214-631-2458. द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल.
9: जिंदगी एक रंगमंच है
10: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल. असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो. पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल. हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ.
4: कॉल 972-897-1530. firstunitedtexastitle.com. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
2: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
4: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी.
2: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
11: Hi, I'm Rajkumar Rao, and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
0: And guys, we are back. You guys are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, and this is your bestie, Ippy the Hippie, with my show, An Evening in Dallas. भाई जितनी जितनी रात बढ़ती जा रही है मेरी आवाज़ के उतने ही 12 बजते जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगी बातें कम, क्योंकि मुझे कल भी आना है, परसों भी आना है, और तरसों और सरसों और नरसों तो कोई वर्ड्स नहीं होते हैं, लेकिन हमने उसको बना ली है. बचपन से मुझे आदत रहती है शेक्सपियर की तरह नए नए शब्द बनाने की. तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगी कि आपको एंटरटेन करूँ फॉर द नेक्स्ट 2 डेज एटलीस्ट, ताकि मेरी आवाज़ वापस अपनी फुल एक्साइटमेंट में और जान में जान आके बिल्कुल एकदम यू नो सॉलिड तरीके से मैं बोल सकूं, आपको एंटरटेन कर सकूं, है ना. तो गाइस, जैसे मैंने आपको बोला था, 8:30 इज आवर टाइम फॉर आवर सेकंड गिव अवे. लेकिन आपने इतने एड सुने हैं, आई एम श्योर आपको मेरी आवाज नहीं सुननी है, तो इसीलिए एक गाना सुनते हैं फिर उसके बाद आके गिव अवे करते हैं. ओके, दिस इज ए न्यू सॉन्ग. आई डोंट नो इफ यू हर्ड ऑफ दिस, इट ओनली केम आउट लाइक 3 weeks अगो. सलीम सुलेमान हमको सबको ऑलरेडी पता है, दे आर लाइक रियली फेमस बॉलीवुड कंपोजर्स. दे ऑल्सो हैव देयर ओन लेबल, अगर आपको नहीं पता. दे कोलैबोरेट विथ नॉट सो फेमस आर्टिस्ट and pretty famous artists too, and they release their individual songs, their independent songs on their own label, and they put out a video and everything. So this is actually not from a movie. This is Saleem Suleiman featuring Shreya Ghoshal and Papon with the song Pehle Kyun Na Mile, and it features a beautiful string section on a choir. I hope you enjoy this one.

0: इतना प्यारा गाना था ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सारे गाने सुनना. आई मीन सॉन्ग्स दैट वी डोंट नो बट दे आर ऑल्सो सो ब्यूटिफुल, है ना. आई लव इट. आई लव गेटिंग इंट्रोड्यूस टू न्यू थिंग्स बिकॉज आई लव लर्निंग. दैट्स माई फेवरेट थिंग टू डू. लर्निंग से याद आया गाइज, आपने अपनी बॉलीवुड लर्निंग करी है कि नहीं आज? टुडे इज ट्रिविया क्वेश्चन, कंप्लीट द डायलॉग एंड दिस इज फॉर ए गिव अवे फ्रॉम इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ. हियर इज योर चांस टू विन ए स्पेशल ग्रोसरी हैम्पर फ्रॉम इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर इंडियन ग्रोसरीज, फ्रेश प्रोड्यूस, स्पाइसेस, स्नैक्स एंड ऑल योर डेली एसेंशियल्स. India Bazaar, they are located at 5152 Quadrant Way in Fort Worth. For people living in Fort Worth, Keller, Hurst, Haslett, Roanoke, South Lake, agar aap us area ke aas paas hain, then you must make sure that you go to India Bazaar in Fort Worth. Bhai, giveaway bhi India Bazaar se hi hai. So you can win a grocery hamper, like I said. So, the game is super simple. Main ek dialogue bolungi, bahut hi famous dialogue hoga. I am sure aap sabhi ko pata hai. आपको वो डायलॉग कंप्लीट करना है एग्जैक्टली द वे इट इज सेड इन द मूवी. ओके, और ये तो बहुत ही इजी सा डायलॉग है, ये मतलब कोई आप गड़बड़ कर ही नहीं सकते हो. इतनी फेमस मूवी का है, अमिताभ बच्चन की मूवी का है, तो देयर इज नो वे यू कैन डू गड़बड़ इन दिस. तो गाइज, माई फोन नंबर इज 9722355555. तो खेले एंड हियर वी गो. तो डायलॉग गोज समथिंग लाइक दिस. डॉन का इंतजार तो ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक पूरा करना पड़ेगा, ठीक है. डॉन का इंतजार तो, आई विल गिव यू द नेक्स्ट वर्ड आल्सो, बारह. डॉन का इंतजार तो बारह, एंड कंप्लीट द डायलॉग. कॉल मी एंड टेल मी. ओके, एंड हियर वी हैव आवर फर्स्ट कॉलर. हाय, कैन यू हियर मी?
1: डॉन को
0: पहले तो अपना नाम बताइए, पहले नाम बताइए अपना.
1: हिमांशु
0: जी, अब पूरा डायलॉग एग्जैक्टली जैसे है वैसे ही बोलना पड़ेगा. गो फॉर इट.
1: या डॉन को सारा इंतजार कर रही है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं ना मुश्किल है.
0: थोड़ा आपने जिस्ट तो पकड़ लिया, बट एग्जैक्टली वो डायलॉग नहीं था, बट गुड ट्राई, वेरी गुड ट्राई. थैंक यू फॉर कॉलिंग हिमांशु जी. Hi, you're on air. Can you hear me? Hello? Hi, you're on air. Can you hear me?
2: Yeah, I can hear you.
3: You're on air. Okay. Can you hear me?
0: Can you turn off the radio in the background?
2: Oh, yeah. Can you hear me now better?
0: Yeah, so much better. So, aap pehle apna naam bataiye and then tell me the dialogue exactly the way it is.
2: मेरा नाम मोनिका है और डायलॉग जो आपने पूछा है वो है, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है.
0: आपने बहुत सही बोला, लेकिन उसमें दो एक वर्ड तो पूरा ही गलत था. और
2: मतलब डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. इसमें क्या गलत है?
0: इसमें है एक गलत, पर वो मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि मैं ऑन एयर हूँ. अगर मैं बता दूंगी तो बाकी सबको आंसर पता चल जाएगा.
2: नहीं, मतलब मुझे लगा यही था.
0: क्लोज, वेरी क्लोज. आप 80% हो वहाँ पे, 80%.
2: चलो मैं सुनने का वेट करती हूँ. सही है.
0: Hi, thank you for calling. पहले तो अपना नाम बताइए and then tell me the correct answer.
4: Yeah, hi, my name is Kiran and the correct answer is 12 मुल्कों की पुलिस कर रही है.
0: लेकिन पूरा डायलॉग तो बोलिए.
4: वो इतना नहीं था.
0: नहीं, इतना नहीं था, पूरा डायलॉग बोलना था. डॉन का इंतजार,
4: मतलब जो आपने बोला था स्टार्टिंग.
0: हाँ, मैंने स्टार्टिंग में बोला था डॉन का इंतजार तो
4: 12 मुल्कों की पुलिस कर रही है.
0: उसके बाद भी एक थोड़ा सा फ्रेज है, उसके बाद का क्या है?
4: ओ अच्छा,
0: नहीं कोई बात नहीं. गुड ट्राई, गुड ट्राई, थैंक यू फॉर कॉलिंग. गाइस, अगर आप कॉल कर रहे हैं तो ओके, आ गया कॉल. हाय, कैन यू हियर मी? ओ हाय, कैन यू हियर मी?
1: यस.
0: ओके, तो आप पहले अपना नाम बताइए एंड देन टेल मी द करेक्ट आंसर.
1: डॉन का तारकुब तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन कभी किसी के हाथ में आएगा.
0: अरे, सो क्लोज बट नॉट एग्जैक्टली. यार, ये तो बड़ा आसान वाला डायलॉग है ये तो, मतलब ओके, आई एम थैंक यू फॉर ट्राइंग दो, बट दैट वाज वेरी क्लोज. हाय, थैंक यू.
2: सो क्लोज, नॉट एग्जैक्टली.
3: यार ये तो बड़ा आसान गाना
0: है। हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना रेडियो बैकग्राउंड में बंद कर दीजिए क्योंकि मुझे अपनी आवाज आ रही है।
3: या हाय।
0: ओके हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी योर नेम एंड देन टेल मी द डायलॉग एग्जैक्टली।
3: ओके, माय नेम इज सुषमा।
0: सुषमा जी गो फॉर इट।
3: डॉन का इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
0: यू नो व्हाट, इसमें एक वर्ड गड़बड़ा है, जो वर्ड मैंने एक्चुअली फिक्स भी कर दिया था अर्लियर, बट बिकॉज
3: डॉन को पकड़ना 12 मुल्कों की पुलिस कर रही है।
0: यस दैट इज करेक्ट, पूरा बोलो अब।
3: डॉन का इंतजार 12 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
0: वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस, फाइनली हमारा गिव अवे कोई जीत गया। ओके सुषमा जी स्टे ऑन द लाइन, आई एम गोइंग टू प्ले अ सॉन्ग, ठीक है? तब तक के लिए आप लाइन पे बने रहिए एंड देन आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन। गाइज एंजॉय द सॉन्ग इन द मीन टाइम।

गाइस कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। और ब्रेक हम जाएंगे 10 मिनट में, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हम अब दूसरा एक्सक्यूज मी ओह माय गुडनेस भाई, मैंने मैंने मजाक नहीं करी थी जब मैंने बोला था आई एम एक्चुअली अ लिटिल बिट सिक, तो मुझे छींक आ गई बोलते बोलते। लेकिन गाइस जो मैं बोल रही थी कि जाने से पहले मैंने आपको बोला था हम तीन तीन गिव अवे खेलेंगे, तो गाइस दिस इज टाइम फॉर आवर थर्ड गिव अवे विदाउट एनी ब्रेक्स, क्योंकि 9 बजने वाले हैं और मुझे 9 बजे के पहले ख़त्म करना है बिकॉज दैट्स माई पॉलिसी। ओके, तो दिस इज आवर थर्ड गिव अवे फॉर दिस इवनिंग। दिस इज फ्रॉम रेड हॉट चिली पेपर। अगर आपको रेड हॉट चिली पेपर नहीं पता, दे आर वन ऑफ डैलस बेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट्स। दे आर लोकेटेड इन मल्टीपल लोकेशंस, लेकिन हमारा गिव अवे इज ओनली वैलिड इन रिचर्डसन, मिकिनी और एलन वाले लोकेशन पे, नॉट इन द फ्रिस्को लोकेशन। ठीक है, तो आप क्या जीत सकते हैं? यू कैन विन ए ड्राई चिली चिकन,

वैलिड इन रिचर्डसन, मिकिनी और एलन वाले लोकेशन पे, नॉट इन द फ्रिस्को लोकेशन. ठीक है, तो आप क्या जीत सकते हैं? यू कैन विन ए ड्राई चिली चिकन, चिली बेबी कॉर्न और डैलस बेस्ट बटर चिकन, दैट इज RHCP चिकन मक्खन वाला, यम यम यम. यू कैन पिक अप दीज डिशेज फ्रॉम रिचर्डसन, मिकिनी और एलन. ठीक है, प्लीज मेक श्योर यू हैव नॉट वन दिस गिव अवे और एनी अदर गिव अवे फ्रॉम फनेशिया इन द लास्ट 1 month, बिकॉज वी वॉन्ट बी फेयर, राइट? ऐसा कुछ मिलना चाहिए चांस जीतने का. तो गाइज, दिस इज बॉलीवुड कॉपी कैट सॉन्ग. माई नंबर इज 9722355555 एंड हियर वी गो. आई विल प्ले ए सॉन्ग और आप मुझे बोलेंगे वट बॉलीवुड सॉन्ग डज दैट सॉन्ग साउंड लाइक. ठीक है, हियर वी गो. सुन लो थोड़ा सा पहले.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
3: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
4: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401, प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
5: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी।
6: कॉफिंग और स्नीजिंग एट होम, योर एयर डक्ट्स मे बी टू ब्लेम एंड क्लॉग्ड ड्राई वेंट्स कैन इवन कॉज फायर्स। डक टाइम रिमूव्स डस्ट, पोलन, एलर्जेंस एंड लिंट, गिविंग यू क्लीनर एयर, बेटर हेल्थ, एनर्जी सेविंग्स एंड पीस ऑफ माइंड। सर्विंग द DFW एरिया एंड 15 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विद CSIA सर्टिफाइड टेक्नीशियंस एंड फ्री एस्टिमेट्स। फन एशिया लिसनर्स गेट $100 ऑफ डक्ट क्लीनिंग प्लस फ्री ड्रायर वेंट क्लीनिंग एंड सैनिटाइजर विद सर्विस। कॉल जीतू पटेल एट 9728772500 और विजिट callducktime.com। ब्रीद इजी, लिव सेफ विद डक टाइम।
7: बेटा, 95% आए?
8: हाँ मम्मी।
7: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
9: मेरा?
7: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
9: वो
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
10: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
11: Kabhi chatpata sa twist, kabhi tikha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
10: Jahan har flavor करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज।
11: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
12: क्या मतलब?
13: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
13: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
12: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
14: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
16: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
15: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
16: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
15: सच में? सब संभाल लेंगे।
16: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
4: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
5: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस, बिकॉज फन पिज्जा किचन जस्ट ड्रॉप्ड अ बोल्ड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड मेन्यू। And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
6: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khanzada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabron ke liye The Jabu Times available hai ek click par, thejabutimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
7: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.

तो गाइज, वी वर टॉकिंग अबाउट एलियादे एंड मैत्री देवीज कॉन्ट्रोवर्शियल रोमांस फ्रॉम 1929 टू 1931 इन कैलकाटा. इट काइंड ऑफ रिमाइंड्स मी ऑफ दैट लुटेरा वाली मूवी जो आई थी ना, सोनाक्षी सिन्हा की एंड रणवीर सिंह की. आपने वो वाली मूवी देखी है? रणवीर सिंह, आई मीन ऑफकोर्स रणवीर सिंह इज लाइक अ क्रिमिनल इन दैट, एंड देन सोनाक्षी सिन्हाज डैड इज लाइक अ जमींदार, एंड वही जमींदार की बेटी से प्यार हो गया, फिर चोरी वोरी कर लिया वगैरह. इट इज़ बाय फार एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज, क्योंकि मुझे उसका म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा पसंद है. लेकिन उसके अलावा भी आई थिंक द स्टोरी इज काइंड ऑफ नाइस. द एंडिंग इज़ लाइक वेरी वेरी वेरी रोमांटिक एंड आई एम ऑल फॉर इट. तो एलियादे रोड द बुक अबाउट मैत्री देवी. लेकिन यू नो वेन मैत्री देवी फर्स्ट हर्ड अबाउट इट, शी न्यू अबाउट द बुक. आई मीन शी हैड हर्ड, आई मीन शी हैडन रेड द बुक, बट शी हैड हर्ड दैट एलियादे हैड डेडिकेटेड अ बुक एंड शी फर्स्ट न्यू अबाउट दैट बुक इन 1953 आई बिलीव. या 1953 वेन हर डैड टोल्ड कि देखो पता है तुम्हें, देर इज दिस पर्सन कॉल एलियादे एंड ही इज़ रिटन अ बुक अबाउट यू. नॉट दिस पर्सन कॉल एलियादे बट एलियादे, डू यू रिमेंबर द गाय हू यूज टू लिव इन आवर हाउस एंड एवरीथिंग, ही हैज़ डेडिकेटेड अ बुक टू यू. एंड देन शी रिमेंबर्ड ऑल ऑफ द रोमांसेज दैट शी हैड विथ एलियादे. बट यू नो वॉट हैपन्ड, मैत्री देवी वॉज अ गुड बंगाली इंडियन गर्ल, ओके. सो शी गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 20 आफ्टर दिस रोमांस एंडेड. उनके फादर ने उनकी शादी करा दी एट द एज ऑफ 20 टू अ बंगाली मैन, वेयर शी हैड टू चिल्ड्रन. देन उसके बाद शी पब्लिश्ड पोएट्री, प्रोज एंड रोट मैनी बुक्स ऑन हर मेंटोर. एंड यू नो हु वॉज अ मेंटोर? रविंद्रनाथ टैगोर, द पर्सन हु रोट आर नेशनल एंथम. And she also set up lots of orphanages for like poor children, needy children. So, the first Devi had heard of Meliade, of Eliade was in 1938 and 1939, informing her on his return that Eliade had dedicated a book to her. It begins with the travels in Europe in 1953. Devi ran into Romanians. So Devi was traveling to Romania and she in 1953, and they all claimed, random people on the street were like, hey, we know about you from the book. But it wasn't until 1972 when a close Romanian friend had come to Calcutta and Devi finally understood that Eliade described a sexual relationship. Yeah, a very erotic novel between the two of them. And she was embarrassed because which girl would like कि कोई बंदा उसके बारे में ऐसी पर्सनल डिटेल्स लिख के पूरी वर्ल्ड में बुक पब्लिश करे और उसको प्राइज भी मिला है उस बुक के लिए. ओके, एंड देन शी एंड द बुक वॉज इनिशियली पब्लिश्ड इन रोमेनियन, रिमेंबर. सो शी आस्क्ड द फ्रेंड कि प्लीज़ मुझे इसको ट्रांसलेट करके बताओ कि उसने मेरे बारे में एक्चुअली लिखा क्या है. वो बुक बाद में दूसरे लैंग्वेजेस में भी बनी, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट या बंगाली में ट्रांसलेट करने के लिए शी हैड एक्चुअली कमीशन्ड समवन. As a result, what did Devi write? ठीक है, Devi ने when she read about this book, she didn't actually write a book. She wrote a bunch of poems in the final months of 1972 as a response to this erotic novel which was written about her. And it was published in a really thin volume called Aditya Marichi. Okay? And from a personal letter that she wrote to Eliade's translator, it becomes clear that it means sun rays in Bengali, which was an affectionate nickname which was given to Eliade by Devi's father. Isn't that amazing? I will tell you more about this book when we come back. Tab tak ke liye aap ye gana suniye.

0: परेशानी,
1: बोल बचन का कतरा
0: खतरा,
1: बोल बचन की भाषा
0: झांसा।

0: वचन।
1: मेरे पिताजी कहते हैं कि दारू पीने से लिवर खराब होता है, और मैं कहता हूँ कि बोल वचन से कुछ खराब नहीं होता।
2: नौटंकी गड़े गड़े ड्रामा करता है। अरे ऐसे ही बोल वचन करता रहेगा तो आसमान से गिरेगा, खजूर में अटकेगा।
3: या फॉलिंग फ्रॉम स्काई स्क्रेपर हैंगिंग इनटू ड्राई फ्रूट एंड नट।

0: Shall I go?
1: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
2: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
3: नहीं।
2: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
3: नहीं।
2: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
3: वो भी नहीं।
2: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
4: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
5: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
6: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
7: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
8: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
7: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
8: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
7: सच में? सब संभालेंगे?
8: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनोल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: Hi, this is Janvi Kapoor, and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
1: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
2: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.

104.9 FM Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop entertainment.

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

लेकिन आपकी आंखों से नींद कोसों दूर है, पर हम है ना आपके करीब, आपके रेडियो डायल पर सारी रात आपके साथ। फन इज योर रेडियो 104.9 FM।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डालस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

0: दोस्तों, जिंदगी सचमुच एक हसीन इत्तेफाक है। अगर इत्तेफाक ना हो तो मोहब्बत ना हो, शायरी ना हो, संगीत ना हो। अभी जो गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा था, कभी उसमें एक आवाज और भी शामिल थी। उस आवाज की मलिका नेहा आज इस वक्त हमारे बीच हैं। दोस्तों, मैं आप सब लोगों की तरफ से उन्हें गुजारिश करूंगा कि वो एक बार फिर मेरा साथ देकर इस अधूरी गजल को पूरी कर दें और शाम को अमर कर दें।
1: ये क्या कह रहे सागर?

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

एक रात वो गया था जहाँ रात रुक के, अब तक रुका हुआ हूँ वहीं रात रुक के। डोंट चेंज दैट डायल, कीप इट राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है। तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा। नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर।

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, जैसे वर्कआउट किया हो आपने। मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनी शो रेडियो।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।

0: प्रचंड आरंभ है प्रचंड.
1: Tracks that put you on the right track.

0: मार्शमेलो, नाम तो सुना होगा।
1: हैप्पी म्यूजिक, हैप्पी पीपल, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: Phoenicia Radio 104.9 FM.
1: भूख लगी जोरों की भूख लगी।

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
1: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।

0: अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
1: अपुन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।

What is up? क्या बोल रहे सब लोग? एमवे बंटा है मालूम है ना, मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे. Let's do it. Hey.

104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Pure Fact, they see.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: Bollywood, Tollywood, Lollywood. 24 karat pure on 104.9 FM.
1: साथी जिंदगी में करते रहते हो लेकिन काम में तुमने आज तक नहीं की, आदत नहीं है तुम्हें।

Storming into a million hearts. 104.9 FM. Number one hit station.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: You are my special friend.
1: नेशन का फन स्टेशन फनेशियर रेडियो 104.1.

0: capable of anything.
1: अभी बजा है ना भिड़ो
2: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फनी

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

Let's go ahead and get started with our morning show here on this beautiful Wednesday morning. It is the 15th of July today. Ladies and gentlemen, welcome. Sabse pehle, tarif us upar wale ki, jisne duniya banai, chand sitare banai, zameen aasman banai, insaan ke dil mein mohabbat ka jazba paida kiya. Usi upar wale ki tarif hai jisne mujhko, आपको और ये सारी कायनात को इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू.

0: That, ladies and gentlemen, was Euphoria. That was on your request when I said maybe it's a song. It probably meant maybe it's a memory of your mom that makes you ready to go take on the day today. A beautiful Wednesday here for all of you. I'm going to make sure you're completely informed and entertained and get to your destination in that right mood.
1: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
2: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury brilliance celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
4: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
3: Kya matlab?
4: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
4: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
3: Ab to karna hi padega, madam.
5: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: Samajh nahi aa rahi, ticket loo to kahan se loo?
7: It's Lawson.
6: Kisse baat karun? Sari jankari kaun dega?
7: It's Lawson.
6: Daddy, what is the law?
8: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
9: Is saal to kamaal ho gaya, hamara revenue double ho gaya.
10: Sir, acha hai. लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
9: नहीं।
10: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
9: नहीं।
10: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
9: वो भी नहीं।
10: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
11: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
12: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
13: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducktime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
14: This week, every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen. Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week. Plus, 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99. And 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99. So grab your squad, grab your table, and don't miss the final kick. Fun Pizza Kitchen Frisco. Offer valid till 19 July only.
15: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
16: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
15: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
16: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
17: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
18: Hi, this is Konkana Sen Sharma and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: It is 8 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
9: Call 857-891-8942 today.
10: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
11: चीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
12: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
11: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
12: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
11: और एंटरटेनमेंट,
12: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
11: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
12: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
10: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
13: Calculating route, rerouting.
10: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है।
13: Location upgraded. Now heading to India Bazaar Fort Worth.
10: क्यों?
13: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं। Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
10: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
14: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
13: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
15: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
16: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
15: सच?

0: या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
1: वेट, व्हाट?
2: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
3: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
2: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
4: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
5: आर यू ऑन F1 वीजा एंड लुकिंग फॉर मॉर्गेज ऑप्शंस? या आप H1B पे हैं एंड लुकिंग ऑप्शंस विद 5% और 10% और इवन 3% डाउन? सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है। NMLS 926641।
6: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
4: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
6: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
4: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
6: सच में सब संभालेंगे?
4: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770। Vanessa Events, your celebration partner.
7: Let's get started with this hour of the program, and a warm welcome to those of you who are joining us in this 8 o'clock hour on this lovely Wednesday morning. It's the 15th of July, and this part of our show is brought to you by AG Fintax. It's one of the fastest growing tax firms here in the United States, and they offer innovative financial services with untapped potential for both individuals as well as for businesses. They're trusted, they're efficient, and they get you ready for the future. So please go ahead and give them a call, 469-942-9888, or visit agfintax.com.

0: Mika Singh sung this track for the movie Tamasha, starring Deepika Padukone and Ranbir Kapoor. And the first one to give me that right answer was Sudipto Das. And he gets that $10 gift card from Fun Pizza Kitchen. So congratulations going out to you. I have more giveaways coming up later in the program.
1: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
2: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
3: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
4: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
5: It's Lawson.
4: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
5: It's Lawson.
4: Daddy, what is the law?
6: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
7: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग, एजेस 8 एंड अबव।
8: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-10 99.
9: Mention FunAsia and get 50% off on tryout session.
10: Documents या parcel भेजनी है?
11: हाँ.
10: घर relocate करनी है?
11: हाँ.
10: गाड़ी भी transport करना है?
11: हाँ भाई हाँ.
10: तो फिर tension क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को call कर.
8: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में trusted shipping और moving services. SFL Worldwide. Our move ka perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
12: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूंगी।
13: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
14: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
15: Now, sir, or price?
14: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
16: अरे यार, घर मिल गया।
10: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
14: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
10: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
14: बिल्कुल। विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
17: This week, every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen. Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week. Plus, 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99. And 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99. So grab your squad, grab your table, and don't miss the final kick. Fun Pizza Kitchen Frisco. Offer valid till 19 July only.
18: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
19: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
18: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
19: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
18: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
19: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
18: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
1: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: We'll have the world news coming up for you right after you finish listening to Bhediya.
1: Hey, बाकी सब ठीक?
2: बस चल रहा है.
1: बाकी सब ठीक?
3: बस चल रहा है.
1: बाकी सब ठीक है ना?
2: बस चल रहा है भाई.
1: What about you?
3: हाँ चल रहा है.
1: बाकी सब ठीक?
2: बस चल रहा है.
1: बाकी सब ठीक?
3: बस चल रहा है.
1: बाकी सब ठीक है ना?
2: हाँ ठीक है.
1: और तेरा?
3: बस चल रहा है. कितना मनमोहक व्यू है, इतना सन्नाटा क्यों है, देखो ना ढलता सूरज धीरे धीरे धीरे धीरे ढल रहा है.
1: बाकी सब ठीक?
2: बस चल रहा है.
1: बाकी सब ठीक?
3: बस चल रहा है.
1: बाकी सब ठीक?
2: बस चल रहा है.
4: तू भी कुछ

0: वैसे भी सुना है आजकल भेड़िया लोगों का कीटो डाइट चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
1: तेरा भी बोलना।
0: मेरा भी चल रहा है। व्हाट अबाउट यू
1: भाई, लिख के दूं क्या?

0: Let's round off this hour of the program. I do have another very busy hour that is coming up for all of you. Please stay with me, and I'm going to make sure you are entertained as well as informed right at 9 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
5: कौन सा?
4: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
5: अरे सारे तो सेम है.
4: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
5: ओ हाँ, ये तो अलग है.
6: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
7: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin hai.
8: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. Ek hafta, 10 din, agle Tuesday.
9: Tarikh par tarikh.
6: Passion Health Primary Care gives you doc appointments on the same day visit. Aaj bukhar, aaj doctor. Aaj infection, aaj doctor. Aaj annual checkup, aaj doctor. Plus 30 minutes of dedicated appointment time. Passion Health Primary Care in Irving, Plano, Frisco, McKinney, Aubrey.
8: Visit passionhealthphysicians.com or call 214-666-6259.
10: Beta, 95% aaye?
11: हाँ मम्मी.
10: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
5: मेरा?
10: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
5: वो
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी. सर्विसेज सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग है.
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं, तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
16: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
17: लिया.
16: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
17: नहीं आया.
16: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
18: Visit www.senadainc.com today.
19: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
0: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
19: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
0: Papri chaat se malpua rabri tak, har dish mein mile zindagi ke flavors ka asli swaad. Visit their new website or download the Flavor Lounge app for exclusive deals. The Flavor Lounge, Harbhai Super Hit.
6: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law.

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में सोना मसूरी राइस नानक पनीर पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सिटीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स HEB हियर एवरीथिंग इज बेटर.
3: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
4: Excuse me. It's called being loyal.
3: It's called being predictable.
4: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
3: And what's so special at Neon Cactus?
4: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
3: Not bad.
4: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
3: Okay, this I didn't expect from you.
4: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
5: समझ नहीं आ रही टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ.
6: इट्स लॉसन.
5: किससे बात करूँ सारी जानकारी कौन देगा.
6: इट्स लॉसन.
5: डैडी व्हाट इज द लॉ.
7: इट्स लॉसन ट्रेवल्स फॉर ऑल योर ट्रेवल नीड्स. गिव देम अ कॉल टुडे 214-631-2458. द ट्रेवल एक्सपर्ट्स लॉसन ट्रेवल.
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
10: लुकिंग टू अर्न एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल इनकम और इवन बिल्ड अ न्यू करियर. At shopcompareinsure.com, we are not just helping customers. We are growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship, and access to top-rated products like annuities, term life, whole life, and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
11: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
12: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
13: Is shehar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadoo? धुआं धुआं क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में. कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
14: पंडित रामनाथ जी जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम शादी में डिले करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव.
15: विजिट psychicramnath.com. कॉल 469-347-4401. प्लेनो मैकिनी अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
16: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन रिजल्ट्स में वेरी.
17: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना. बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग. और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट एंटरटेनमेंट लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.

0: That's all I have for today. It's 10 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
4: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
5: Are you tired of the same arguments, reactions and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
6: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
7: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
6: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
7: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
8: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को, प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
9: Ritesh, kabhi socha hai? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
10: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
9: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
10: वेट, व्हाट?
11: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
12: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
11: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
13: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
14: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
15: सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन, मेड विद फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी। फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस।
16: विजिट सैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन।
17: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
18: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
19: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
4: इतना सब और प्राइस?
19: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
6: मैं हीरो।
17: जी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
3: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
17: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
3: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
17: सच में सब संभालेंगे?
3: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
8: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।

0: कितने आदमी थे?
1: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।
2: One of 4.9 FM. This is and thank you for tuning into Gupshup Gali with me too. Ek vadda wala shukriya to Shabnam ji for an amazing morning drive time show that she brings for all of us. Aaj ki tarikh 15th of July. Ghadi mein baje hain 10:10. Mausam ka haal wahi jo pichle do dinon mein hum dekh rahe the. It is hot. It is humid with isolated thunderstorms developing as early as the afternoon that we are going to have here in the DFW Metroplex and. DFW, are you ready for this bright, beautiful day? क्योंकि ऐसा है कि वेंसडे को मुझे थोड़ी धक्के की ज़रूरत होती है और इस धक्के को ढिशकियाओं के साथ जो स्टार्ट किया है ना बस उसी के साथ कंटिन्यू रखने वाले हैं. एंड कितनी अजीब सी बात है ना कि बचपन में जब हम ऐसे गन्स वन से खेला करते थे इट यूज़ टू बी ढिशकियाँ ढिशकियाँ ऑल इंस्पायर्ड बाय बॉलीवुड इज़न्ट इट. ऐसी थोड़ी ना होती गोलियों की असल आवाज़. This is Gupshup Gali with me too.

मुझे भी एक जोर से गाना याद आ रहा है एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू प्ले ऑनोमाटोपिया. आपने इस शब्द का नाम सुना है क्या? इट इज बेसिकली यू नो जो साउंड होता है उसी से जो शब्द बनता है, यू नो सॉर्ट ऑफ मिमेटिक वर्ड्स इफ यू कैन कॉल दैट, यू नो. और हमारे देसी कल्चर में ये ढिशक्याओं और ढिशुम और थप्पड़ की आवाज के लिए भी एक सटाक छपाक बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो फॉल इन दैट ब्रैकेट. और इसीलिए ये अगला गाना ऑन गपशप गली विथ मी टू.

0: यू नो वॉट आई एम फीलिंग लाइक कंटिन्यूइंग दिस ऑनोमेटोपिया. ये जो साउंड से क्रिएटेड वर्ड हमारे देसी वोकैब में है थैंक्स टू आवर क्लासिक 70s एंड 80s फिल्म्स विच हैव गिवन अस दिस डिशक्याओ एंड डिशुम एंड ऑल ऑफ दैट. मुझे मन कर रहा है कि अगले सेगमेंट में कुछ देसी वोकैब के ऑनोमेटोपिया हम बात करें इसके बारे में. जस्ट फीलिंग लाइक इट. कंटिन्यू लिसनिंग टू गपशप गली विथ मी टू.
1: ये तारा वो तारा हर तारा.
2: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
3: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. The locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
4: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
5: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
4: नहीं.
5: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
4: नहीं.
5: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
4: वो भी नहीं.
5: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
6: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy.
7: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
8: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
9: This week, every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen. Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week. Plus, 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99. And 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99. So grab your squad, grab your table, and don't miss the final kick. Fun Pizza Kitchen Frisco. Offer valid till 19 July only.
10: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At shopcompareinsure.com, we're not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship and access to top-rated products like annuities, term life, whole life and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
11: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.

एक्चुअली देयर वॉज दिस फीमेल पार्ट टू इट, राइट? ये मेरे इस वर्जन ऑफ सॉन्ग में नहीं था, बट देन लेडीज एंड जेंटलमैन, यू नो वट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? जहाँ पे आशा जी की आवाज़ थी फॉर नीलम, एंड आई एब्सोल्युटली लव द फैक्ट दैट यू नो आशा जी सॉर्ट ऑफ इमिटेटेड हर एक्सेंट इन द सॉन्ग बाय सेइंग टिप टिप टिप, इस तरह से कुछ बोला था ना, टिप टिप टिप टिप टिप बारिश शुरू, दैट टिप टिप नहीं बोलकर वो जो टिप टिप थोड़ा सा जो एक एंग्लिसाइज वर्जन दैट शी यूज फॉर नीलम पर्टिकुलरली, इज हाउ अमेजिंग दीज लेजेंडरी सिंगर्स आर. और पता है हाउ अमेजिंग इट इज़ टू लिसन टू द वर्ड्स जिसमें ना ओरिजिनल जो साउंड है उसी को कुछ रेप्लीकेट करता हुआ हमारे देसी वोकैब में जो वर्ड्स है, इट ऑल स्टार्टेड विद ढिशक्याओं. एंड आई टेल यू, हमारे जो ये जो रूटेड हैं ये वर्ड्स, ढिशक्याओं, ढिशुम, ये सारे वर्ड्स जो रूटेड है इन द साउंड डिज़ाइन ऑफ क्लासिक 1970s एंड 80s हिंदी सिनेमा, वो मिमेटिक वर्ड्स कह लें आप उनको या जो भी कहें, इट हैज़ एक्चुअली ट्रांसेंडेड द स्क्रीन टू बिकम एवरी डे स्लैंग अक्रॉस आर देसी वोकैब, राइट? और इसीलिए मैंने सोचा कि इस बारे में थोड़े से और विस्तार में बात की जाए. फॉर एग्जाम्पल, वो जो बारिश की बूंदों का गिरने का जो गिरने की जो आवाज़ होती ना, वो किसी भी अगर सरफेस पे गिरे तो वो जो एक टिप टिप वाली आवाज़ होती, तो बस इसी से तो ये वर्ड टिप टिप बारिश शुरू हो गई जो आपने ये गाना सुना. एंड वी हैव सो मेनी टिप टिप सॉन्ग्स, राइट? एंड वैसे ही कुछ रिमझिम वाले गाने भी हमने सुने हुए हैं, बट नेचर और वाटर से बाहर निकलकर, यानी कि वो छप छप या सर सर, ये सारी आवाज़ों से निकलकर मैं जाने वाली हूँ इस अगले गाने पर, जहाँ पर ना ये एक चकाचक वाला जो एक फीलिंग है, इस इट्स एक्चुअली दैट फीलिंग दैट दे हैव गिवन अ वर्ड.

ये कुछ ऐसे वर्ड्स है ना, दे क्रिएट अ रिदम, एक एक्सप्रेसिवनेस होता है, येट दे आर वर्ड्स दैट मिमिक साउंड्स एक्चुअली. और इसीलिए यहाँ पर एक और गाना जो मैं प्ले करने वाली हूँ, अनिल, दिस इज फॉर यू. और उन्होंने हमें बताया ना, जो कि छम छम, जो बारिश की आवाज के साथ इस गाने में इंक्लूड किया गया है, इट इज अबाउट दोज पाइल की छम छम एंड वो बारिश की रिम छिम, उसको मिला के जो कुछ बनता है वो है ये. Onomatopoeia, that's what it is called. Words that mimic natural sounds. और हमारे देसी वोकैब में ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं, बस वही तो लगा रही हूँ. बातों से बात चली और हम यहाँ तक पहुँच गए.

ऐसा है कि ये जो ऑनोमेटोपिया का जो मैंने ये सिलसिला शुरू किया, इट जस्ट स्टार्टेड. यू नो, जब मैं आई तो एक अच्छा सा गाना प्ले हो रहा था विद ढिशक्या वर्ड, और उसी से बस चलते चलते यहाँ तक आ पहुँचे हैं. और इसीलिए देसी लैंग्वेजेस का ये जो एब्सोल्यूट गोल्ड माइन है मिमेटिक वर्ड्स का, जो कि साउंड पर बेस्ड होती हैं, इट इज़ अमेजिंग. एंड द रीडुप्लीकेशन इज हैवी ऑन इट, रिपीटिंग साउंड्स टू एम्फसाइज एन एक्शन, फीलिंग और नॉइज, जैसे कि धक धक करने लगा.

0: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
1: Calculating route, rerouting.
0: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
1: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
0: क्यों?
1: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
0: अच्छा तो सीधा वही ले चलो।
2: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
1: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
3: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
4: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
0: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
4: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
5: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
6: इन प्लेनो।
5: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
3: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
7: क्या मतलब?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
7: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
9: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
11: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
10: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
11: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट। Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, 'cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
0: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. 'Cause miracles happen in Mirage.
12: कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं?
13: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।
14: डालस की धड़कन 104.9 FM, फन एशिया रेडियो।

दिस इज अ मूवी कॉल्ड लक बाई चांस एंड आई शुडन्ट बी सेइंग इट लाइक दैट बिकॉज जोया अख्तर की ये पहली फिल्म थी एंड जोया अख्तर जो कि फिल्म बफ्स हैं वो सब जानते हैं इस नाम को और इस फिल्म को बिकॉज तब भले ही नहीं चली हो एट द बॉक्स ऑफिस लेकिन ओवर द टाइम दिस हैज़ बिकम ए कल्ट क्लासिक फॉर श्योर. हर फर्स्ट डिरेक्टोरियल दैट इट वॉज हर डेब्यू डिरेक्शन एंड उसके बाद जो फिल्म आई दैट वॉज ए फिल्म दैट रिलीज ऑन दिस डे लेडीज एंड जेंटलमैन. और इसीलिए तो इस सेगमेंट में विच इज दिस डे इन सिनेमा हिस्ट्री जो मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ इट इज फ्रॉम दैट फिल्म विच रिलीज इन 2011 जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. और उसमें एक गाना है जिसमें हमें वो बहुत ही पॉपुलर ला टोमेटिन फेस्टिवल जो कि स्पेन में होता है उसका एक जायका मिला इन आर बॉलीवुड स्पेस. और वो जो था वो बिकॉज आउट ऑफ सीजन शूट किया गया था उस गाने को इसीलिए टू रिक्रिएट द फेस्टिवल द प्रोडक्शन टीम हैड टू सॉर्ट ऑफ फ्लाई इन 16 टन्स ऑफ टोमेटोज ऑल द वे फ्रॉम पोर्चुगल. कैन यू इमेजिन द कॉस्ट ऑफ जस्ट द टोमेटोज वॉज ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 crore. बाप रे बाप एक्सपेंसिव यू नो शूट फॉर द सॉन्ग पेंट इट रेड बट देन दे हैड टू एंड उसका नतीजा आज तक बिल्कुल चकाचक है. एंड दैट व्हाट ब्रिंग्स मी टू ए बर्थडे विश एज वेल राइट नाउ. वीना की तरफ से उनकी डॉटर इन लॉ कोमल को ए वेरी हैप्पी बर्थडे. पेंट इट रेड फॉर हर एंड वी आर डेफिनेटली पेंट इट ब्यूटिफुली फॉर हर ऑन द एयरवेव्स ऑफ फनेशिया रेडियो विशिंग हर ए वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड बर्थडे. कोमल हैव फन.

एंड दैट जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जो आज के दिन रिलीज हुई थी इन द ईयर 2011, 15th of July 2011। और इसका एक गाना प्ले करने से तो मेरे से तो पॉसिबल नहीं है, मैं एक और गाना तो डेफिनेटली प्ले करना चाहती हूँ। एंड यहाँ पे विशाल दादलानी को याद करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी भी हैंगओवर चल रहा है विशाल शेखर के कॉन्सर्ट का, विच हैपेंड ऑन संडे। और ये गाना उन्होंने वहाँ जब गाया था तो तोड़फोड़ मचा दिया था। मतलब दिल से निकलता है कि कौन चक्की का आटा खाते हैं यार, इतनी बुलंद आवाज़ है विशाल दादलानी की, कहाँ से आती है यार, इतना जोश, इतना पावर आवाज़ में। एंड देन ऑफकोर्स शेखर रवजानी वॉज ऑल्सो सो अमेजिंग। ओके, आई हैव टू स्टॉप हियर, नहीं तो मैं चलती रहूँगी, इस बारे में बात होती ही रहेगी मेरी। लेकिन येस, गोइंग बैक टू जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और यहाँ पे ना इस फिल्म में इतनी एक आयरॉनिक बात थी कि फरहान अख्तर के कैरेक्टर इमरान जो है स्काई डाइविंग के लिए यू नो ही वॉज वेरी कीन ऑन दैट, लेकिन रियल लाइफ में फरहान अख्तर इज एक्चुअली टेरिफाइड ऑफ हाइट्स। जी हाँ, और वहीं पे ऋतिक रोशन का एक सीन है जो वो दिखाया गया है कि पानी से डरते हैं, एंड ही इज एक्चुअली ए सर्टिफाइड डीप सी स्कूबा डाइवर। ये केवल फिल्मों में पॉसिबल है। बट देन द मूवी वॉज ऑल्सो अबाउट यू नो ओवरकमिंग योर फियर्स, और वो सारी जो बातें इस फिल्म से आपको सीखने को मिलती है ना, दे आर डन सो ब्यूटिफुली कि प्रीची भी नहीं लगती, लेकिन बात आपको समझ में भी आ जाती है कि भाई कार्पे डिएम, ये जो लैटिन फ्रेज है इसका जो मतलब होता है इट सीज द डे, इट वॉज वे बियॉन्ड दिस सिंपल मैसेज। इट वॉज अबाउट यू नो स्टॉप पोस्टपोनिंग योर हैप्पीनेस, अपनी खुशी को पाने के लिए वेट मत करो, यू नो लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट एवरी डे। और एक और जो मैसेज जो मैंने कहा ना कि ट्रू फ्रीडम लाइज ऑन द अदर साइड ऑफ फियर, दैट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई थिंक आई एम नॉट येट देयर, बट होपफुली वन डे। क्योंकि यार रोलर कोस्टर, आई एम सो स्केयर ऑफ देम यार, मुझे ऐसा लगता है मेरी जान ही निकल जाएगी।

0: दिस हैज बिकम अ डेडिकेटेड जोया अख्तर सेगमेंट एंड व्हाई नॉट. इतनी कमाल की फिल्म मेकर है. आई डोंट माइंड डूइंग इट ओवर एंड ओवर एंड दैट टेक्स मी टू द फैक्ट कि कुछ चर्चा हो रही थी कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का सीक्वल वगैरह कुछ आने वाला है, बट नॉट राइट नाउ एज वॉट आई एम रीडिंग एज आई डग इन टू दिस न्यूज, क्योंकि पता तो करना ही था यार. और इसीलिए पता चलता है कि अभी तक कोई डायरेक्ट सीक्वल की कोई तैयारी है नहीं. शी सेड दैट इफ शी फाउंड अ स्क्रिप्ट दैट ऑर्गेनिकली took the characters stories forward, तो definitely वो बनाएंगी sequel इसका. वो जो एक forced feeling नहीं आनी चाहिए characters में, और इसीलिए अभी तक कोई तैयारी नहीं है. But a spiritual sequel is in making, और ये काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं जीले ज़रा, जहाँ पर जोया अख्तर, फरहान अख्तर एंड रीमा कागदी, दे हैव यू नो सॉर्ट ऑफ एक एक्टिंग कू अगर हम इसे कह सकते हैं. प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ एंड आलिया भट्ट के साथ ये बात बहुत टाइम से चली आ रही है. एंड आई थिंक इन तीनों का स्केड्यूल मैच कर पाना बहुत मुश्किल होगा. एंड इट वुड बी, इफ इट हैपेंस, देन इट वुड बी द फर्स्ट फीमेल सेंट्रिक यू नो रोड ट्रिप स्टोरी एंड फ्रेंडशिप स्टोरी दैट इट विल बी, विच वी आर वेरी कीन ऑन वॉचिंग, आंट वी. बताए मुझे गली बॉय का गाना लगाने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन इस सेगमेंट में नहीं लगा पाई क्योंकि अचानक याद आया मैं हूँ होस्ट इस शो की, तो अभी नहीं लगा पा रही हूँ, तो सेगमेंट ये ब्रेक के बाद लगा देती हूँ. वॉट से, यही तो पावर है मेरे पास, और ये पावर है आपके पास भी. कॉल इन विथ योर रिक्वेस्ट राइट हियर.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
4: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
3: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
9: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
10: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
11: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin hai.
12: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. Ek hafta, 10 din, agle Tuesday.
13: Tareek par tareek.
2: Passion Health Primary Care gives you doc appointments on the same day visit. Aaj bukhar, aaj doctor. Aaj infection, aaj doctor. Aaj annual checkup, aaj doctor. Plus 30 minutes of dedicated appointment time. Passion Health Primary Care in Irving, Plano, Frisco, McKinney, Aubrey.
12: Visit passionhealthphysicians.com or call 214-666-6259.
14: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
2: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
15: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
16: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स ओल्ड टू गेम।
17: ट्रैक्स दैट पुट यू ऑन द राइट ट्रैक।

मुझसे ना हो पाएगा। कौन बोला

यू आर ट्यून्ड इनटू फाइनेंशियल रेडियो 104.9 एफएम. इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए क्योंकि द म्यूजिक दैट यू आर लिसनिंग टू ये केवल आपको फाइनेंशियल पे मिलता है कि कुछ आपकी पसंद और कुछ मेरी पसंद. और ये गाना जो है हम सबकी पसंद रहा है, ये फिल्म जो है ये हम सबकी पसंद रही है, गली बॉय का वो गाना तोड़ फोड़ सीरियसली, एंड दैट इज वॉट वी आर ट्राइंग टू डू हियर. कुछ तोड़ फोड़ शो करने की कोशिश में ना कुछ नेशनल डेज पे मैं नजर डालने वाली हूँ. एंड इफ यू आर थिंकिंग कि यार वही ओल्ड बोर, एक्चुअली दे आर सो अम्यूजिंग व्हेन यू कम टू रीड ऑल ऑफ दीज क्रिएशंस बाय पीपल. मतलब किस तरह की क्रिएटिविटी झलकती है. देर आर वेरी मीनिंगफुल वंस ऑल्सो, ऑफकोर्स देर इज नो डाउट अबाउट दैट. वो नेशनल डे हो या इंटरनेशनल डे हो, किसी कॉज के लिए, किसी एक बिलीव के लिए, ये सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग होती है. लेकिन उसके बियॉन्ड भी बहुत फन के लिए भी बहुत सारी ऐसी अम्यूजिंग डेज लोगों ने क्रिएट किया है. उनमें से एक डे जो मैं आज सेलिब्रेट करने वाली हूँ आप लोगों के साथ. लेकिन before that, you know, we need to celebrate Sri Krishna Jewelers. They have been crafting fine jewelry and they are here in Frisco, and that is the most important thing to for you all to know. Aur 1967 se ye jewelry bana rahe hain, so you can imagine their expertise in the field and jis passion ke sath ye jewelry lekar aate hain. Every jewelry has a story to tell, wo chahe gold mein ho, diamond mein ho, kundan mein ho ya polki. Inki collection superb hai, you have to go and check. Their new location at 13145 Suite 220 on Main Street in Frisco, that you must visit. It's Sri Krishna Jewelers, ladies and gentlemen. Aur isi ke saath is gaane ki taraf chale jo Ankit ne request ki hai. I said yaar ye tharkiness thoda sa lekar aate hum in this segment. 972-235-5555 number in the studio.

लेट्स गेट योर क्वर्क्स ऑन एयर लेडीज एंड जेंटलमैन. कुछ नेशनल डे की बात कर रही थी. मैंने बताया ना कि कुछ बड़े अम्यूजिंग क्रिएटिव लोग होते हैं जो कि अलग अलग ऐसे डेज बनाते हैं कि इट्स बियॉन्ड योर इमेजिनेशन. जैसे कि नेशनल आई लव हॉर्सेस डे, जैसे कि नेशनल हॉट डॉग डे, जैसे नेशनल गमी वर्म डे. ये भी मुझे लगता है कि ये वो जो कि बहुत पसंद करते हैं अपना गमी बेर. मैंने ज़्यादा डिटेल्स देने की कोशिश नहीं की. ऑफकोर्स दे आर मल्टी वाइटमिन, पीपल लव टू ईट. हम भी खाते हैं मल्टी वाइटमिन, यू नो गमीज जो होती हैं वो इतने मेरे लिए वो एक डिजर्ट की तरह हो गया है कि आई लव हैविंग दोज. व्हाट कैन आई से टू ऑल द किड्स, मतलब बच्चे जो एक दो से ज्यादा खाने की कोशिश करते हैं वो क्यों करते हैं मुझे भी पता है, क्योंकि मैं भी कोशिश करती हूँ, कभी कभी खा भी लेती हूँ. लेट्स बी ऑनेस्ट, डोंट टेल एनीबॉडी, ऑलराइट. एंड टॉकिंग अबाउट विच, देयर इज दिस वन पर्टिकुलर डे दैट वन पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल आर celebrating. It is National Be a Dork Day. Now you have to be on the same page with me here. क्योंकि ये एक दिन ऐसा है जो dedicated है to embracing our inner weirdo. हमारी वो harmless social awkwardness और वो अजीब habits जो है ना, हम सब जो दुनिया से छुपाते हैं, society से छुपाते हैं, शायद सिर्फ घर में खुलते हैं, शायद नहीं घर ही में खुलते हैं उसको लेकर, है ना. तो बस मैंने सोचा वो personal quirks जो हैं वो आज on air आप लोगों के साथ discuss किया जाए. मैं अभी अपनी भी बताऊंगी, कुछ सेलिब्रिटीज की भी बताऊंगी, ताकि आपको भी थोड़ा नॉर्मल सा फील हो. इसीलिए जरूर कॉल कीजिएगा 972-235-5555. और मुफ्त में नहीं, गिव अवे भी है नियॉन कैक्टस की तरफ से दैट $20 डाइन इन गिफ्ट कार्ड फॉर वन ऑफ यू जिनका क्वर्क हमें पसंद आए, यू नो. सो गेट रेडी फॉर दैट. स्टूडियो का नंबर है 972-235-5555. टू बिगिन, मैं अपने एक फ्रेंड का क्वर्क बताना चाहती हूँ. उसकी आदत है टू पॉज द माइक्रोवेव राइट एट 1 सेकेंड जस्ट सो शी डजंट हैव टू हियर द बीप. शी सेड वो बीप में ना एक बड़ी अर्जेंसी आती है, मतलब जैसे कि कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है मुझे. मुझे नहीं समझ आया वो, लेकिन क्या आप भी मेरी उस फ्रेंड की तरह हो, बताइएगा ज़रूर. माइक्रोवेव का किस्सा हो या कोई भी और क्वर्क हो आपका, ज़रूर शेयर कीजिए, बिंदास शेयर कीजिए, खुल के शेयर कीजिए यार. इट इज नेशनल बी ए डॉक डे, जस्ट ओन इट यार. 972-235-5555 नंबर इन द स्टूडियो.

And ladies and gentlemen, it is all about bringing out your quirks in public. I know, कई लोगों के लिए ये लग सकता है कि भाई ये लोग क्या सोचेंगे, लेकिन लोगों के सोचने की बात ही नहीं है. आज तो आप ओन कर सकती हो, क्योंकि टुडे इज नेशनल क्या नेशनल बी ए डॉग डे, और इसीलिए यू कैन बी कूल अबाउट बीइंग दैट हैविंग दैट वियर हैबिट ऑफ योर्स. मैं अपने एक वियर हैबिट बताऊँ आपको, इफ़ यू फील एनी बेटर इन शेयरिंग. मेरी दो आदतें, एक तो कि जब जो ब्लैंकेट होता है मेरा वो एक सर्टन तरीके से होना चाहिए, कि मैं मुझे पता है कि बिकॉज ऑफ द प्रिंट दैट इट हैज़ आई नो कि ये कौन सा मतलब लोअर एंड है. वो लोअर एंड मेरा हमेशा लोअर एंड ही होना चाहिए, वो मैं ऊपर मतलब टर्न करके नहीं ले सकती हूँ. दैट्स माई क्वर्क. और वो कितनी भी रात हो जाए, अगर ऐसा होता है तो मैं आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं वो उसको घुमा कर फिर सही करूँ, और जो नीचे रहता है वो नीचे ही रहे. दैट्स माई क्वर्क, वन ऑफ दोज. एंड द सेकेंड क्वर्क इज़ अबाउट माई सीरम्स यार, माई फेस सीरम्स. वो एक सर्टन ऑर्डर में रहना चाहिए. इसे आप क्वर्क हैबिट कहोगे कि ओसीडी कहोगे? ओसीडी मेरे नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि सच्ची में इन सब चीज़ों के बारे में मैं बहुत ही बर्बाद हूँ. लेकिन येस, अबाउट दो सीरम्स बीइंग इन पर्टिकुलर ऑर्डर, आई हैव फोर ऑफ देम ऑल राइट, एंड आई नीड दो सीरम्स टू बी इन दैट ऑर्डर, क्योंकि शायद मैं उस ऑर्डर में लगाती हूँ और इसीलिए मुझे वो चाहिए होता है कि वो सीरम उसी ऑर्डर में रहे. कोई अगर हटाए या करे ना, मुझे बड़ी इरिटेशन होती है सच्ची में. दैट इज़ माई क्वर्क लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड there are plenty of quirks that people have, और आज वो दिन है कि मतलब बेधड़क आप उसे ओन करो और हमारे साथ शेयर करो. 9722355555 people, we are playing for neon cactus. You cannot miss this for anything. Give me a call and let's find out the quirks that you have. और आप में से किसी एक most quirky इंसान को मिलने वाला है आज का $20 का gift card right here on my show, जिसका नाम है गपशप गली. Let's move on to this next very fun track.

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
3: Documents या parcel भेजनी है?
4: हाँ।
3: घर रिलोकेट करनी है?
4: हाँ।
3: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
4: हाँ भाई हाँ।
3: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
5: Documents shipping, boxes shipping, complete door to door relocation, auto transport. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में trusted shipping और moving services. SFL Worldwide. हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
6: बेटा, 95% आए?
7: हाँ मम्मी।
6: गुड। अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
8: मेरा?
6: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
8: वो
1: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
7: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
9: Excuse me. It's called being loyal.
7: It's called being predictable.
9: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
7: And what's so special at Neon Cactus?
9: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
7: Not bad.
9: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
7: Okay, this I didn't expect from you.
9: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
0: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
1: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
10: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
1: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी।
10: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। नाउ इट्स योर टर्न। समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
11: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
1: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
12: Hi, this is Saif Ali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.
13: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेशिया रेडियो।

यस ऑफ कोर्स, विशाल भारद्वाज को अपने जो फिल्म के टाइटल में एक क्वर्क चाहिए था, और इसीलिए तो इस फिल्म का नाम है मटरों की बिजली का मंडोला, विच आई हैव ऑलवेज इंजॉयड शेयरिंग विथ ऑल ऑफ यू. इट इज नेशनल बी अ डॉग डे, लेडीज एंड जेंटलमैन. अपना जो वियर्ड सेल्फ है ना, उसको दुनिया के सामने प्रेजेंट करने में बिल्कुल ना डरे, क्योंकि वही मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ यार. मुझे ना आज लग रहा है कि थोड़ा सा हिचक रहे हैं. फॉर वॉट रीजन आई डोंट नो. आप बहुत ज्यादा बिजी हो रहे हो क्या आज? यही तो हमारे शो का गोल होता है कि आप जो बिजी हो उसमें से थोड़ा सा वक्त निकाल के अपने लिए थोड़ा सा स्माइल यू कैन बाय फॉर फ्री ऑन द एयरवेव्स ऑफ फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM. वो भले ही आपके फेवरेट गाने से आए या ऐसी कुछ बातों से आए. कि अगर हम क्वर्क्स के बारे में बात करें ना, हमारे सबके कुछ ना कुछ क्वर्क्स होते हैं. अब अगर आम जनता के क्वर्क्स नहीं सुनने हैं आपके, तो सेलिब्रिटीज के सुनिए आप. आप जानते हैं ना स्टीफन एडवर्ड किंग. जी हाँ, स्टीफन एडविन किंग, ये वो हैं जिन्हें किंग ऑफ हॉरर माना जाता है. इज दैट ऑथर, ही इज अ वेरी सेलिब्रेटेड ऑथर, राइट? और उनका एक वर्क है स्लीप को लेकर. वेल, ही कैन नॉट फॉल अस्लीप अनलेस उनके सारे पिलोज बिल्कुल एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फेस करते हुए अगर ना हो. क्या आप सोच सकते हैं कि जो वो हॉरर स्टोरीज लिखते हैं और क्राइम स्टोरीज लिख सकते हैं, और मतलब इतने पॉपुलर हैं सस्पेंस साइंस फिक्शन कैटेगरी में, ऑल ऑफ दैट, एंड ही हैज दिस क्वर्क. क्या पता अपने ही जो कैरेक्टर्स उन्होंने बुने उसी के कारण यू नो दैट क्वर्क दैट ही हैज. Who knows? This is Gupshup Gali with me too.

0: You are tuned into Fun Asia Radio 104.9 FM. This is Gupshup Gali with me too. हमारी गपशप कुछ quirks को लेके चल रही है और कुछ quirks में एक और quirk जो मैं शामिल करना चाहती हूँ वो है हॉलीवुड एक्ट्रेस मेगन फॉक्स का. और उनका quirk ये है कि वो जब वो ट्रैवल करती हैं उन्हें काफी जब वो टर्बुलेंस और इन सब चीजों से जब कभी डर लगता है तो what she does is plays Britney Spears music every single time and the song that she plays is this one right here and I'll get you a flavor of it abhi and this is the song. जी हाँ, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शी डेफिनेटली इज नॉट गोइंग टू मीट गॉड टू द ट्यून ऑफ ओ बेबी बाय ब्रिटनी स्पीयर्स. ये उनका क्वर्क है कि फ्लाइट टर्बुलेंस को लेकर. ऐसे आमिर खान का भी ट्रैवल से रिलेटेड क्वर्क है, क्या आप जानते हैं? आई एम गोइंग टू शेयर दैट विथ यू इन जस्ट ए बिट. नॉट दैट इट मैटर्स टू यू, लेकिन आज नेशनल बी ए डॉट डे है. दैट इज वॉट आई एम सेलिब्रेटिंग एंड I've told you this in the last segment and I'm going to say that again to all of you ki bhai ye mujhe na bade amusing se creative days lagte hain ki jo logon ne banaye hue hain to celebrate certain somethings which is very personal to them aur unme wo quirk day bhi shamil hota hai. There are so many wonderful celebrations every single day, jaise ki maine kaha na national give something away day, and then there is national pets पेट फायर सेफ्टी डे. ये सारे ना बड़े मीनिंगफुल हैं और वहाँ पे जब आपको ऐसा मिलता है नेशनल बी अ क्वर्क डे, इट एक्चुअली या डॉट डे इफ यू कैन कॉल दैट, इट इज एक्चुअली बीइंग क्वर्की एंड दैट वियर्डो और सोशली ऑकवर्ड दैट यू आर समटाइम्स एंड टू एम्ब्रेस इट. यार कई लोगों में है यार वो बातें, कुछ एक हैबिट होती है जो एक ऑकवर्ड एक हैबिट होती है और वो उसे एक्सेप्ट करना is what this day gives us and that is what we are celebrating right here, ladies and gentlemen. All right, main apni taraf se ek kuch information jo share karna chahti hu wo hai Dream Home Mortgage ke bare mein, and they have close to 30 years of experience. Aapka naya ghar ho, refinance karna ho, commercial property ko lekar loan, mortgage, kuch bhi baatein ho, aap inke sath zarur kare, bade itminan se samjhayenge aapko kyunki ye mere show pe aate hain Mr. Hussain Panjwani, so I know how passionate he is about his work and how knowledgeable he is. And of course, 30 years is a long time and it speaks volumes about his experience. Wo to baat है ही, लेकिन जब वो ऑन एयर आते हैं और बातचीत करते हैं ना तो समझ में आता है कि वो एक लेमैन को भी किस तरह से समझा सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं अबाउट दिस एंड द प्रोसेस कैन बी रियली स्ट्रेस फ्री. क्योंकि मोर्टगेज का ये जो चक्कर होता है ना, ये बहुत डराने वाला चक्कर होता है. कई बार हम इसी रास्ते जाने से घबराते हैं एंड देयरफॉर ऑल द डिलेज दैट हैपन इन इवन बाइंग योर फर्स्ट होम, राइट? और ऐसे में दे कैन रियली हेल्प यू, फर्स्ट होम अपग्रेडिंग और रीफाइनेंसिंग. Anything that you want to know, definitely get in touch with Dream Home Mortgage. DreamHomeMortgage.com is the website. 972-245-5626 is the number to call. All right, I'm going to go on to this next track or let's see. Okay, let's see if you can guess what song I am going to play. I hope it doesn't start right here. Okay, let's see. Okay, aap guess karo aur badle mein mere paas aapke liye ek aur giveaway hai and that is from Neon Cactus. Ladies and gentlemen, $20 ka gift card, dine-in gift card for all of you. Guess the song, as simple as that. Thoda sa prelude and you have to call me at 972-235-5555. Tell me what song is this? अगर आपने गाने का टाइटल बता दिया तो आप जीत सकते हैं नियॉन कैक्टस की तरफ से एक अमेजिंग सा तोहफा एंड दैट इज $20 गिफ्ट कार्ड. यू आर लाइव ऑन एयर. प्लीज मुझे कहिए कि आपने एक महीने के अंदर अंदर इनसे नहीं जीता है, देन यू आर डेफिनेटली एलिजिबल. बताइए आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम है वानी.
0: वानी, सो व्हाट्स द आंसर टू दैट? गा के बताएंगे तो ज्यादा मजा आएगा.
1: रात के 2:30 बजे कोई सहनाई बजे.
0: बिल्कुल सही जवाब वानी, यू डेफिनेटली गेट दिस फ्रॉम नियॉन कैक्टस. कंग्रेचुलेशंस टू यू. यही गाना बजाते बजाते जरूर पहुंचे फेयरव्यू में नियॉन कैक्टस. $20 का गिफ्ट कार्ड, डाइनिंग गिफ्ट कार्ड, एक ऐसी जगह जहाँ पे ना मेक्सिकन खाना और ग्लोबल एक जो इन्फ्यूजन है उसमें वो आपको बहुत शानदार लगने वाला है. वाइब भी शानदार है, कॉकटेल्स मॉकटेल्स भी शानदार है, एंड हैप्पी आवर्स मंडे टू फ्राइडे है. वाओ, नियॉन कैक्टस ने वानी के चेहरे पे जो वो स्माइल लेके आई ना, वो जो हंसी की आवाज सुनाई दी, बात बन गई यार. थैंक यू, यू होल्ड द लाइन.
1: थैंक यू सो मच.
0: Absolutely, my pleasure. You have totally earned it, and now what you are going to earn also is this song, absolutely free.

और पहली बार मेरी नजर में ये कहानी आई है एंड वानी द विनर ऑफ द नियॉन कैक्टस गिव अवे शी सेड कि ये गाना उनके उनके जिंदगी के साथ बहुत जुड़ा हुआ है एंड दैट इज बिकॉज कि जब उनका उनका बच्चा जो है वो रात को नहीं सोता था तो दिस इज अ सॉन्ग दैट शी यूज टू सिंग रात के 2:30 बजे. I'm glad that we are adding the neon cactus tadka to your cherished memory here. Once again, you are tuned into Furniture Radio 104.9 FM. This is Gupchup Gali with me too. Up next is the segment which we call FIFA Fever.

0: यू आर लिस्निंग टू फर्नीचर रेडियो 104.9 एफएम गपशप गली में. आज हमने तबीयत से नेशनल बी अ डॉग डे को सेलिब्रेट किया एंड कुछ अजीब अजीब पर्क्स जो लोगों के होते हैं उनमें से एक आमिर खान का जो है वो शेयर करना चाहती हूँ. एंड दैट इज यू नो राइटिंग अ नोट टू मंसूर खान बिफोर ही टेक्स अ फ्लाइट कि उनका जो भी प्रोजेक्ट है वो सारा वो डिटेल्स छोड़ के जाते हैं कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो फिर वो कंटिन्यू कर सकें. ये क्वर्क्स इज ज़्यादा एक पैशन फॉर हिज वर्क लगता है. डोंट यू थिंक सो? इट इज़ इंटरेस्टिंग क्या क्या अलग अलग क्वर्क्स होते हैं लोगों के. नहीं, यू आर लिसनिंग टू फर्नीचर रेडियो 104.9 एफएम. एक छोटा सा ब्रेक, फिर मिलते हैं राइट हियर ऑन दिस फ्रीक्वेंसी.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Number restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Heere moti, main na chahun.
8: Achha, manifest

0: or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
1: Heere moti, main na chahun.
2: Achha, manifest karne se pehle thoda dobara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free. और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर, चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो। अब शाइन डबल विद इन बजट, लग्जरी ब्रिलियंट सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
3: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया? कभी पॉलिसी समझ भी आया?
4: नहीं आया।
3: मुझे भी नहीं आया।
5: आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं।
6: Sinara Inc. and Humaira Jumani Insurance. Whether it's home, auto, health or business, every policy is customized around you. Hotels, motels, gas stations and small businesses, they help protect what you worked hard for. No confusion, no unnecessary extras. Call Humaira Jumani at Sinara Inc. 972-863-772. That's 972-863-772.
7: Visit www.sanadainc.com today.
8: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
9: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
10: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
11: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
12: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी।
13: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
14: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
13: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
14: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
13: ये क्या होता?
14: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
15: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस। फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
11: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
16: Hello, accident claim? Okay, name of the lawyer?
17: उमर ख्वाजा।
18: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
19: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
1: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
19: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
1: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
19: सच में? सब संभालेंगे?
1: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
11: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
14: Tracks that put you on the right track.

All right, this is a dance version of that song that I've enjoyed from the film Kill that you heard. और Kill में राघव जुयाल के साथ क्या है लक्ष्य कपूर. These two acted so well in this one. They are definitely going to become stars. और अब राघव जुयाल का तो भाई नाम ही फिल्म का है भाई तेरा स्टार है, जो कि रिलीज होने वाली है 30th of July, एंड उसी का एक गाना लगाने वाली हूँ अभी अभी. लेकिन अगर रियल स्पोर्ट्स स्टार्स की बात करूँ तो Let's talk about FIFA, ladies and gentlemen. This is a FIFA segment, a tournament that started with 48 teams. June 11th ko, more than a month that it has been. Teen titans jo hamare bach gaye hain, three star teams jo hamare bach gaye hain, unke bare mein hi baat karna chahte hain. Sabse crazy baat pata hai kya hai? There is absolutely no ordinary outcome left on the table. Every single team still standing is chasing a legacy jo ya to kabhi nahi hua ya phir generation से देखने को नहीं मिला. फर्स्ट अप स्पेन, इट इज एन एब्सोल्यूट गोल्डन एरा फॉर देम. और क्या खेला उन्होंने कल, बाप रे बाप. इफ दे लिव द वर्ल्ड कप दे विल बिकम द फर्स्ट नेशन इन फुटबॉल हिस्ट्री टू होल्ड द वर्ल्ड कप, द यूरोज एंड ओलंपिक गोल्ड ऑल एट द सेम टाइम. क्या अमेजिंग बात है यार. कल कमाल खेल के दे आर स्ट्रेट इन टू द फाइनल्स नाउ. ऑल्सो अगर ये फीफा वर्ल्ड कप जीते तो उनके यंग प्रोडिजी लमीन यमाल विल बिकम अ वर्ल्ड चैंपियन in just 6 नहीं एक्चुअली 5 days after turning 19. Can you believe what a week it is for him? मंडे को था इनका बर्थडे एंड ही हैज टर्नड 19. एंड टॉक अबाउट ए बर्थडे गिफ्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, नहीं स्पेन इज गोइंग टू फेस द टीम दैट विंस टूडे एट द अटलांटा स्टेडियम. इंग्लैंड और अर्जेंटीना दे गोइंग टू गो हेड टू हेड इन द लास्ट ऑफ अ हाई वोल्टेज वर्ल्ड कप सेमीफाइनल एट 2 PM. एंड इस मैच में स्टेक्स इतने ज्यादा हैं कि दोनों टीम्स के लिए ये डू और डाई सिचुएशन है, ये तो कोई शक की बात ही नहीं है. ऑब्वियसली द विनर विल बुक ए डायरेक्ट टिकट टू द ग्रैंड फिनाले at MetLife Stadium in New Jersey where they will face Spain. Isi ke baare mein kuch aur charcha that we are going to do after this song. Don't worry.

दैट्स एन अमित त्रिवेदी क्रिएशन, और अमित त्रिवेदी के ही एक और गाने पे जाने वाले हैं। दिस इज फ्रॉम द फिल्म भाई तेरा स्टार है, स्टारिंग राघव जुयाल। एंड यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक क्वर्की सी फिल्म जो है वो चल जाएगी थिएटर्स पर। जुलाई 30th इट इज रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड। फिलहाल वर्ल्ड वाइड जो चर्चा है वो है आज के मैच के बारे में, द लास्ट ऑफ द सेमीफाइनल मैच ऑफ द फीफा सीरीज। अर्जेंटीना और इंग्लैंड खेलने वाली है, एंड रीनिंग चैंपियंस अर्जेंटीना फाइटिंग टू डिफेंड देयर क्राउन एंड सिक्योर अ हिस्टोरिक बैक टू बैक ट्रॉफी। जबकि इंग्लैंड के लिए दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू एंड ए 60 ईयर्स ड्राउट, क्योंकि उन्होंने 1966 के बाद से कोई वर्ल्ड कप फाइनल नहीं खेला है। एंड इफ दे एडवांस एंड विन द टूर्नामेंट, दे विल बिकम द फर्स्ट नेशन टू सक्सेसफुली रिटेन द वर्ल्ड कप सिंस पेलेज ब्राजील डिड इट, यू नो, आई थिंक बैक इन 1962। अगर अर्जेंटीना जीत जाती है, दे वुड बिकम द फर्स्ट नेशन टू विन बैक टू बैक वर्ल्ड कप सिंस पेलेज ब्राजील डिड इन 1962, 64 ईयर्स बैक। मेसी वुड रिटायर एज ए टू टाइम चैंपियन, सीमेंटिंग हिज गोट स्टेटस फॉर एवर। और अर्जेंटीना ट्रॉफी काउंट में से सिर्फ ब्राजील के पीछे ही रहने वाली है। सो दिस इज ऑल दैट इज एट स्टेक, and there is an iconic deep-rooted football rivalry between these two nations that we will talk about right after this Amit Trivedi song for all of you right here on Gupshup Gali with me too.

जी हाँ, उस पिंजरे को खोले जहाँ पर आप सोचते हैं कि सर्टन सर्विस दैट यू आर गेटिंग, बस यही इसी को एक्सेप्ट कर लेना है. उस पिंजरे से बाहर आके देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास. इफ़ वी टॉक अबाउट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, ये आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है जहाँ पे आपको सेम डे अपॉइंटमेंट मिलता है. डॉक्टर्स आपको आराम से आपकी आपको देखने वाले हैं टू गेट टू यू नो द सोल्यूशंस दैट यू नीड और सीकिंग फॉर योर हेल्थ. या एनुअल चेकअप के लिए आप जा रहे हो तो भी, और साथ में अगर एंजाइटी केयर, फाइब्रोस्कैन फॉर अल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स, विटामिन B12 डेफिशिएंसी टेस्टिंग, ये तो मैं कुछ ही नाम बता रही हूँ. बेसिकली सेइंग दैट एवरीथिंग इज अवेलेबल अंडर वन रूफ एट पैशन हेल्थ. जरूर उनके साथ अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करें 2146666259. दिस मल्टी डिसिप्लिनरी केयर टीम दैट दे हैव दैट विल रिड्यूस यू नो एंड सॉर्ट ऑफ अवॉइड योर ट्रिप्स टू एमरजेंसी विजिट्स और वो हॉस्पिटल एडमिशंस. दे प्रॉमिस दैट दे आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू टू इम्प्रूव हेल्थ आउटकम्स, एनहांस पेशेंट एक्सपीरियंसेस एंड लोअर द टोटल कॉस्ट ऑफ केयर फॉर द कम्युनिटीज दे सर्व अक्रॉस नॉर्थ टेक्सस. PassionHealthPhysicians.com is that website and 2146666259 is the number. अब पैशन की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे हम भी पैशनेट हैं अबाउट फीफा. देयरफॉर दिस लास्ट सेगमेंट एब्सोल्युटली एंड एंटायरली डेडिकेटेड टू फीफा लेडीज एंड जेंटलमैन. और आज अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में मेसी की टीम अपने क्लासिक लाइट ब्लू और वाइट स्ट्राइप्स में नहीं देखी जाएगी. इंस्टेड दे रिक्वेस्टेड फीफा टू वेयर देयर नेवी ब्लू अवे किट और द चेंज किट एज इट इज कॉल्ड, एज यू नो दे बिलीव इन दिस कबाल, यानी कि सुपरस्टिशन. और ये क्यों है ये मैं आपको बताने वाली हूँ. अगर हम हिस्ट्री देखें ना तो द लैटिन अमेरिका साइड हैज ओनली बीटन इंग्लैंड ट्वाइस इन 5 वर्ल्ड कप मीटिंग्स. और दोनों बार जब वो जीते इन द नॉकआउट स्टेजेस दे वर वेयरिंग द एडिडास ब्लू किट. 1998 का पेनल्टी शूट आउट विन सबको याद होगा, लेकिन उससे भी बड़ा मोमेंट जो था वो था 1986 के क्वार्टर फाइनल में. नाउ टीम मैनेजर कार्लोस ही समहाउ मैनेज टू गेट दोज ब्लू जर्सीज, दोज नेवी ब्लू कस्टम जर्सीज, वो उन्होंने अरेंज करवाया किसी तरह से. उसी ब्लू जर्सी में मैराडोना ने हिस्ट्री क्रिएट की थी टू लेजेंडरी गोल्स के साथ. द हैंड ऑफ गॉड दैट यू मस्ट हैव हर्ड, व्हेन मैराडोना जंप्ड फॉर दैट एरियल बॉल He sort of illegally punched the ball with his left hand into the back of the net. The referee missed the foul, allowing the goal to stand. और उस एपिसोड के 4 मिनट बाद ही मैराडोना ने अपने हाफ से जो है 60 यार्ड का एक रन ऐसा लगाया, फाइंडिंग हिज वे अराउंड 5 इंग्लैंड प्लेयर्स एंड गोलकीपर्स टू स्कोर अ स्टनिंग गोल, व्हाट वुड लेटर बी कॉल्ड एज गोल ऑफ द सेंचुरी. नाउ द मैच अल्टीमेटली एंडेड इन अ 2-1 स्कोर विद अर्जेंटीना कमिंग आउट ऑन टॉप. नाउ बिकॉज ऑफ द गोल ऑफ द सेंचुरी एंड द हैंड ऑफ गॉड गोल जिसका नाम दिया गया है, उसके कारण वो जीते मैच. Now, match ke baad jab Maradona se pucha gaya about the infamous hand goal, he very famously said it was scored a little with the head of Maradona and a little with the hand of God. Aur wahan se ye jo phrase aaya hai. And Maradona aur unki team ne Adidas ke blue kit ko pehna tha. Aur Argentina chahti hai aaj ki match mein luck aur history dono unke side rahe. And therefore, they had requested for the navy blue instead of the classic light blue and white stripes jersey which FIFA has accepted. And in just few hours from now we will find out if the blue kit magic actually worked for Argentina. And yes, ladies and gentlemen, aaj ke baad semifinals to khatam ho jayega. Saturday ko third runner up ke liye match hai, and then Sunday ko the grand finale of FIFA 2026.

0: विशिंग टीम अर्जेंटीना एंड इंग्लैंड ऑल द वेरी बेस्ट. मुलाकात होगी कल 10 बजे आप लोगों के साथ. दिस इज गपशप गली विथ मी टू साइनिंग ऑफ फॉर द डे.
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं.
2: तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: कुछ भी नहीं. Oura Debt Relief will do it for us.
5: क्या मतलब?
6: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
6: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
5: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
7: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी.
9: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
10: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
11: वेट, इतना सब और प्राइस?
10: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
12: मैं हीरो.
13: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At shopcompareinsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL, and guaranteed income annuities from highly rated carriers, so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
14: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
15: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
16: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
15: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज.
16: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट.
17: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
18: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
17: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
18: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
17: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
18: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
17: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
19: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
20: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है.
19: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है.
20: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है.
10: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support, aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
21: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी और ये शो है आफ्टरनून अड्डा। एक ऐसा अड्डा जहाँ आप और मैं ना पूरे के पूरे दो घंटे एक साथ होते हैं, ढेर सारी दुनिया जहाँ की बातें करते हैं। और आज का टॉपिक शुरू करते हैं एक ऐसी न्यूज से जिसने पूरी दुनिया का अटेंशन ग्रैब कर लिया। आपको तो याद ही होगा कि रिसेंटली न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर एक कपल ने बिना परमिशन एकदम टॉप पे चले गए, वहां पे प्रपोजल किया, प्रपोजल हुआ, एंगेजमेंट भी हुई, लेकिन के बाद दोनों को पुलिस ने भी अरेस्ट कर लिया। फाइनली अब तो वो रिलीज हो चुके हैं। लेकिन और हम ना ऐसे किसी को ऐसे डेंजरस स्टंट्स करने के लिए बिल्कुल भी इनकरेज नहीं करते, लेकिन एक इस इंसिडेंट से एक इंटरेस्टिंग सवाल मेरे मन में आया और मैंने अपने फैमिली मेंबर से पूछा, सोचा कि अब अपने लिसनर से भी पूछती हूँ कि आपने प्यार में, दोस्ती में या किसी भी चीज में, किसी भी रिलेशन में ऐसी कौन सी क्रेजी चीज की है जो आपको लगता है कि यू नो इससे तो खतरनाक मैं अभी तक किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड के लिए बिना इन्फॉर्म किए उसके बर्थडे पे एकदम दरवाजे पे चले गए और वो देख के एकदम शॉक्ड हो गया हो। बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप मुझे कॉल करके बताएं 972-235-5555।

आज हम बात कर रहे हैं ऐसी क्रेजी चीजों के बारे में जो आपने अपने किसी प्यार मोहब्बत या किसी दोस्त के लिए किया है, जो क्रेजी वियर्ड थिंग्स की हैं। और क्रेजी का मतलब ये नहीं होता है कि पहाड़ पे चढ़ जाएं, किसी बिल्डिंग पे चढ़ जाएं, कहीं से कूद जाएं, ये नहीं। कभी कभी लाइफ की सबसे क्रेजी चीजें होती हैं कि किसी दोस्त के लिए लास्ट मिनट तक एयरपोर्ट पहुंच जाना, या फिर पेरेंट्स को चुपके से फर्स्ट बाइक राइड दे देना, क्रश के लिए दूसरी सिटी ट्रैवल कर देना, या फिर किसी के लिए 2 बजे रात को मैगी बनाना भी, अगर आपने नॉर्मली ये नहीं करते हैं तो ये भी एक क्रेजी चीज है। और अभी हमें खान साहब का फोन आया था और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई उन्होंने कि वो कनाडा में रहते थे और उनकी गर्लफ्रेंड आई थिंक यूएस में रहती थी, और उन्होंने उनसे मिलने के लिए, उनके साथ रहने के लिए जो है पूरे कनाडा ही छोड़ दी, एक कंट्री ही छोड़ दी। उनको I-90 वगैरह की प्रॉब्लम भी थी, बट कैसे उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटीज को मैनेज किया वो भी काफी फनी था। और फाइनली वो यूएस शिफ्ट हो गए एंड दे आर अ वेरी हैप्पी कपल। दे गॉट मैरिड इन 1986। पेरेंट्स रिलेटिव्स को बाद में बताया क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम है, मानते नहीं। बहुत बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से, हमारे लिसनर्स की तरफ से, और बाकी लिसनर्स से भी अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप अपनी क्रेजी स्टोरीज हमारे साथ शेयर करें बाई कॉलिंग अस एट 9722355555।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Zindagi ek safar hai suhana. Yahan kal kya ho, kisne jana.
4: Life ho ya health, kab kya ho jaye, pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath naye Kaiserway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, X-ray, CT scan, heart testing aur med spa. Sab kuch ek hi roof ke niche. Lunoxy Medical Urgent Care. Open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
5: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
6: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
5: नहीं।
6: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
5: नहीं।
6: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
5: वो भी नहीं।
6: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
4: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555. AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
7: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
8: Are you tired of the

आप सुन रहे हैं फनेशियल रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी विद योर फेवरेट शो द आफ्टरनून अड्डा। आज हमने बात की कौन सी ऐसी सबसे क्रेजी चीज जो हम लोगों ने अपनी अपनी लाइफ्स में की है फॉर आर लव्ड वंस, फॉर आर फ्रेंड्स, फॉर आर रिलेटिव्स एंड एवरीवन अराउंड अस। और बहुत सारे लिसनर्स ने बहुत सारी अमेजिंग स्टोरीज बताई, कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर पाई बट कुछ मैं अब नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इस सेगमेंट को क्लोज करने का वक्त आ गया है। लेकिन मैं अपना भी तो बताते जाऊँ कि भाई मैंने सबसे क्रेजी चीज क्या की है लाइफ में, और जो मैंने किया है उसे कहते हैं शादी। जी हाँ, मैं जनरली 10-11 बजे से ज़्यादा तक नहीं जगी रह सकती, मेरी आंखें ऑटोमेटिकली बंद होने लगती हैं। लेकिन जो हमारा शादी का मुहूर्त था वो रात को 3 बजे का था, मतलब 3:30 बजे का था, और मैं पूरी रात जगी रही विथ माय आईज वाइड अवेक एंड स्माइलिंग एंड पोजिंग फॉर द कैमरा। सो यार मतलब सबसे क्रेजी चीज़ तो मेरी यही हुई। वैसे अब मैं आपको पूछने जा रही हूँ एक गिव अवे राउंड का क्वेश्चन, लेकिन इस सॉन्ग के बाद।

वक्त आ गया है हमारे गिव अवे राउंड का। अगर आप सही जवाब देते हैं और आप होते हैं आज के लकी विनर, तो आप जीत सकते हैं चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से $10 ऑफ ऑन अ बिलिंग ऑफ $50, और ये डाइन इन ऑप्शन के लिए है। सो तैयार हो जाइए। आपसे इतनी ही गुजारिश है, इतनी ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने फन एशिया के किसी भी शो में लास्ट वन मंथ में ये गिव अवे ऑलरेडी जीत लिया है, वहाँ का खाना एंजॉय कर लिया है, तो प्लीज लेट अदर्स ऑल्सो एंजॉय इट, प्लीज डू नॉट पार्टिसिपेट, ओके। और बाकी लोगों के लिए तो तैयार हो जाइए, एकदम मोबाइल फोन या फिर आपको फोन पे तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं क्वेश्चन दो इंटरेस्टिंग और ईजी पूछने वाली हूँ, ठीक है। और आज का सवाल है, आपको बताना है कि वॉट इज इट, ठीक है। और वह कि आई हैव वन आई बट आई कांट ब्लिंक एंड आई हैव ओनली वन आई, ओके। ये बात का ध्यान रखें कि मेरे पास एक आंख है लेकिन मैं पलके नहीं चिपका सकती, मैं ब्लिंक नहीं कर सकती, मैं क्या हूँ? अगर आपको जवाब पता है तो कॉल कीजिए 972-235-5555 पे।

हमें हमारा लकी विनर मिल चुका है। हमने आपसे क्वेश्चन किया था कि वो क्या है जिसके पास सिर्फ एक आंख है लेकिन वो ब्लिंक नहीं कर सकता, और उसका जवाब है नीडल यानी कि सुई, और कुछ लोगों ने इविल आई भी बोला, एंड मैं वो आंसर भी डेफिनेटली एक्सेप्ट करूंगी क्योंकि लॉजिकली तो वो भी सही है। और आज के जो हमारे विनर हैं वो है अंशुल। कॉन्ग्रेचुलेशंस अंशुल एंड टू योर डॉटर, बिकॉज आई नो कि जवाब तो आपकी बेटी ने दिया था कार में। आपको मिलता है चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से $10 ऑफ ऑन बिलिंग ऑफ $50 जब आप वहां जाएं, वहां का खाना खाएं। एंड एक और न्यूज है बाकी सारे लिसनर्स के लिए भी कि मंडे टू फ्राइडे चंडीगढ़ बाइट्स में होता है स्पेशल थाली, जो कि हर आफ्टरनून हर लंच को रोटेट होता है, नई नई डिशेस खाने को मिलती हैं आपको। तो आप जरूर जाएं मैकडर्मट ड्राइव इन एलन जहां पे ये लोकेटेड है, और अगर आपको इस बारे में कोई और डिटेल चाहिए तो आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज चंडीगढ़ बाइट्स .com।

और अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनने की नैया है फन एशिया के भरोसे 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी। ये शो है आफ्टरनून अड्डा और मैं आपसे बहुत सारी बातें करने वाली हूँ अगले एक घंटे तक। जी हाँ, और अभी ना मेरे को एक फ्रेज याद आ रहा है कि हम आपने तो पॉपुलर सा फ्रेज सुना ही होगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और ऐसी बहुत सारी सीरियस हेल्थ कंडीशंस हैं जिनको कि अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं वाया रूटीन प्रिवेंटिव केयर एंड रिकमेंडेड स्क्रीनिंग्स। क्योंकि अगर आप ये छोटे छोटे प्रिवेंटिव स्टेप्स लोगे ना, तभी जाके आपके जो आने वाले ईयर्स हैं वो हेल्दी रहेंगे, आपके ऑर्गन्स, आपकी बॉडी सपोर्टिव रहेगी, आप एनर्जेटिक रहेंगे। तो ज़रूर केयर लीजिए अपनी अपनी हेल्थ की। एंड ये था हेल्थ टिप ऑफ द डे फ्रॉम पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।

मन जावे मैनू शॉपिंग करा दे, मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स से थोड़ी ज्वेलरी दिला दे। ये लोकेटेड है प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को में। यहाँ आपको मिलेगा ब्यूटीफुल रिंग, इयररिंग्स से लेके डार्जलिंग नेकलेसेस से कंटेम्प्ररी डायमंड स्टाइल तक। यहाँ का जो हर पीस है ना, एलिगेंट है, टाइमलेस है और इट हैज़ बीन क्राफ्टेड टू शाइन, टू स्पार्कल, ताकि आपके स्पेशल मोमेंट्स को और स्पेशल बनाया जा सके। चाहे वो इंगेजमेंट हो, एनिवर्सरी हो, सेलिब्रेशंस हो, या फिर आप अपने आप को ट्रीट देना चाह रहे हैं तो भी ज़रूर जाएं। और अगर आपको इनका लेटेस्ट कलेक्शन चेक करना है तो आप इनका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स गाइस।

देखिए, अगर आप इश्क मोहब्बत में रातें लंबी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप टैक्स प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब लॉन्ग टर्म वेल्थ का सोच के अगर अपनी रातें लंबी कर रहे हैं तो याद रखिए कि टाइम इज ऑल्सो मनी। आपको जाना चाहिए माई टाइम इक्विटी के पास, जो कि CPS उधेर पाई के द्वारा है ये इंस्टीट्यूशन, ये फर्म, और ये हेल्प करता है इंडिविजुअल्स और फैमिलीज को टू बिल्ड स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, जो कि उनके लॉन्ग टर्म वेल्थ प्लानिंग में हेल्प आता है रिटायरमेंट के लिए, या फिर अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करना चाह रहे हैं, बूस्ट करना है, देन ऑल्सो माई टाइम इक्विटी इज डेफिनेटली अ परफेक्ट स्टॉप फॉर यू। यहां आपको पता चलेगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल स्टेट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताई जाएंगी, और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी देंगे देन योर रेगुलर और योर करेंट इन्वेस्टमेंट। माई टाइम इक्विटी पे जाने के लिए आप उनके वेबसाइट पर जा सकते हैं, विच इज माईटाइमइक्विटी.com, या फिर आप कॉल कीजिए उन्हें @4697021272।

वो दिन भी क्या दिन थे जब हमें देसी खाना मिल जाया करता था। लेकिन अगर आप यहाँ पे यूएस में और डालस फ्रिस्को और इन एरियाज में ढूंढ रहे हैं कि भाई अच्छा खाना देसी टेस्ट कहाँ मिले, तो पेस्ट्री ईटरी जरूर जाएं। ये लोकेटेड है एट हब 121। यहाँ आपको मिलेगा सिजलिंग कबाब से लेके फ्लेवर फूड चाट सब कुछ, और मॉकटेल्स भी मिलते हैं जो काफी रिफ्रेशिंग होते हैं। आप ब्रंच के लिए जा सकते हैं, लंच के लिए जा सकते हैं, डिनर के लिए जा सकते हैं, डेट नाइट के लिए जा सकते हैं, या फिर ऐसे ही दोस्तों के साथ मस्ती करते करते खाने खाने का मन है तो भी जरूर जाएं। और अगर आपको इस पे और डिटेल्स चाहिए तो इनके वेबसाइट पे भी जाइए, विच इज पेस्ट्री ई3 .com।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
3: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
2: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
3: वेट, व्हाट?
4: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
5: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
4: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
2: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
4: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
2: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
7: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
8: इन प्लेनो।
7: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 469-298-3870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
9: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
4: हाँ।
9: घर रिलोकेट करनी है?
4: हाँ।
9: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
4: हाँ भाई हाँ।
9: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
10: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में trusted shipping और moving services. SFL Worldwide, हर move का perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
11: Breaking news! Home loan या refinance अब और भी आसान. MyFamilyHomeLoan.com देता है transparent pricing, no hidden fees, no surprises. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI-powered platform real-time rates compare करता है, ताकि आपको मिले better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews, हजारों families का भरोसा. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338.

0: कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338। myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
5: प्लीज डोंट से योर यूजुअल प्लेस अगेन, आई एम टायर्ड ऑफ द सेम फूड।
6: एक्सक्यूज मी, इट्स कॉल्ड बीइंग लॉयल,
5: इट्स कॉल्ड बीइंग प्रेडिक्टेबल।
6: ओके देन, Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
5: And what's so special at Neon Cactus?
6: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
5: Not bad.
6: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
5: Okay, this I didn't expect from you.
6: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
7: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
8: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
7: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
8: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
7: सच में सब संभाल लेंगे?
8: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
0: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

आप सुन रहे हैं फनेशर रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी। अभी स्टूडियो में वक्त हो गया है 2:10 और अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं टेक्सास के और आपको चाहिए एक स्मार्ट कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशन तो तारा कमर्शियल एनर्जी है ना। ये 2002 से टेक्सास बिजनेसेस की मदद करते आए हैं, उनके लिए कॉम्पिटिटिव रेट्स लेके आए हैं और उनकी सर्विसेज काफ़ी रिलायबल होती हैं और इनके एनर्जी प्लान्स भी काफ़ी कस्टमाइज होते हैं आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग। अगर आपको उनसे कोई बातें करनी है, कंसल्टेशन लेनी है तो आप उनके वेबसाइट पे जा सकते हैं विच इज taraenergy.com या फिर आप उन्हें फोन कीजिए @844-428-2808। ओके।

क्या आपको ऐसा लगता है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं हॉस्पिटल में या फिर उनके क्लिनिक में, तो वो आपके साथ इनफ टाइम स्पेंड नहीं करते? वो फटाफट आपसे जो है, अच्छा ये हुआ ये हुआ, ठीक है ये ले लो दवाई ले लो, और रफा दफा कर देते हैं। अगर ऐसा है तो आप अपना हॉस्पिटल चेंज कर सकते हैं, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको पेशेंट नहीं फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है, और आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 30 मिनट अपने डॉक्टर के साथ, ताकि आप उनको बता सके कि एग्जैक्टली आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है आपकी और आपकी फैमिली की, जिसके कारण जो भी आपको हेल्थ कंसर्न हो रहे हैं वो उसको समझने में बेहतर होता है। और ये ना आपकी हेल्थ के लिए बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एनुअल फिजिकल चेकअप, एंग्जाइटी केयर, फाइब्रो स्कैन भी होता है अगर अल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स हैं, बहुत सारे विटामिन्स की भी टेस्टिंग होती है जैसे कि B12 डेफिशिएंसी और भी दूसरे विटामिन्स की। और इतना ही नहीं है, बहुत सारे सर्विसेज हैं जो कि आप उनके वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। और अगर आपको उनको कॉल करना है फॉर अपॉइंटमेंट, तो आप उनको एक नंबर है वहाँ पर भी रीच आउट कर सकते हैं, विच इज़ 214-666-6259। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, इट्स 214-666-6259।

आ गई मैं, आ गई। आप कब से मुझे बुला रहे थे, आ जा माही वे। और आने के साथ आपके लिए एक सवाल भी लेके आई हूँ। क्या आपको पता है कि विच इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द US? इट्स एजी फिनटैक्स। ये लेके आए हैं इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि अभी आपके अनएक्सप्लोर्ड अनटैप्ड पोटेंशियल को दिखाता है, उनको टैप करने में मदद करता है, इंडिविजुअल्स के लिए भी एज वेल एज फॉर बिजनेसेस। ये ट्रस्टेड हैं, इफिशियंट हैं और आपको फ्यूचर रेडी करते हैं, आपके टैक्स प्लानिंग सब कुछ में आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपको उनसे बातें करनी हो, कंसल्टेशन लेना है, तो आप उनको कॉल कर सकते हैं 4699429888, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जाइए, which is ajfintax.com।

0: टेंशन थोड़ी कम लेना। वैसे वक्त हो गया है मेरे जाने का। दिस इज आरजे सिमी साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।
1: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, khoobsurat libas khushiyon ko dugna kar deta hai.
4: Har khushi mein aapke saath Manyavar Mohe, traditional celebration wear for men, women and children, crafted with exquisite blended fabrics. Manyavar Mohe, located on Regent Boulevard of 635 East in Irving.
5: This week, every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen. Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week. Plus, 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99. And 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99. So grab your squad, grab your table, and don't miss the final kick. Fun Pizza Kitchen Frisco. Offer valid till 19 July only.
6: Beta, 95% aaye?
7: Haan, mummy.
6: Good. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
8: मेरा?
6: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
8: वो
9: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
10: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
11: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At shopcompareinsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL and guaranteed income annuities from highly rated carriers, so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
12: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
13: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.

रोमांटिक मेलोडीज आप सुन रहे हैं सुनहरी किरण पे, और आगे बढ़ते हुए रोमांटिक मेलोडीज तो चलती ही रहेंगी, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। और अगर आप किसी ऐसे प्राइमरी केयर को ढूंढ रहे हैं जो आपके बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में उतना ही पैशनेट हों जितना कि आप हैं, तो देन दैट प्लेस इज पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। दे ऑफर यू और दे गिव यू अपॉइंटमेंट्स फॉर 30 मिनट्स, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी जो डॉक्टर आते हैं और देख के चले जाते हैं, मतलब बंदे को रहता है कि भाई ये उन्होंने तो मेरे साथ टाइम ही नहीं स्पेंड किया या मेरे बात ही पूरी तरह नहीं पूछी। तो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, एवरी अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल्ड फॉर 30 मिनट्स बिकॉज दे वांट टू अंडरस्टैंड योर हेल्थ, एंड 30 मिनट्स इज ऑल इट टेक टू कंप्लीट योर एनुअल फिजिकल्स। एंजाइटी केयर आपको चाहिए, फाइब्रो स्कैन फॉर एल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स हैं आपके, वाइटामिन B12 डेफिशिएंसी टेस्टिंग आपने करवानी है, या फिर और भी बहुत कुछ जो कि पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपके लिए प्रोवाइड करता है। सो ऑल यू हैव टू डू इज कॉल देम एंड स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट, बुक योर अपॉइंटमेंट, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस गिव देम अ कॉल 214-666-6259 is the number जहां आपको कॉल करना है। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर की टीम इज ऑलवेज देयर टू आंसर योर क्वेश्चंस एज वेल एज बुक योर अपॉइंटमेंट्स एंड लेट यू टेक दैट इंपॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड्स योर हेल्थ। सो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, दिस इज योर हेल्थ एंड देयर passion. We are tuned into romantic melodies right here on Sunehri Kiran. About 3 o'clock tak main aapke liye romantic melodies play karne wali hu, and then from 3 till 4 o'clock we will get into pop frequency. Stay tuned.

Well, that was such a beautiful song. अरमान मलिक की आवाज में सुन रहे थे आप, और इसी तरह के कुछ खूबसूरत रोमांटिक गाने मैंने आपके लिए लाइन अप किए हुए हैं. लेकिन अब वक्त है आपकी पसंद के रोमांटिक मेलेडी के बारे में जानने का. फूडिस्तान आपके लिए एक गिव अवे लेके आया है और हम उसी को कॉन्वर्सेशन कॉर्नर में कन्वर्ट करने वाले हैं. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि फूडिस्तान आपको कोई यू नो फ्रेश इंडियन ग्रोसरीज यू लुकिंग फॉर इट, हलाल मीट आपको चाहिए, फ्रेश प्रोड्यूस, बेकरी आइटम्स, और जब आप शॉप कर रहे हो तो जैसे कभी कभी दिल करता है ना कि लाइव पानीपुरी का स्टेशन हो तो क्या ही बात है, जरा खड़े होकर ताज़ा ताज़ा पानीपुरी भी खा ली जाए, तो वो भी वहाँ पे अवेलेबल है. गन्ने का रस पीने का आपको शौक है फ्रेश फ्रेश, तो वो भी वहाँ ताज़ा ताज़ा बन रहा होता है. और इस सब के साथ अपस्केल डाइनिंग एक्सपीरियंस भी है वेयर इनसाइड फूडिस्तान इन ऑबरी. तो और स्पेशल बात ये है कि दे ऑफर अ लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी ऑन ग्रोसरीज एंड फ्री डिलीवरी ऑन योर orders just over $30 within 5 miles. So ye to hui foodistan ke bare mein baat, and now you have a chance to win a free item from Divibe restaurant jo ki ek upscale Indian restaurant hai. It is located inside फूडिस्तान. तो आप ये फ्री आइटम कैसे जीत सकते हैं? रोमांटिक मेलेडीज चल रही हैं तो मुझे कॉल करके बताइए 972-235-5555. वो कौन सा ऐसा रोमांटिक गाना है जो आपके लिए सच में यू नो वन ऑफ द आपकी टॉप थ्री या टॉप फाइव की लिस्ट में, अगर आप सोचें एकदम से आपके जहन में कोई बात आए कि यार ये गाना मेरी टॉप फाइव की लिस्ट में हमेशा रहता है, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट मोस्ट रोमांटिक मेलेडीज. मैं आपको बताती हूँ, वैसे तो भाई बहुत सारे गाने होते हैं लेकिन एक गाने मेरी फेवरेट लिस्ट में हमेशा रहते हैं जिनमें से एक है साथिया तूने क्या किया. आपको याद है ना सलमान खान और रेवती के ऊपर पिक्चराइज्ड गाना. तो ये तो हुआ मेरी पसंद का रोमांटिक सॉन्ग. आप मुझे बताइए कि आपकी पसंद का रोमांटिक गाना कौन सा है और जीत लीजिए. दिस इज कॉन्वर्सेशन For you, Conversation Corner for you with the Sunehri Kiran. 972-235-5555 is the number to the studio.

जी हाँ, मैंने किया है तुमसे प्यार. वैसे मुझे लग रहा है कि कुछ फोन लाइंस में मसला है, थोड़ी मुझे आवाज़ भी डिस्टॉर्टेड आ रही है, तो मैं आपके लिए ये गिव अवे फिर से लेके आऊंगी वंस आई फिक्स दिस प्रॉब्लम विद द फोन लाइंस. तो नो प्रॉब्लम अबाउट दैट. फिर से आप सुनिएगा और फिर से कॉल कीजिएगा, द गिव अवे इज स्टिल ऑन. लेकिन अब टाइम आ गया है आपके लिए अगले रोमांटिक मेलोडी का. वी स्टिल हैव अबाउट 8 मिनट्स. आई कैन फिट इन टू ब्यूटिफुल नंबर्स फॉर यू. दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म्स इन द US. They offer innovative financial services with untapped potential for both individuals as well as businesses. So, trusted hain ji, efficient hain, they get you ready for your future. Ye sunke aapke zehen mein koi bhi sawal aaya, koi bhi aapne finance ke hawale se, tax ke hawale se koi aap question karna chahte hain, koi concern hai aapka, to AG Fintax ko call kijiye 469-942-9888, 469-942-9888 is the number. Ya phir unki website visit kijiye, which is agfintax.com.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
4: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
5: अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
6: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
7: Calculating route, rerouting.
6: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है।
7: Location upgraded. Now heading to India Bazaar Fort Worth.
6: क्यों?
7: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
6: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
8: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
7: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
9: जिंदगी एक रंगमंच है
10: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल। असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो। पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल, हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ।
11: कॉल 972-897-1530, फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल .com।
12: जीनी, हुकम मेरे आका। हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
13: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में है।
12: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
13: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
12: और एंटरटेनमेंट,
13: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम

0: लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में है।
1: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
0: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
2: और एंटरटेनमेंट,
0: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
1: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
0: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
3: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
4: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
5: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
4: That magic removal हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड solutions विद 100% प्राइवेसी।
5: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर, कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
6: क्या मतलब?
7: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
8: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, FunAsia Radio.
10: Dallas ki dhadkan, 104.9 FM, FunAsia Radio.

You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. ये है आपका afternoon drive time with Sunehri Kiran and we are in pop frequency right now. Play करूंगी अगले एक घंटे आपके लिए कुछ पाकिस्तानी pop music. आपकी कोई फरमाइश है तो recommendation जरूर ले रही हूँ. अगर उसका कुछ अच्छी quality का गाना मिला तो आपके लिए definitely play किया जाएगा. Once again, the number to the studio is 972-235-5555. Welcome and once again, thank you for connecting. 3 to 3:30 तक आपके लिए pop frequency. वैसे तो गाने 4 बजे तक चलेंगे लेकिन 3:30 बजे आपके लिए लेकर आऊंगी द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामास अकॉर्डिंग टू द TRP चार्ट्स. बने रहिए मेरे साथ हर हफ्ते वेंसडे को 3:30 से 4 तक लेकर आती हूं आपके लिए यही चार्ट.

0: All right, with that Pasuri song, जो कि अली सेठी और शैगल की आवाज में था, सुन रहे थे आप कोक स्टूडियो सीजन 14 से. अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए आई एम गिविंग बैक और ब्रिंगिंग बैक द फूडिस्तान गिव अवे. कुछ फोन लाइन्स में प्रॉब्लम चल रहा था, अब सब कुछ सेटल हो चुका है और आपके लिए ये गिव अवे आया है. फूडिस्तान इन ऑबरी में लोकेटेड है जी, डिवाइब रेस्टोरेंट. यू हैव अ चांस ऑफ विनिंग दिस फ्री आइटम फ्रॉम डिवाइब रेस्टोरेंट, एन अपस्केल इंडियन रेस्टोरेंट लोकेटेड इन साइड फूडिस्तान. और आपको क्या करना है, मुझे कॉल करके ये बताना है. अब हम चूंकि पॉप फ्रीक्वेंसी में एंटर कर चुके हैं, तो कोई आप ड्रामा देख रहे हैं आजकल, और अगर देख रहे हैं तो आपकी पसंद का ड्रामा कौन सा है? 972-235-5555 पे कॉल कीजिए, अपनी पसंद के ड्रामे बताइए मुझे और उनके बारे में जरूर बात करेंगे व्हेन वी विल एंटर इनटू आवर टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामास. फिलहाल अगर आप ये जीतना चाहते हैं फ्री आइटम फ्रॉम डिवाइब रेस्टोरेंट लोकेटेड इन साइड फूडिस्तान इन ऑबरी, गिव मी अ कॉल एंड टॉक अबाउट योर पसंद का ड्रामा. दिस इज योर वो है ना कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण. फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. व्हाट इज योर नेम?
1: हाय, माय नेम इज आशीष.
0: हाय आशीष, आर यू वाचिंग सम ड्रामा?
1: आई एम नॉट श्योर इफ यू कॉल दिस हाउस ऑफ द ड्रैगन्स, व्हिच इज लाइक ए सीरीज.
0: ओह ओके, यस एब्सोल्युटली, हाउस ऑफ ड्रैगन. ओके, कैसा है हाउस ऑफ ड्रैगन्स ये बताइए.
1: एक्चुअली एक्सपेक्टेड से कुछ अच्छा ही है, मतलब यू नो लाइक ये जो गेम ऑफ थ्रोन्स का पार्ट में मतलब अम्ब्रेला के अंदर आता है,
0: प्रीक्वल,
1: बिकॉज गेम ऑफ थ्रोन्स या प्रीक्वल, इट हैज सेट ए सच ए हाई रिमार्क दैट आई थॉट इट विल नॉट बी एनीथिंग बिगर देन गेम ऑफ थ्रोन्स. बट टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब how the characters have been built up, especially with the House Targaryen and the dragons associated with them. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे.
0: तो मुझे बताइए कि कितने सीजन आ चुके हैं अब तक House of Dragon के?
1: अभी तो थर्ड सीजन चल रहा है. आई थिंक इट विल ओनली बी टोटली मुझे लगता है ओनली फोर सीजन, मतलब इट विल बी ओनली फोर सीजन. बट राइट नाउ दिस ईयर इट इज थर्ड सीजन एंड वी आर इन मिड ऑफ थर्ड सीजन राइट नाउ.
0: दैट साउंड्स वंडरफुल, थैंक यू सो मच. आई हैड ऑलवेज वांटेड टू टॉक टू समवन हु वुड गिव मी अ रिव्यू ऑफ हाउस ऑफ ड्रैगन. सो आपने मुझे थोड़ा सा इंट्रीग कर दिया है. आई थिंक आई शुड स्टार्ट वॉचिंग इट एज वेल. मैंने अब तक हिम्मत नहीं पकड़ी देखने की आफ्टर गेम ऑफ थ्रोन्स. जी जी,
1: श्योर श्योर, डेफिनेटली वर्थ
0: इट. यस, थैंक यू, थैंक यू आशीष. सुनते रहिए, आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर इन अ बिट. फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. व्हाट इज योर नेम?
2: हाय, दिस इज पूर्वा.
0: हाय पूर्वा, बताइए व्हाट ड्रामा आर यू वाचिंग दीस डेज?
2: तो एक हॉटस्टार पे है प्रीतम एंड पेड्रो करके, राजू हिरानी की सीरीज है वो.
0: अच्छा.
2: विच रिसेंटली वी सॉ लाइक अभी दो दिन पहले ही, एंड इट्स लाइक रियली गुड. आई मीन आई वॉच दिस विथ माई सन एज वेल, सो इट वॉज लाइक रियली गुड लर्निंग. बोलते ना वो बच्चों के हिसाब से भी अगर मैं देखूँ तो बहुत अच्छी स्टोरी है उसमें, एंड द वे इट कैप्चर इट लाइक रियली गुड. स्पेशली लाइक नाउ डेज किड्स आर मोर इन टू द फोन, सो दे आर प्लेइंग द गेम, सो वट विल हैपन इफ दे आर मोर इन टू दैट, एंड यू नो ऑल दिस थिंग्स, फॉरगिवनेस, ऑल दिस थिंग्स आर देयर. लाइक कि कहते ना हम गलतियां भी करते हैं, माफी करना भी आना चाहिए.
0: जी,
2: सो बहुत अच्छी स्टोरी है.
0: That's wonderful. Actually, आपने बोला तो मैं मुझे याद आया कि ये वही ड्रामा है ना जिसमें विक्रांत मेसी और अर्शद वारसी हैं.
2: Yes, yes.
0: Okay. Perfect, yes, perfect. Yes. I haven't started watching it, but आप recommend कर रही हैं तो I think I can spend a little bit of time on it, right?
2: हाँ, मतलब अगर I mean we have watched with our 6 year old and my son was very much curious, mama how it happened, why it happened. I mean he was more interested to know कि game खेलने से ऐसा कैसे हो सकता है. So
0: lovely.
2: I mean we explained him, but it was learning for the kids as well.
0: Okay, perfect. Purva, thank you so much for sharing this drama name, and I will announce the winner in a bit. Stay tuned. Fanisha Radio, you are live on air. What is your name?
3: हेलो
0: जी, नाम बताइए.
3: हाँ, मेरा नाम विभोर है.
0: जी विभोर, बताइए व्हाट ड्रामा वुड यू लाइक टू रेकमेंड?
3: इस सीरीज का नाम है राख. आई एम नॉट श्योर आपने देखी है कि नहीं, बट ये सीरीज में इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी जो कि 1980s के टाइम पे एक रंगा बिल्ला नाम के गैंगस्टर थे. उन्होंने इतने खराब चीजें करी, उन्होंने एट वन पॉइंट दे किल्ड the teenage brother daughter duo of an army professional in Delhi. But wo matlab kafi dark hai, but more than anything it's the acting जो कि इतनी अच्छी की है सबने, फ्रॉम द गैंगस्टर्स टू द पेरेंट्स टू एवरीबॉडी, दैट इट गॉट मी ग्रिप्ड थ्रू आउट द एंटायर शो. एंड या
0: और अगर मुझे याद पड़ रहा है, काफी अरसे बाद मैंने सुना था कि सोनाली बेंद्रे किसी ड्रामे में आने वाली है. ये वही ड्रामा तो नहीं है जिसमें सोनाली है?
3: ये वही है. जो पेरेंट्स हैं उनमें से जो मदर हैं वो सोनाली है.
0: ओके, परफेक्ट परफेक्ट. थैंक यू फॉर रेकमेंडिंग दैट ड्रामा. विभोर सुनते रहिए, आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर इन अ बिट. ऑलराइट जी, अभी आपका हमारा ये गिव अवे चल रहा है, बट आई विल टेक अ सॉन्ग ब्रेक एंड देन वी विल कम बैक विद मोर रेकमेंडेशंस ऑफ ड्रामास फ्रॉम यू.

ऑल राइट जी, ब्रेक पे जाते हुए, इस गाने की ब्रेक पे जाते हुए आपके साथ डिस्कस कर रहे थे हम द ड्रामास दैट यू आर वाचिंग और यू वुड लाइक टू रेकमेंड. बहुत खूबसूरत रेकमेंडेशंस आप सबने दी हमें, थैंक यू सो मच. और चूंकि अभी फोन लाइंस हमारे पास कोई बज नहीं हो रही, इसीलिए आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर. दिस इज द विनर फॉर फ्री आइटम ऑफ फ्रॉम डिवाइब रेस्टोरेंट लोकेटेड इन साइड फूडिस्तान इन ऑबरी. और जी आज की हमारी विनर है पूर्वा. पूर्वा अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज गिव मी अ कॉल बैक सो दैट आई कैन टेक योर इन्फॉर्मेशन एंड सेंड इट टू द रेस्टोरेंट. और हमें ड्रामा पूर्वा ने प्रीतम एंड पेड्रो रेकमेंड किया था. जी मैं नहीं, बिल्कुल आप जानते हैं जिस सीक्वेंस में आपका नंबर आता है वो एक मैथ फॉर्मूले में डलता है और उसी तरह से हम विनर अनाउंस करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. फनीजा इस तरह के बहुत सारे गिव अवेज आपके लिए लेकर आता है. ऑल यू हैव टू डू इज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
2: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे,
3: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
4: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
2: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
0: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
5: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
0: कहाँ?
6: फूडिस्तान इन ऑबरी। फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
4: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, वन वाइब।
7: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
4: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
8: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
9: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai, aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
0: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
9: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
0: Papri chaat se malpua rabri tak, har dish mein mile zindagi ke flavors ka asli swaad. Visit their new website or download the Flavor Lounge app for exclusive deals. The Flavor Lounge, हर बार सुपर हिट।
10: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
11: It's Lawson.
10: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
11: It's Lawson.
10: Daddy, what is the law?
12: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
13: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
4: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है, या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
0: Fan Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian, made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali, और साथ में शहर की best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
4: Visit Fan Idli Veg Restaurant at the Highway 121. और कस्टर जंक्शन।
14: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूंगी।
15: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
4: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
0: इतना सब और प्राइस?
4: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
16: मैं हीरो हूं।
17: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
18: लिया।
17: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
18: नहीं आया।
17: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक, 972-863-7772. That's 972-863-7772.
7: Visit www.sanadainc.com today.
19: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.
20: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल।
11: ऑन एशिया 104.9 FM।

0: थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो. मैं हूं किरण आपके साथ ऑन आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. इट इज टाइम नाउ टू कनेक्ट यू विद आवर वन वर्ल्ड बिजनेस कैपिटल सेगमेंट. एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस इज व्हाट वन वर्ल्ड बिजनेस कैपिटल एंड मिस्टर शाहिद पंजवानी इज ऑल अबाउट. वन वर्ल्ड बिजनेस कैपिटल कैन हेल्प बिजनेस ओनर्स एंड इंडिविजुअल्स फाइंड द बेस्ट फाइनेंसिंग ऑप्शंस जो आपको सूट करती हैं. हमारे साथ आज एवीएस मौजूद हैं मिस्टर शाहिद पंजवानी, हु इज गोइंग टू टेल अस एंड गाइड अस मोर अबाउट दिस. लेट्स वेलकम हिम ऑन द एवीएस ऑफ फन एशिया. गुड आफ्टरनून शाहिद जी, हाउ आर यू डूइंग?
1: I'm doing great. Good afternoon to you and all listeners.
0: Thank you so much for connecting, Shahid ji. Let's begin by telling our listeners something about One World Business Capital.
1: As the name says it, World of Business Capital. We help business owners. Unko agar business grow karne ke liye capital chahiye, we can help them get that. We also help individuals jinko business shuru karna hai ya business kharidna hai. Uske liye bhi hum loan kar sakte hai. Aur I can quickly give three options. Jaise mainly a lot of people ask, callers and ask if we business khareedna hai, business shuru karna hai, what options do you have and how can you help us? So first, we can help them with an SBA loan. Agar aap business khareedna cha rahe ho, kisi ka operating business hai, ya maybe many people are getting into franchises, ya franchise shuru karna cha rahe ho, we can help you get an SBA loan with as low as 10% down. Total project ka aapko sirf 10% down dena hai, 500,000 ka project hai, 50K down and the rest of the money can be loaned. Isme क्लोजिंग कॉस्ट भी आ सकती है, इसमें अगर कुछ एडिशनल वर्किंग कैपिटल चाहिए तो वो भी ऐड किया जा सकता है. सेकेंड ऑप्शन है कन्वेंशनल लोन. मेनी पीपल हु आर इधर नॉट एलिजिबल फॉर SBA और मे बी फॉर सम रीजन दे डू नॉट वांट SBA. SBA का नया रूल ये आया है, ओनली US citizens कैन क्वालिफाई फॉर SBA. सो अगर आप ग्रीन कार्ड पे हो या कोई इन्वेस्टमेंट वीजा पे हो और आपको लोन चाहिए, देन वी कैन डू अ कन्वेंशनल लोन. एंड थर्ड ऑप्शन विच वी नेवर स्पोक बिफोर एंड विच वी हैव बीन डूइंग लेटली अ लॉट ऑफ देम, many people are leaning towards that, is home equity. काफी सारे लोग जो होम अपना घर ओन करते हैं और बहुत सालों से डेलस फोर्ट वर्थ में हमने देखा है कि द वैल्यूज आर ग्रोइंग ट्रिमेंडसली एंड पीपल आर सिटिंग ऑन देयर होम इक्विटी. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट एंड गेटिंग सम हार्ड मनी लोन्स और गोइंग थ्रू सम अदर लोन प्रोसेस, व्हाट पीपल आर डूइंग इज कि आपकी जो घर में जो इक्विटी है उस पैसा को, उसको होम इक्विटी लोन करके पीपल आर डूइंग देयर ओन बिजनेस. नाउ द क्वेश्चन कम्स टू द पॉइंट, काफी लोग ये पूछ रहे हैं कि मेरा जो एग्जिस्टिंग लोन है वो बहुत लो इंटरेस्ट रेट पे और मुझे रिफाइनेंस नहीं करना है. 5-6 years ago the interest rates were very low, so we don't have to refinance your existing home loan. अगर आपके घर में let's say $500,000 की वैल्यू है, 100,000 की लोन है और 400 की इक्विटी है, we can give you loan just for the equity part. We do not have to touch your original existing loan. Unless if you want to refinance, it's a different story. But if it is a low interest rate, we don't have to touch that. We can do a home equity loan just for the equity part, and you can use that money for your business purposes, whether to buy a business, whether to buy another investment property, or maybe you're an existing business owner and you want capital to grow your business.
0: अरे परफेक्ट. हमने फोकस किया इस वक्त के जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए फंडिंग कैसे अरेंज की जाएगी, जिसके अब तमाम आपने हमें डिटेल्स बताई थी. पॉइंट्स. सो व्हाट इज द बेस्ट वे शाहिद जी, अगर किसी को मजीद सवाल हैं तो आपसे कैसे किए जाएं?
1: रीच मी डायरेक्टली ऑन माय डायरेक्ट लाइन 817-786-3338.
0: एंड डू यू वांट टू रिकमेंड एनी वेबसाइट्स एज वेल?
1: oneworldbusinesscapital.com and dsbaloanexperts.com.
0: There you go. 817-786-3338 is the number to get in touch directly with Mr. Shahid Panjwani. Ya phir the SBA loan experts.com ya oneworldbusinesscapital.com. Shahid ji, is there anything else that you'd like to cover before we let you go?
1: Each scenario is different. We talk about very limited information on air due to the time constraint. So if you have a unique scenario, if you have a different scenario, call us. One-on-one consultation, no obligation consultation, and we can find a way for you.
0: Thank you for connecting with us this afternoon. We'll talk to you next time.
1: Thanks for having me.

और इसी के साथ वक्त आ गया है आपको बताने का द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामास फॉर लास्ट वीक, यानी कि द वीक ऑफ जुलाई 6th टिल जुलाई 12th. तो जी कौन से ड्रामे रहे टॉप 10 पे, लेट्स बिगिन विद द, नीचे से नंबर शुरू करते हैं. नंबर 10 पे जो ड्रामा टीआरपी चार्ट्स पे रहा वो है जी लीडर, जो कि एक पावर पेस्ट या आप कह लीजिए पावर पैक्ड पाकिस्तानी ड्रामा है और हम टीवी पे आता है संडेज को 8 बजे. किंजा हाशमी और अली रजा इस ड्रामे में है. द ड्रामा इज बेस्ड ऑन आप यू नो इंटेंस आप कह लीजिए ग्रिपिंग टेल अबाउट एम्बिशन पॉलिटिक्स रिजिलियंस and complex relationships. Student politics ke upar bahut zyada zor diya gaya hai is drama mein. So if you haven't started watching it, this has been amongst the top 10 list. Shayad top 5 se upar bahut kam maine leader ko jaate dekha hai, lekin top 10 mein leader ne apni jagah ko hamesha hi barkarar rakha hai. Number 9 pe jo drama aaya wo tha ji Muhafiz, jo ke ek drama serial hai jo 30th June ko premiere hua aur story iski badi interesting si hai. Bodyguard hain ji ek, unka naam hai Zawar aur wo dedicated hain ya उनको लगा दिया गया है बॉडीगार्ड की पोजीशन पे फॉर अ स्टबर्न डॉटर ऑफ अ वेल्दी पावरफुल बिजनेसमैन. और फिर क्या होगा यही कहानी है इस ड्रामे की. जियो एंटरटेनमेंट डेली आता है ये, डेली सोप ऑपरा टाइप आप इसे कह लीजिए, 9 बजे शाम को. और इसमें जुनैद खान हैं जो बॉडीगार्ड बने हुए हैं और मोमिना इकबाल हैं जो कि बिजनेसमैन की वो जो बिगड़ी हुई डॉटर हैं वो बनी हुई हैं. 8वें नंबर पे जिस ड्रामे ने पोजीशन हासिल की दैट इज तपिश. ये है जी 2026 का पैशन लव एंड ऑब्सेशन ड्रामा जिसमें शाहजेर मतलब एक लड़की है और कौन लड़की है वो मुनीब बट ने शाहजेर का किरदार अदा किया और लाइबा खान ने शिफा का किरदार अदा किया है. तो एक वेल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड एयर हैं शाहजेर जी और उनकी लाइफ जब कोलाइड करती है शिफा के साथ तो फिर क्या होता है. मतलब बहुत सारे ड्रामों की अक्सर यही कहानी होती है, बट देखते हैं कि इसमें कुछ नया क्या आएगा. अभी 30 जून को ये प्रीमियर हुआ है और आता है मंडेज एंड ट्यूजडेज को शाम 8 बजे ऑन जियो entertainment. And with that, the 7th number पे जो ड्रामा आया है ये एक ड्रामा है जो कि आता है जी देखिए किस जियो एंटरटेनमेंट पे आता है एवरी संडे एट 8 PM. नाम है इसका पहली बारिश. ये जो ड्रामा है दिस एक्सप्लोर्स अ जनरेशनल लव स्टोरी. बहुत ज़रा थोड़ा सा हटके सा कहानी है इसकी. लॉन्गिंग हार्ट ब्रेक फेट टीयरिंग टू सोल्स अपार्ट एंड देन ब्रिंगिंग देम टुगेदर. व्हाट इज द स्टोरी ऑफ दिस ड्रामा पहली बारिश. एक बड़ी इंट्रीगिंग सा ड्रामा है जो आजकल आहिस्ता आहिस्ता चढ़ रहा है वो कहते हैं ना टीआरपी चार्ट्स पे. सबूर अली हैं इस ड्रामे में, सज्जल अली की बहन, और साथ ही साथ सैयद शहरोज सब्जवारी इज इन दिस ड्रामा. सो दीज वर द 7, 8, 9, and 10 की पोजिशन वाले ड्रामे. अब जब हम इस गाने से वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी द ड्रामाज दैट टुक 4th, 5th, and 6th पोजिशन ऑन द टीआरपी चार्ट्स लास्ट वीक.

और इसी के साथ वी आर कंटिन्यूइंग आवर चार्ट या लिस्ट ऑफ द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामास लास्ट वीक अकॉर्डिंग टू द टीआरपी चार्ट्स. छठे नंबर पे जिस ड्रामे ने जगह बनाई दैट इज शैदाई. शैदाई शुरू के कुछ अरसे तो टॉप 3-4 में रहा टीआरपी चार्ट्स के मुताबिक, लेकिन अभी पिछले कुछ हफ्तों से 5 और 10 के दरमियान फ्लक्चुएट करता हुआ मुझे नजर आ रहा है. दिस इज अ ड्रामा दैट इज एड ऑन जियो एंटरटेनमेंट एट 8 PM और ये आता है जी वेंसडेज और थर्सडेज को. और साथ ही साथ इट इज़ अ स्टोरी ऑफ यू नो अ यंग मैन जो कि ही इज रिच, ही इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग और मिल जाती है उन्हें एक लड़की और किस तरह से वो लड़की भी बहुत हेड स्ट्रांग है और दोनों जब टकराते हैं तो क्या होता है, दैट इज द स्टोरी. फिरोज खान और सहर हाशमी आर इन द लीड रोल्स. नंबर फाइव पे सिक्स तो हो गया. अब हम पांचवें ड्रामे की बात करते हैं जो बिल्कुल टीआरपी चार्ट्स पे रहा एंड दैट इज हमराही. फ्राइडेज एंड सैटरडेज को आता है जी जियो एंटरटेनमेंट पे 8 बजे शाम. ये ड्रामा लिखा है जंजबील आसिम ने और जंजबील बहुत पॉपुलर और मशहूर ड्रामे पहले भी दे चुकी हैं. सो यू नो जब जंजबील का ये ड्रामा लिखा जा रहा था या पता लग रहा था कि एक और ड्रामा आ रहा है उनका, तो द ड्रामा लवर्स हैड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द ड्रामा. कहीं कहीं अब थोड़ी सी लोगों की ओपिनियन कुछ डिफरेंट है. कुछ लोगों को कहानी बहुत पसंद आ रही है और कुछ लोगों को कहानी नॉट सो मच पसंद आ रही है. बट द ड्रामा हैज कंसिस्टेंटली मेड इट्स पोजिशन इन द टॉप 10 चार्ट्स. दानिश तैमूर और हिबा बुखारी हमें इस ड्रामे में नजर आ रहे हैं. हिबा बुखारी ने इस ड्रामे में डबल रोल किया है, यानी कि दो, एक अलिफ और एक इल्हाम का. और इसी के साथ चौथे नंबर पे जो ड्रामा रहा इस वीक दैट इज सोप ऑपरा काइंड ऑफ मंडे थ्रू फ्राइडे. वो आता है रात 9 बजे ARY डिजिटल पे. बहुत मशहूर हो रहा है महानूर. बहुत हफ्तों से लिस्ट पे टॉप सेवन की लिस्ट में मैं देखती हूँ कि महानूर ड्रामा मौजूद है. बहुत कम ऐसे सोप ऑपराज होते हैं जो इतना पसंद आते हैं लोगों को, लेकिन बहुत पसंद किया जा रहा है. खदीजा सलीम एज महानूर, हुमायूं अशरफ लीड रोल में मौजूद हैं एंड पीपल आर रियली लाइकिंग दिस ड्रामा. दिस वीक दिस वॉज ऑन 4th position. आफ्टर दिस सॉन्ग व्हेन वी कम बैक आई विल टेल यू द टॉप 3 ट्रेंडिंग ड्रामाज ऑन द टीआरपी चार्ट्स लास्ट वीक.

And we are now talking about the top three trending dramas on the TRP charts for last week, a week of July 5th, actually July 6th till July 12th. और जी नंबर थ्री पे जो ड्रामा रहा, यही तीन ड्रामे हैं जो बार बार अपनी जगह, कोई पोजिशन वन पे चला जाता है, कोई टू पे, कोई थ्री पे, लेकिन दैट रियली शोज दैट कंसिस्टेंसी में ये ड्रामे नंबर वन टू थ्री को डिजर्व करते हैं और आपकी वॉच लिस्ट पे भी आना डिजर्व करते हैं. नंबर थ्री, डॉक्टर बहू. जी हाँ, डॉक्टर बहू ने इस हफ्ते नंबर थर्ड पोजीशन बनाई. फ्राइडेज और सैटरडेज को आता है 8 बजे शाम. स्टोरी है ऑफ कोर्स एक डॉक्टर खानदान की और किस तरह से लेडीज को और खवातीन जो उस खानदान की हैं या डिफरेंट जो खवातीन हैं उस ड्रामे में, वो किस तरह से उनके ऊपर वो प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं और किस तरह से उसके साथ जिंदगी में डील कर रही हैं. ARY डिजिटल पे दिस ड्रामा एयर्स एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे 8 PM. कुबरा खान और शुजा असद. और दूसरे नंबर पे जो ड्रामा रहा, पिछले हफ्ते ये नंबर वन पे था, इस हफ्ते ये नंबर टू पे है. दिस इज जंजीरें, सज्जल अली और दानियाल जफर. एक्टिंग तो जी सज्जल अली की, तो मतलब एक्टिंग का कोई वो आप कह लीजिए कोई दो राय ही नहीं होती कि वो बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, लेकिन दानियाल जफर जिस तरह सरप्राइज कर रहे हैं, और एक तो उनको देख के ऐसा लगता है जैसे अली जफर सामने खड़े हो, मतलब कार्बन कॉपी से लगते हैं वो अपने भाई की. बट दानियाल जफर इज रियली मेड अ मार्क इन दिस ड्रामा. एवरीबडी इज लविंग द स्टोरी. हर रोज स्टोरी चेंज होती है, कोई ना कोई मर जाता है ड्रामे में, कोई नया मतलब रूप सा ड्रामे का निकल आता है. सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंट्रीगिंग. डू वॉच जंजीरे इफ यू हैवंट स्टार्ट वॉचिंग इट. इफ फॉर नथिंग एल्स देन द लोकेशंस, ओ माय गॉड, द लोकेशंस आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड इन दिस ड्रामा. एंड देन नंबर वन पे ड्रामा जो खड़ा है वो है जी बस तेरा साथ हो. एक बार फिर ये प्रूव कर दिया है हमारी ऑडियंस ने कि उन्हें फैमिली ड्रामा बहुत पसंद आता है. दिस इज अ कंप्लीट फैमिली ड्रामा. रिश्ते नाते, कोई किसी का दुश्मन है, कोई किसी का दोस्त है, चाचा भतीजे का दुश्मन है, क्या हो रहा है कहानी में, यही सारी कहानी है. भाई बहन आपस में किस तरह से रिश्ते बनाते और बिगड़ जाते हैं उनके रिश्ते. दिस इज बस तेरा साथ हो. मंडे एंड ट्यूसडे को आता है ARY डिजिटल पे. फरहान सईद और सना जावेद दोनों कमाल के एक्टर्स हैं और इस ड्रामे में जिस किस्म की एक्टिंग चाहिए उसी तरह की परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है उन दोनों की तरफ से. दिस वॉज द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामाज ऑन द TRP चार्ट फॉर लास्ट वीक. नेक्स्ट वीक वंस अगेन 3:30 till 4 PM आपके लिए लेकर आऊंगी यही चार्ट एक बार फिर के उस हफ्ते यानी कि अगले हफ्ते कौन से ड्रामे रहे TRP पे नंबर 1.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
7: कौन सा?
6: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
7: अरे सारे तो सेम है।
6: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
7: ओह हाँ, ये तो अलग है।
8: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
7: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
9: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
7: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
9: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
7: ये क्या होता?
9: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
10: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पंडूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ द कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
11: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
12: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
8: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजरवे, सुइट 205, फ्रिस्को।
13: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
14: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
15: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
16: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy,

0: 99.
1: Mention Funasia and get 50% off on tryout session.
2: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of Funasia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
3: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
4: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
3: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
4: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
5: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 टू 13, कॉइट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को। कॉल 972-666-1181। मेंशन फन एशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ। Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
6: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
5: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
6: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 945-527-0897 और विजिट astrologerishwar.com.
7: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
8: कितने आदमी थे?
9: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

फाइनेंशियल रेडियो सुन रहे हैं आप, आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. मैं हूं किरण आपके साथ. और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं जी, अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं या फिर कोई स्लिप या फॉल इंसिडेंट है, तो दिस सिचुएशन कैन बी एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल. यू विल हैव टू डील विद द इंश्योरेंस कंपनी, लीगैलिटीज, पेपर वर्क, द निटिग्रिटीज ऑफ द सिचुएशन. कई बार तो हमें मालूम भी नहीं होता कि हमारे साथ क्या हुआ और किस तरह से हमें इंश्योरेंस कंपनीज के साथ डील करना है. तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए एंड लेट अटर्नी ओमार ख्वाजा एंड हिज टीम टेक केयर ऑफ द रेस्ट. देयर टीम, अटर्नी ओमार ख्वाजा एंड देयर टीम विल हेल्प यू फाइट योर केस, गेट यू द बेस्ट कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व. और जो बेस्ट पार्ट है वो ये कि यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग अनटिल एंड अनलेस यू विन. तो विन विन सिचुएशन है आपके लिए. दिस इज, वो कहते हैं ना, मुश्किल के वक्त में एक राहत की खबर है आपके लिए. सो यू और समवन यू नो इज गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दैट, टेक ओमार Attorney Omar Khwaja's number and give him a call. 469-300-5046 उनका number, या फिर आप उनकी website visit कर सकते हैं attorneyomar.com. और इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं अगले गाने की तरफ. ट्रॉफी ट्रैक्स आप सुन रहे हैं. दिस इज अभी कुछ अवार्ड विनिंग फिल्मों के अवार्ड विनिंग गाने आपके लिए बैक टू बैक प्ले करूंगी.

करीना कपूर और सलमान खान पे पिक्चराइज्ड बॉडीगार्ड फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इफ़ यू आर ऑन H1B या फिर F1 L1 वीज़ा, कोई भी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है आपके पास, एंड यू आर प्लानिंग योर पाथ टू US परमानेंट रेजिडेंसी, तो द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता इज राइट चॉइस फॉर यू। दे विल बी एबल टू गाइड यू एंड हेल्प यू स्टेप बाय स्टेप। अटर्नी सीमा मेहता और उनकी जो एक्सपीरियंस टीम है स्पेशलाइज करती है एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ, इंक्लूडिंग EB-5 इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम्स, फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीजा, परम लेबर सर्टिफिकेशन एज वेल एज US सिटीजनशिप। तो कोई भी आपका सवाल है इन फील्ड्स में से लेके, मतलब कोई भी नॉन इमिग्रेशन का कोई क्वेश्चन है आपके पास, तो सीमा मेहता, अटर्नी सीमा मेहता और उनके लॉ ऑफिसर्स आर ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू। ड्रॉप देम एन ईमेल, दैट इज द बेस्ट वे टू गेट इन टच विद देम, एंड दे विल गेट बैक टू योर ईमेल एज सून एज दे कैन। दैट ईमेल आईडी इज info@seemamehtalawfirm.com, info@seema mehta law firm.com।

और अगर आप कोई इवेंट प्लान कर रहे हैं, जैसे कि वेडिंग कोई प्लानिंग चल रही है, ग्रेजुएशन है आपकी, हाउस वार्मिंग है, या कोई भी और स्पेशल ओकेजन है जिसे आप प्लान करना चाहते हैं और बहुत अपनी कम्युनिटी को, अपने फ्रेंड्स को बुलाना चाहते हैं, तो बिफोर दिस के यू स्टार्ट स्ट्रेसिंग कि वेन्यू क्या होगा, डिकोर क्या होगा, केटरिंग कहाँ से कराएंगे, और जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं किसी भी इवेंट की, आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, अपना सारा स्ट्रेस दे दीजिए वेनेसा इवेंट्स को. दे मेक प्लानिंग सिंपल बाय ब्रिंगिंग एवरीथिंग टुगेदर इन वन प्लेस, फ्रॉम वेन्यू सिलेक्शन एंड ब्यूटिफुल डिकोर बाय सिग्नेचर इवेंट्स टू फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी एंड डिलिशियस केटरिंग एक्सक्लूसिवली बाय द रेनाउंड बसेरा ग्रैंड, ताकि आप अपनी मेमोरीज क्रिएट कीजिए, एंजॉय कीजिए अपने ही दावत को. घर में तो हम दावत करते हैं तो वो होता है ना, सारा खाना हम खुद पकाते हैं, जब हम बाहर करते हैं तो भी आप इस स्ट्रेस में मत पड़िए. लेट वेनेसा इवेंट्स हैंडल ऑल दीज थिंग्स फॉर यू सो दैट यू कैन एंजॉय योर इवेंट जस्ट एज मच एज अदर्स आर एंजॉइंग इट फॉर यू. कॉल हरी बसेरा ऑफ वेनेसा इवेंट्स टुडे फॉर एनी क्वेश्चन एंड कंसर्न्स. 469-442-8770 is that number. This is Hari Becerra of Vanessa Events. This is your celebration partner. अच्छा जी, आज जो है वो आपके लिए एक नया सेगमेंट सा छोटा सा ऐड किया है, लोकल न्यूज़ कुछ एक दो आपके लिए जो मुझे नज़र आती हैं, कुछ अच्छी पॉजिटिव सी होती हैं वो आपको ज़रूर बताएंगे. और जो एक मेजर न्यूज़ मुझे मिकनी के हवाले से नज़र आई वो ये कि मिकनी हैज़ लैंडेड वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इन द सिटीज़ हिस्ट्री. जी हाँ, लाइट ऑन टेक्नोलॉजी हैज़ अनाउंस्ड प्लान्स टू इन्वेस्ट $919 million टू एस्टैब्लिश अ न्यू एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कैंपस इन मिकनी, expanding its North American operations to meet growing demand for artificial intelligence infrastructure and energy related technologies. Ye bhi batati chalun aapko ki what is Lite-On. Lite-On is a leading Taiwanese electronics and semiconductor manufacturer. 1975 mein Lite-On found kiya tha ji. They were founded in 1975 as the first electronics company listed on the Taiwanese stock exchange. They specialize in power management systems, usi ke saath cloud computing, AI data center infrastructure and much more. To around matlab 919 to dekh lijiye $1,000 million hamare town mein aane wale hain, and it is expected to produce about 600 high quality jobs. Well, that is a news to share.

0: विद दैट वी आर हेडिंग ऑन टू अ शॉर्ट ब्रेक. कुली नंबर वन का जो ये रीमिक्स या रीमेक वर्जन आया था जिसमें वरुण धवन और सारा खान थे, वो गाना आप सुन रहे थे. मगर मुझे ऐसा लगता है कि ओरिजिनल वॉज ओरिजिनल. गाना भी ओरिजिनल ओरिजिनल और मूवी भी ओरिजिनल ओरिजिनल. आपकी क्या राय है आप कॉल करके बता सकते हैं. हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ. आई विल सी यू राइट आफ्टर द ब्रेक. स्टे ट्यून्ड.
1: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सस के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में. सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ. वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं. और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है. अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं. तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स. HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर.
2: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration of Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
3: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
4: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
3: नहीं.
4: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
3: नहीं.
4: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
3: वो भी नहीं.
4: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
5: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
6: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, khoobsurat libas khushiyon ko dugna kar deta hai.
5: Har khushi mein aapke saath Manyavar Mohe, traditional celebration wear for men, women and children, crafted with exquisite blended fabrics. Manyavar Mohe, located on Regent Boulevard of 635 East in Irving.
7: Mera retirement plan ready hai.
8: Plan ya hope?
7: Matlab?
8: Matlab hai, plan matlab strategy. होप मतलब देखते हैं क्या होता है.
7: ओके, तो मेरा वाला होप है.
8: तभी तो लोग वेल्थ टैक्टिक्स से बात करते हैं.
7: क्यों?
8: बिकॉज रिटायरमेंट को होप पे नहीं, स्ट्रेटजी पे प्लान करना पड़ता है.
5: वेल्थ टैक्टिक, रिटायरमेंट प्लानिंग विद क्लैरिटी एंड स्ट्रेटजी. फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 4696932077 और विजिट देम एट wealthtactic.com.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
13: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
5: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499. और ईमेल एट info@seemamehtalawfirm.com.
14: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
15: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
14: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
15: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
14: सच में? सब संभालेंगे?
15: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
5: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

कुछ गाने आपको अंदर तक हिला देते हैं. दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ देम. वैसे ओरिजिनली ये गाना गाया था गजेंद्र वर्मा ने, जो कि एक सॉन्ग राइटर हैं, सिंगर हैं, कंपोजर हैं, और तेरा घाटा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ उनका. और फिर ये जो आप सुन रहे थे, ये नेहा की आवाज़ में था, नेहा कक्कड़ की. अच्छा जी, आगे बढ़ रहे हैं. दिस इज़ योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. आई स्टिल हैव अनदर 22 और 23 मिनट्स विद यू. और ये है मेरा आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन 104.9 FM फाइनेंशियल रेडियो. सुनते रहिए, बने रहिए हमारे साथ. ये वक्त होता है वेंसडेज को जब मैं आपको कनेक्ट करती हूँ हमारे सेगमेंट ड्रीम होम मॉर्गेज के साथ. हमारे साथ मौजूद होते हैं हुसैन पंजवानी जी ऑफ ड्रीम होम मॉर्गेज, अ डिवीजन ऑफ ब्राजर्स नेशनल बैंक, लोकेटेड इन टेक्सास, यहाँ हमारे डालस में. और ड्रीम होम इज कमिटेड टू प्रोवाइडिंग क्लाइंट्स द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट्स इन योर रियल एस्टेट अवेलेबल इन योर एरिया. चाहे आप फर्स्ट टाइम होम बायर हों या आप कंसोलिडेट करना चाहते हों अपनी डेट, और यू वॉन्ट टू रीफाइनेंस योर होम, या फिर आप अपने ख्वाबों के घर की तलाश में हों, उसके साथ साथ कमर्शियल प्रॉपर्टी आपने खरीदनी है, आपने अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करना है, आपका क्रेडिट स्कोर आपको बॉदर कर रहा है, तो ड्रीम होम मॉर्गेज आपको उसमें भी हेल्प करते हैं. तो फिलहाल मैं आपको ये बताऊं कि हमारे साथ होते हैं मौजूद हुसैन पंजवानी जी. आज किसी मसरूफियत की वजह से हमारे साथ नहीं कनेक्ट कर पाए हैं, बट दैट डजंट मीन कि आपको बताया ना जाए कि ड्रीम होम मॉर्गेज आपको कैसे हेल्प कर सकता है. सर्विंग द कम्युनिटी फॉर द पास्ट 28-29 ईयर्स, ड्रीम होम मॉर्गेज के पास वो तमाम एक्सपीरियंस है जो आप के लिए जरूरी है. एज अ फर्स्ट टाइम होम बायर हम लोग बहुत केयरफुल होते हैं, स्ट्रेस में भी होते हैं कि कहीं हम गलत फैसला ना ले लें, कोई हमारे से गलत डिसीजन ना हो जाए. तो ड्रीम होम मॉर्गेज और उनकी टीम जो है वो बिल्कुल पर्सनलाइज कर देती है चीजें आपके लिए, और आप को किसी भी मोड़ पे कोई गलत फैसला नहीं लेने देती. इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि प्री क्वालिफिकेशन की इम्पॉर्टेंस जो वो हमेशा शाहिद पंजवानी, हुसैन पंजवानी जी हमें बताते हैं कि प्री क्वालिफाई करवाइए अपने आप को, देखिए कि आप कितना लोन अफोर्ड कर सकते हैं, और फिर उनसे कांटेक्ट कीजिए एंड दे विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ यू. रीफाइनेंस कराना चाहते हैं आप, info@dreamhomemortgage.com पे आप अपनी मॉर्गेज स्टेटमेंट भेज सकते हैं और अपनी कंसर्न्स लिख सकते हैं, एंड ड्रीम होम मॉर्गेज एंड देयर टीम विल गेट बैक टू यू. वंस अगेन, दैट इन्फो ईमेल आईडी इज info@dreamhomemortgage.com. स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं रीफाइनेंस आप अपने घर को कैसे करा सकते हैं. आजकल एक ग्रांट की भी हुसैन जी बात कर रहे थे, $25,000 की तक की ग्रांट आपको मिल सकती है. उसकी भी क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, आप उनको ईमेल कीजिए या फिर आप ड्रीम होम मॉर्गेज को कॉल कीजिए. 972-245-5626 ड्रीम होम मॉर्गेज का नंबर नोट कर लीजिए दोबारा, 972-245-5626, या फिर dreamhomemortgage.com पे लॉग ऑन कीजिए, दैट इज द वेबसाइट, और ड्रॉप देम एन ईमेल info@dreamhomemortgage.com, एंड हुसैन जी एंड देयर टीम विल डेफिनेटली हेल्प यू.

और आप सबने आज का मैच तो देख ही लिया होगा, नहीं देखा होगा तो पढ़ लिया होगा कि आज के सेमीफाइनल में कौन जीता। अर्जेंटीना और इंग्लैंड का हुआ बड़ा ही ज़बरदस्त मुकाबला और 2-1 के साथ अर्जेंटीना आज का सेमीफाइनल जीत चुके हैं। जी हाँ, अब होने वाला है फाइनल 19 जुलाई को दोपहर 2 बजे हमारे टाइम के मुताबिक, यानी कि डालस टाइम सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक ये मुकाबला होगा अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान। तो पिक योर टीम्स एंड स्टार्ट चीयरिंग फॉर देम। दिस विल बी हैपनिंग, द वर्ल्ड कप फाइनल विल बी हैपनिंग ऑन संडे, दैट इज जुलाई 19, 2 PM अकॉर्डिंग टू डालस टाइम। तो ये तो आपके लिए हुई अपडेट, और अब लेके आ रही हूँ आपके लिए वेदर अपडेट। आज है जी जुलाई 15th, वेंसडे, 4:44 PM इन द स्टूडियो, और सिटी ऑफ मिकनी में इस वक्त है 83 डिग्रीज। हाउएवर इट फील्स लाइक 86 राइट नाउ। दिन आजकल 2 दिन से गर्मी की शिद्दत में थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। 30% चांस ऑफ शावर्स हैं जी, पार्टली सनी रहा दिन, 20-30% चांस ऑफ शावर्स और थंडरस्टॉर्म्स रहे, हाईज इन द अपर 80s, जबकि शाम रहेगी मोस्टली क्लाउडी एज वेल एंड लोज इन द लोअर 70s। पोलन काउंट आज का 3.8 विच इज लो मीडियम, जबकि यूवी इंडेक्स इज ऑफकोर्स हाई 10, सो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सनराइज आज का हुआ 6:28 AM पे, जबकि आज का सनसेट होगा 8:36 PM। दैट वॉज द वेदर फोरकास्ट दैट वॉज ब्रॉट टू यू बाई मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स।

एंड विद दैट इट इज टाइम टू गिव यू द करेंसी अपडेट जी के यूएस डॉलर कहाँ स्टैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड. वेंसडे जुलाई द 15th 4:48 PM इन द स्टूडियो एंड अकॉर्डिंग टू xtrades.com यूरो आज ट्रेड कर रहा है 0.87 पे. ब्रिटिश पाउंड 0.73 पे ट्रेड कर रहा है जबकि इंडियन रुपी 96.43 पे स्टैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू वन यूएस डॉलर. कनेडियन डॉलर 1.40 जबकि पाकिस्तानी रुपी 276.83 पाकिस्तानी रुपीज आर ट्रेडिंग फॉर वन यूएस डॉलर. नेपाली रुपी 154.37 पे स्टैंड कर रहा है जबकि बांग्लादेशी टका 122.96 बांग्लादेशी टकाज आर ट्रेडिंग फॉर वन यूएस डॉलर. अब जब हम इस गाने के बाद वापस आएंगे तो वी विल टॉक अबाउट गोल्ड प्राइस अपडेट और साथ ही साथ ट्रैफिक. आज ट्रैफिक के हवाले से मुझे बहुत कुछ नजर आ रहा है. इफ यू आर ड्राइविंग बैक होम वेयर एवर यू आर गोइंग प्लीज बी वेरी सेफ, ड्राइव केयरफुली, बी विजिलेंट.

और इसी के साथ गोल्ड प्राइस अपडेट अकॉर्डिंग टू गोल्ड प्राइस डॉट ऑर्ग जी इस वक्त एक आउंस सोने की कीमत है $4,060.44 जबकि एक ग्राम सोने की कीमत राइट नाउ इज $130.55 कल की निस्बत एक ग्राम सोने की कीमत में 7 सेंट्स की कमी हुई जबकि एक आउंस सोने की कीमत में $2.44 की कमी देखने को मिली और इसी के साथ मैं आपको देने लगी हूँ हमारी ट्रैफिक अपडेट एक्चुअली एक दो छोटा सा एक आपके लिए गाना लगाती हूँ और उसके बाद वापस आकर दूंगी ट्रैफिक अपडेट बने रहिए मेरे साथ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज हैपनिंग ऑन द रोड्स ऑफ डैलस लॉट्स ऑफ इंसिडेंट्स आई कैन सी राइट नाउ

एंड विद दैट ट्रैफिक अपडेट के साथ मैं ले रही हूँ आपसे विदा. सबसे पहले देयर इज अ वेरी क्रिटिकल इंसिडेंट दैट आई कैन सी एट IH-20 एट स्पर 408 नॉर्थ बाउंड रैंप वेस्ट बाउंड. ये है जी अबाउट 3:51 घंटा पहले ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है. ऑल थ्री लेन्स आर ब्लॉक्ड. द सिवेरिटी इज नॉट, जैसे हमें हमेशा आपको बताती हूँ दैट द सिवेरिटी इज रिपोर्टेड एक्सट्रीमली हाई, बट यहाँ पे सिवेरिटी इज क्रिटिकल. सो आई एम श्योर कि कुछ बहुत मेजर हुआ है. अगर आप यहां पहुंचने वाले हैं तो ध्यान रखिए, एवरीथिंग इज क्लोज, सो देयर इज लॉट्स ऑफ बैकअप राइट हियर एट दिस स्पॉट. देयर इज अ हाई वाटर अलर्ट दैट हैज बीन शोन एट IH-20 टुवर्ड्स कैंप विजडम रोड वेस्ट बाउंड. तो अगर आप यहां पहुंचने वाले हैं तो प्लीज अपना ये पानी का ध्यान रखिएगा. उसके अलावा देयर इज अनदर कोलिजन दैट इज रिपोर्टेड एट US-80 टुवर्ड्स 635 ईस्ट बाउंड, जिसकी वजह से 2 out of 5 लेन्स आर ब्लॉक्ड इंक्लूडिंग बोथ एग्जिट लेन. So the severity of this incident is reported high. There is another collision that we can see at IH-30 towards Irby Campbell Boulevard eastbound. Once again, 2 out of 5 lanes are blocked. The severity is reported extremely high. About 15 minutes pehle ye incident report hua hai, ye accident. So you will see a lot of backup piling up at this spot from this time moment onwards. There is another collision that I can see reported about 10 minutes ago. This is at 35 east towards IH-30 eastbound ramp northbound, jiski wajah se 1 out of 4 lanes are blocked and the severity of this incident is reported high as well. Bahut sara backup yahan bhi dekhne ko mil raha hai aur chunki abhi 10 minute pehle ye incident verify hua hai to kafi zyada traffic according to the maps jo main dekh rahi hu bahut zyada lambi red lines lagi hui hain. To ye tamam incidents aapke liye hain ji. If you are going through any one of them or you're kind of driving towards any one of them, you might want to take detours or be ready for a few delays. Be very careful, be very vigilant. Thank you so much for connecting with me this afternoon. Main milungi aapse kal, which is Thursday. That is first Thursday of the month. Aapke liye lekar aati hoon Food Junction. But the rest of the Thursdays, it is aapki farmaish pe wo 90s ka Bollywood. So we will play some beautiful Bollywood music, 90s ka Bollywood music tomorrow. Aur after that, apna khyaal rakhiye. Marvin aa rahe hain aapko entertain karne. I will see you tomorrow. Have a lovely, lovely rest of your evening.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
8: Hello Texas Parivar. Kya aapko pata hai, there is a first time home buyer program under Fannie and Freddie for confirming loans that helps you to get better rates by almost half a point to 1%. So call Kijiye Kamna Ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 96641.
9: Are you tired of the same arguments, reactions, and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents, and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques, and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
10: जिंदगी एक रंगमंच है
11: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल. असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो. पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल. हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ.
12: कॉल 972-897-1530 firstunitedtexastitle.com.
13: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
14: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं.
13: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
14: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
13: और एंटरटेनमेंट,
14: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में.
13: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
14: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे. मिरेकल्स हैपन इन मिराज.
15: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
16: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
15: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
16: वेट, व्हाट?
17: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
18: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद एनआरआई वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
17: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन.
19: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
20: इट्स लॉसन.
19: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
20: इट्स लॉसन.
19: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
21: इट्स

will stand the pressure. Everything was meant to be for Argentina today. What a lovely game that we all saw. FIFA World Cup semi-final, England versus Argentina. And you know what? कल से मैं यही सोच रहा था कि यार England is the team that I think is going to win, क्योंकि underdogs हैं, you know, compared to Argentina. But England is very strong as a soccer country. But आज जब game शुरू हुई, 0-0 was the score, and we all were anticipating कि कब क्या होगा. And then England made their first goal. The moment England made their first goal, I think there was the goal was around 74, 75th minute or 78th minute. मैंने देखा 12 मिनट गेम में बचे हैं. मुझे पता नहीं क्यों लगा कि आज अर्जेंटीना जीतेगा. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे डिड. व्हाट अ कमबैक दे डिड. हमेशा की तरह लास्ट के कुछ मोमेंट्स में द वे दे प्लेड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट वे टू गो अर्जेंटीना. व्हाट अ लवली गेम वी ऑल सॉ. आप लोगों ने मजे किए होंगे खूब इस गेम को देखते हुए, इफ यू वर लकी इनफ टू वॉच द गेम लाइव. अदरवाइज मेरी तरह स्कोर्स फॉलो करना पड़ा बिकॉज़ आई वाज ड्राइविंग एंड आई कुडंट वॉच द गेम. बट नॉनदलेस आई एम हैप्पी फॉर अर्जेंटीना. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फाइनल एंड आई एम श्योर यू गाइज आर टू. किस किस ने आज पैसा खोया और जीता मुझे जरूर बताइएगा. आजकल कलछी बहुत पॉपुलर है भाई. टू बी ऑनेस्ट $40 में जीत गया. Congratulations once again to this wonderful team of Argentina with their wonderful play. And now it's time to anticipate the finale.

This part of the show is brought to you by none other than Omar Khwaja, who is our Drive Time sponsor, a name that you need to remember just in case you are ever involved in a car wreck or a slip and fall. वैसे तो उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आपको कभी भी ये मुसीबत ना आए. And if you are ever in trouble, keep this name in mind. The name is Attorney Omar. The website is attorneyomar.com and he is somebody who you need on your side because he knows how to fight with the insurance companies, getting you the most compensation. And number तो आजकल absolute हो रहे हैं भैया. आपको सिर्फ याद रखना एक नाम, एंड इफ यू पुट दैट नेम इन गूगल यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन. रिमेंबर द नेम, द नेम इज अटॉर्नी ओमर, एंड ऑलवेज गेट विद हिम इफ यू आर एवर इन ट्रबल विद एन एक्सीडेंट. फॉर नाउ आई एम आस्किंग यू पीपल ऑफ DFW, कैसा लगा आपको आज का गेम? डिड यू एंटिसिपेट दिस इज गोना कम टुवर्ड्स अर्जेंटीना? पहले क्या लग रहा था आपको? एंड व्हाट वर योर हाइलाइट्स ऑफ टुडेज गेम? व्हाट वाज द पार्ट दैट यू लाइक्ड द मोस्ट? गिव मी अ कॉल 972-235-5555. Of course, once again, a big shout out to Argentina for what they did. Here we go with one more track. And right after that, we're going to take a short commercial break. But I'm taking your calls, getting to know how was the game for you today. Kahan dekhi? Raste mein, gaadi mein, phone pe, office mein, chupke. And what do you think about today's game? The highlights, let's go.

0: इन्हें आई ना जग से लाज एंड वाई बी लाज मैन. आज तो सेलिब्रेशन का डे है स्पेशली फॉर अर्जेंटीना एंड आई फील अ लिटिल सैड फॉर इंग्लैंड बिकॉज आई थिंक दे केम क्वाइट अ लॉन्ग वे एंड हैविंग टू गेट दैट गोल इन एंड उसके बाद I would think sports actually won. Nobody won, nobody lost today. I think sports won, and that's the most important thing. You know, this is something which happens always in sports, but kudos once again to Argentina.
1: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: हीरे मोती मैं ना चाहूं.
4: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग.
5: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था. ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं. आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक. फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया. उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले. हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी. उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ.
6: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR. द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा. आपका हक, उनकी जिम्मेदारी.
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
8: बैठ जाऊँ? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
9: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
8: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
10: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
11: इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
12: ये तारा वो तारा हर तारा.
13: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
14: आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
15: अरे यार, घर मिल गया.
16: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
13: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. अजय इज एन एक्सपीरियंस रियल्टर. वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी.
16: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
13: बिल्कुल. विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
17: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
18: हाँ.
17: घर रिलोकेट करनी है?
18: हाँ.
17: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
18: हाँ भाई हाँ.
17: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
19: डॉक्यूमेंट शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
20: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.

0: जिंदगी में आपको बहुत सारे एडवाइस मिले होंगे, पर मेरा एडवाइस सुन लो और याद रखना, जिंदगी में ना दो बातें हमेशा याद रखनी है। पहला, कभी किसी को पूरी बात मत बताना। पांच बज के पच्चीस मिनट हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। दिस इज योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो। और मेरा एक दोस्त है ऑफिस में, उसका नाम है आकाश, आकाश है उसका नाम। पर मुझे आकाश जब भी नाम सुनता हूँ ना, मुझे दिल चाहता है वाले आकाश वाला नाम याद आता है, तो मैं उसको ऐसे ही बुलाता हूँ ऑफिस में। और मैंने उससे पूछा, आकाश तुझे डांस आता है? कहता नहीं। मैंने कहा कोई परेशानी? कहता नहीं। मैं कहा पर फिर भी? कहता सीखना चाहता हूँ। मैं कहा मत सीख, शादी कर ले, अपने आप आ जाएगा बेटा। What a wonderful game we had today about this football World Cup semi-final. और क्या जबरदस्त गेम था भैया, देख के मजा आ गया। मतलब देख के नहीं, स्कोर देखता रहा मैं, बाकी तो मेरे देखने नसीब नहीं हुआ। आप लोगों ने शायद गेम लाइव देखी होगी। आई एम अ लिटिल जेलस बट आई एम नॉट दैट जेलस बिकॉज द गेम वॉज सो फैंटास्टिक। वन स्कोर इंग्लैंड ने जब किया पहला गोल, आई थॉट दैट इंग्लैंड इज गोना विन दिस। बट फिर मैंने टाइम देखा, फिर मुझे लगा कि अर्जेंटीना हर बार यही तो करता है ब्रो, लास्ट मिनट में गोल का लालच दिखे, फिर आता है इनको गुस्सा, पता नहीं क्या हो जाता है, एनर्जाइजर जैसी बैटरी चार्ज होती है, और फिर ठक ठक ठक दो गोल मारे जी एंड टुक द गेम अवे फ्रॉम इंग्लैंड इन द लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द गेम। एंड दैट इज द पावर ऑफ फुटबॉल। व्हाट अ वंडरफुल गेम। आई हैव समबडी विद मी हियर हु इज गोना टॉक अबाउट व्हाट ही फेल्ट अबाउट द गेम। गुड इवनिंग प्रवीण, हाउ आर यू?
1: Hey, doing good, good. Hey, listen, yeah, I was just going to make a comment about the game. Yeah, the sports did win today overall, and the World Cup, you know, the ratings have been so phenomenal. And so, yeah, overall, you know, good tournament. Now, Argentina, like I was saying earlier, there's a trend against Egypt. They were down 2-0. In the second half, they scored 3 goals. And same thing with England. You know, I saw when this, it was 1-1, then the England players, their body language, they just quit. If you look at their body language, the England players, either they're fatigued or they're just tired, but they just quit.
0: Absolutely, Praveen, but I am happy for Argentina, like you're happy for Argentina, and we're all happy for the game of soccer, this game of football that we call back home, and soccer up here and other parts of the world. I think a fantastic game is what we saw. You know, when games like this happen, you know that it was worth the wait. Taking you to the next track, I'll be right back once again. Kudos, Argentina!

5:48 द स्टूडियो क्लॉक 5:48 टुडे इज वेंसडे मिड वीक में पहुंच चुके हैं जनाब. यस यू आर एक्साइटेड फॉर द वीकेंड, सो एम आई. एंड ट्यूसडे से ही मेरा तो शुरू हो जाता है फीलिंग कि बस आ गया. मतलब एंटिसिपेशन जो है ना इस वीकेंड की बड़ी जरूरी भी होती है. लाइफ में हर चीज की उम्मीद रखना जरूरी है भैया, क्योंकि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है. आज ही के दिन, विच वॉज द 15th of July आज के दिन इन द ईयर 1988, डाई हार्ड मूवी याद है आपको, ब्रूस विलिस एंड एलन रिकमन, दैट मूवी केम आउट ऑन टुडेज डेट इन द ईयर 1988. दैट इज द पार्ट ऑफ हिस्ट्री देयर फॉर यू. एंड ये जो हिस्ट्री है हमारे को शेयर करने में अच्छा लगता है यार, क्योंकि कई चीज़ें हमारे को बहुत पसंद है. डाई हार्ड इज वन ऑफ दोज मूवी सीरीज दैट वी ऑल इन्जॉयड. ऑल्सो टुडे ऑन इन द ईयर 1972 हॉन्की शैटो बिकेम एल्टन जॉन्स फर्स्ट नंबर वन एल्बम इन द US, इंक्लूडिंग हिट्स लाइक द रॉकेट मैन. दैट इज देयर इन हिस्ट्री फॉर यू. फिलहाल एक गिव अवे की मैंने बात की थी, विच इज कमिंग अप फ्रॉम मिराज हुका लाउंज. दिस इज लोकेटेड इन मकिनी ऑन मकिनी रैंच पार्कवे. And you can get it, get a great deal out of them. Deal kya mil rahi hai ji? $20 aapko off milenge on your $50 purchase. Chahe aap hookah khareedein, chahe aap khana khareedein, chahe aap drinks khareedein. Yaad rakhiyega ki Monday to Thursday, subha 11 baje se leke sham ko 6 baje tak happy hour inka on rehta hai, where you get hookah for only $24.99 and shots at only $4. Uske saath saath multiple nights to entertain you, including ladies' night and special events on the weekends. All you have to do is check out Mirage Hookah Lounge. Now, ye jo giveaway hai, it's a great deal because any amount of $50 that you spend there, $20 aapko uspe off milega and no restrictions on what you buy. अब क्या करना है कि आपको मेरे सवाल का जवाब देना है. एंड द वंस दैट आर पार्टिसिपेटिंग, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर एबल टू गो टू मकिनी एंड एंजॉय दिस वन. एंड यू हैव नॉट वन दिस इन द लास्ट 30 डेज. आई एम गोना आस्क यू दिस क्वेश्चन कि ये जो अगला गाना, नहीं चलो इसको नहीं करते, हम चलते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट करें ना आज यार. तो चलो डिफिकल्टी में हम ऐसा करते हैं कि मैं लगाने लगा हूँ जी एक गाना. एंड यू हैव टू टेल मी कि इस गाने में जो जो सेलिब्रिटीज़ दिखाई देते हैं वो कौन कौन हैं. हु आर द सेलिब्रिटीज़ दैट आर सीन इन दिस ट्रैक दैट आई एम प्लेइंग. 972-235-5555 caller number 3 दैट गिव्स मी द राइट आंसर गेट्स themselves $20 ऑफ देयर $50 बिल एट मिराज हुका लाउंज मकिनी रैंच पार्कवे. Right here in the heart of McKinney, who all are the artists that you see in this video of the track I'm playing?

0: नैना दा कहना दिलजीत दोसांझ साहब की आवाज में है जी ये गाना. लेट्स सी हु वी हैव राइट हियर ऑन फनेजिया विद अस. गुड इवनिंग फनेजिया रेडियो, हु इज दिस?
1: Yeah, hi Marvin, this is Ananya.
0: Hi Ananya. Ananya, you did a good acting in the last movie, although Yashraj se expectation zyada thi meri, but that's okay Ananya. Do you know who all are in this track, Ananya?
1: Yeah, I'll try. So Tabu, then Kareena Kapoor, Kriti Sanon.
0: And कोई बात नहीं अनन्या, आई हैव गॉट योर आंसर्स इन. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग फन एशिया. लेट्स सी हु डू वी हैव नेक्स्ट. गुड इवनिंग फन एशिया रेडियो, हु इज दिस?
2: हेलो मार्विन जी, नमस्कार.
0: आपने क्या मेरा फोन एसटीडी बूथ से किया क्या? वहां पे रखा हुआ था होल्ड पे, फिर जैसे आपको मेरी आवाज सुनी आपने फोन उठाया. लग गया लग गया. कौन बोल रहा है भाई?
2: नहीं,
0: आपका नाम क्या बड़े भाई? वो तो चलो छोड़ो.
2: नाम राज.
0: यमराज?
2: राज.
0: राज, मैं कहा यमराज, मैं कहा अभी टाइम है भाई. अच्छा राज साहब, कौन कौन है इस गाने में?
2: करीना कपूर, तब्बू, कृति सनन.
0: करीना कपूर, तब्बू, कृति सनन, यही तीन है.
2: एंड दिलजीत और बादशाह भी हैं.
0: दिलजीत और बादशाह भी हैं, ये कहते हैं राज साहब. दूसरे नंबर पे आप थे. कीप लिसनिंग टू फनेजिया टू सी इफ यू आर राइट और नॉट. गुड इवनिंग फनेजिया, कौन बोल रहा है?
3: है माजिम भाई, अमित बोल रहा हूँ.
0: अमित भाई कैसे हो जी? सब ठीक है?
3: सब बढ़िया, बताइए.
0: यार ये ना बड़ा हमारा इंडिया का फंडा है कि हम रिक्शे वाले को भी भैया वहाँ तक जाओगे, गोलगप्पे वाले को भी भैया थोड़ी मिर्ची तेज कर दो, आलू टिक्की वाले को भी भैया नीचे ब्लैक.
3: हमने भैया नहीं बोला, इसलिए हमने भाई बोला है.
0: अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, भाई चलेगा. अमित भाई ये बताइए, चलो अमित भैया अब ये बताओ आपकी कौन कौन है इस गाने में?
3: तब्बू, करीना कपूर एंड कृति सैनन.
0: तब्बू, करीना
3: एंड दिलजीत दोसांझ.
0: बस खत्म दुकान. चलो ठीक है ठीक है ठीक है. अमित भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. बने रहो मेरे साथ, देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त है कि नहीं. और कौन है मेरे साथ? गुड इवनिंग फनेजिया, व्हाट्स योर नेम?
4: हाय, मैं सईदा बोल रही हूँ.
0: सईदा जी आप कैसी हैं?
4: जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र.
0: ये मिराज का हुक्का लाउंज का आपने गिव अवे नहीं जीता ना अभी तक?
4: जी
0: जीता तो नहीं ना आप मिराज हुक्का लाउंज?
4: नहीं, बिल्कुल नहीं. कब से, कितने दिन, महीने हो गए, कोई नहीं जीता.
0: चलो कोई बात नहीं, महीने आज शायद आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाए. सईदा जी बताइए मुझे कौन कौन कौन कौन है इस गाने?
4: दिलजीत दोसांझ, करीना कपूर, तब्बू, प्रीति सनन.
0: अच्छा जी, ये हो गया सईदा जी का जवाब लॉक इन. अब देखता हूँ कौन है. एक आर्टिस्ट मिस कर रहे हैं. गुड इवनिंग फनेजिया, कौन बोल रहा है?
5: जी मैं रिचा बोल रही हूँ.
0: रिचा जी कैसी हैं आप?
5: मैं बढ़िया, आप कैसे हैं?
0: बस मैं अच्छा हूँ. रिच होने की वेट कर रहा हूँ. रिचा का कॉल आ गया, जल्दी हो जाएगा ये काम भी. रिचा जी
5: उसका तो मैं वेट कर रही हूँ रिच होने का, बट अभी तक हो नहीं पाई.
0: कोई बात नहीं, रोज सुबह उठ के रिचा की जगह रिच बताना शुरू कर दो. आपका नाम, आपका नाम इतिहास में रिच के नाम से जाना जाएगा. अच्छा अब बताओ कि कौन कौन है इस गाने में?
5: तब्बू, करीना, कीर्ति सनन, दिलजीत दोसांझ एंड बादशाह.
0: ये बात बनी ना, ये बादशाह को पता नहीं क्यों भूले जा रहे थे यार. लड़का ने फीचर किया है गाने में, चाहे थोड़ा सा नजर आया पर नजर आया. कॉन्ग्रेचुलेशन आपका नाम रिचा. देखो यहीं से रिचनेस शुरू होगी. कहते हैं जिंदगी में आपको किसी बाबा जी ने बताया था कि अच्छे लोगों से बात कर लिया करो आपका पाथ ठीक होने वाला
5: है? आप पहले हो.
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, वो मेरी बात कर रहे थे. अब आपने मेरे से बात कर ली है ना, अब देखो आप जिंदगी में क्या क्या चेंज, क्या क्या बदलाव. वाह वाह वाह रिचा, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू वन योरसेल्फ दिस गिव अवे फ्रॉम मिराज हुक्का लाउंज. आई एम गोना पुट यू ऑन होल्ड एंड गेट टू द नेक्स्ट ट्रैक राइट हियर ऑन योर फेवरेट स्टेशन, द वन एंड ओनली मस्ती भरा फन एशिया रेडियो.

0: We are heading to a short commercial break, but you guys don't go anywhere. And if you still haven't done your taxes, agfintax.com can help you out. We'll talk more as I come back.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
9: Call 857-891-8942 today.
10: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
11: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
10: कहाँ?
12: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
11: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, वन वाइब.
13: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
14: इट्स लॉसन.
13: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
14: इट्स लॉसन.
13: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
15: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स. गिव देम अ कॉल टुडे 214-631-2458. द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल.
16: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
11: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
17: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
18: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
19: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम और कॉल 469-734-3338. 469-734-3338. माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
4: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
7: इंडिया में?
9: तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
14: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
9: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
14: सच में सब संभालेंगे?
9: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
17: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442

0: सब कुछ एक ही जगह सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770 वेनेसा इवेंट्स योर सेलिब्रेशन पार्टनर

चुनी मेरी रंग दे ललारिया मेरे यार दी गड़ी दे नाल दी। वेलकम बैक टू योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो। दिस इज द ट्रैक दैट यू हर्ड इन द वॉइस ऑफ करण औजला। व्हाट अ वंडरफुल आर्टिस्ट ही इज आल्सो। एंड जहां भी ये भी शो कर रहे हैं आई थिंक एवरीथिंग इज गेटिंग सोल्ड आउट। दैट्स द craze that we see for Karan Aujla, especially Canada mein, because he's been there for a while. Canada has a huge following for him. Of course, India is not behind as well. You know, pichle kuch dinon mein Aamir Khan sahab ki barish hui, nahi barish nahi hui, shaadi hui, aur Mumbai mein badi barsatein pad rahi thi, aur mere ko yahan pe kaam tha. Main actually abhi ek ded mahina pehle छुट्टी पे गया था, तो वैशाली ठक्कर जी ने मेरे को छुट्टी दी नहीं, पर मैं उनकी शादी पे नहीं जा सका। तो उन्होंने बुरा नहीं बनाया, उन्होंने मुझे मैसेज किया और बोले मारवन कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड यार, काम सबको पड़ता है, अगले में आ जाइयो। और स्पेशली बोला कि उसके आगे लिखा था अगली में जरूर आना, ठीक है, फैमिली को साथ लाना। मैं कहा ठीक है भाई, नेक्स्ट वन। Today was the day, which was the 15th of July in the year 2012, when Korean pop singer Psy released his single Gangnam Style. It became a world hit, topping the charts in over 36 countries. 15th of July, the year was 2012. Can you imagine? This song came 14 years ago.

0: ओपन गंगनम स्टाइल।
1: आप में से और कौन कौन था जो आमिर खान की इस शादी पे नहीं जा सका, तो घबराइए मत। उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया, मैं आपको कन्वे कर देता हूँ। उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं मारो, आई अंडरस्टैंड यू बिजी, आप अगली वाली में जरूर आना, फैमिली को साथ लेके आना। तो इफ यू मिस्ड आउट इट्स ओके यार, मतलब दिस इवेंट कैन कम बैक अगेन। दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय तंदूरी फ्लेम। अगर खाना जबरदस्त खाना है और नॉर्थ इंडियन खाने के मजे लेने हैं, पंजाबी खाना खाना चाहते हो, वो भी होम स्टाइल टच के साथ, वन नेम इज तंदूरी फ्लेम। वाह क्या शायरी है मरवन, दादा शायर थे, वहां से थोड़ा जाता है। Located in Garland, Shiloh and George Bush, you do not want to miss their food. Especially when you go, हर बार गोभी मंचूरियन का नाम लेता हूँ और लेता रहूँगा जब तक आप लोग खाएंगे नहीं और मुझे बताएंगे नहीं कि आपको कैसा लगा। Especially with their kebabs and their tandoori naans, you will not go wrong. And remembering Gangnam style, छोड़ो यार, something style from Psy, the Korean pop singer released his track 14 years ago on today's date. This is your evening drive time show, the one and only Bindaas show on Fun Asia 104.9 FM. Let's take you to another banger here. Here we go.

I did tell you about AGFinTax before we went to the last commercial break that if you haven't done your taxes yet, what are you waiting for? कोई आएगा नहीं भैया आपकी मदद करने, अपनी हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ठीक है, बट औरत के सामने ज्यादा हिम्मत नहीं दिखानी, नहीं तो खुदा भी कुछ नहीं कर पाएगा. बट इफ यू हैव नॉट डन योर टैक्सेस येट, देन गेट योर टैक्सेस डन, गेट योर सेल्फ इन लाइन. अंकल सैम इज नॉट समबडी टू प्ले अराउंड विद, एंड AGFinTax कैन मेक श्योर दैट यू आर अप टू डेट. ऑल यू हैव टू डू इज विजिट द वेबसाइट AGFinTax.com, सी व्हाट ऑल यू नीड हेल्प विद, चाहे आपको बुक कीपिंग हो, पेरोल हो, चाहे आपको टैक्स प्लानिंग करानी हो, आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करानी हो, यू वांट टू मेंटेन योर फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, दे विल डू ऑल ऑफ दैट. AGFinTax.com is that website for you. Today in history, something else happened as well. What was it? Here we go.

0: It was the 15th of July in the year 1960 when Chubby Checker released his cover version of the track, which is The Twist that you're hearing right here. And there it stayed for 1 week and then went on to set a record at the time as the only song to reach number one during two different chart runs when it resurfaced with the top 100 again for 2 weeks in January. Uske baad ye baad mein sirf 2020 mein hua with Mariah Carey, All I Want for Christmas.
1: Kahan gaya? Kahan rakha tha? Suno na, mera wo wala set kahan hai?
2: Kaun sa?
1: अरे वो गोल वाला थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
2: ओ हाँ ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jitu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
5: Beta, 95% aaye?
6: Haan, mummy.
5: Good. Ab chaliye, papa, aap apna report card dikhaiye.
7: Mera?
5: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals, sare accounts updated.
7: Whoa.
3: School ka report card saal mein ek baar aata hai. But business ka report card har mahine. AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
8: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
9: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
8: Jahan har flavor करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज।
9: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
10: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
11: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-10 99.
10: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
12: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin.
13: Lekin aapke doctor ka appointment milna usse bhi mushkil hai. Ek hafta, 10 din, agle Tuesday.
14: Tarikh par tarikh.
3: Passion Health Primary Care gives you doc appointments on the same day visit. Aaj bukhar, aaj doctor. Aaj infection, aaj doctor. Aaj annual checkup, aaj doctor. Plus 30 minutes of dedicated appointment time. Passion Health Primary Care in Irving, Plano, Frisco, McKinney, Aubrey.
13: Visit passionhealthphysicians.com or call 214-666-6259.
15: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan और सफलता के योग हैं।
16: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
17: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
18: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
17: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
19: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.

इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के घरों से एक न्यूज उठ के आ रही है, टीवी चैनल पर चल रही है, उसमें दिखा रहे हैं कि महिलाओं ने अपने नौकर को कहा, समझाते हुए कहा, देखो कभी कभी मैं गुस्से में जरूरत से ज्यादा बोल जाती हूँ, तुम इस बात का बुरा मत बनाओ। किसने कहा? लेडी ने, मालकिन ने अपने नौकर से कहा कि देखो कभी कभी मैं गुस्से में जरूरत से ज्यादा बोल जाती हूँ, इस बात का बुरा मत बनाइए। उसी तरफ जवाब दिया नौकर ने, सो तो ठीक है मैडम जी, पर आप भी ध्यान रखें क्योंकि नौकर और पति में फर्क होता है। बंदा ये बिंदास है, न्यूज करता सिर्फ पास है, मतलब जो मेरे पास आती है मैं आगे बढ़ा देता हूँ और कुछ नहीं। वेलकम बैक टू योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो। 5 तो कब के बज चुके हैं, 6 बजे वाला आवर चल रहा है, 6:26 इन द स्टूडियो क्लॉक। जुलाई की 15 तारीख वेंसडे की शाम है। क्या प्लान है आपका वीकेंड का? वैसे तो अब वीकेंड के लिए एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है, बिकॉज आने वाली है जी गेम, फीफा वर्ल्ड कप, एंड व्हाट अ गेम वी सॉ टुडे। फैंटास्टिक गेम, नहीं बिल्कुल फुल ऑन मजा आया जी। अर्जेंटीना अनएक्सपेक्टेडली विनिंग द गेम इन द लास्ट मिनट। पिछली गेम में भी इन्होंने यही खेल रचाया था, मुझे लगता है इनकी मोडस ऑपरेंडी यानी कि तरीका वारदात ही है। इंग्लैंड ने एक गोल किया जी, एंड दैट वाज इन द 70th मिनट ऑफ द गेम। मैं देख रहा था, मैंने कहा आज इंग्लैंद गेम जीतेगा, एंड देन इंग्लैंड स्ट्रक देयर फर्स्ट गोल। अब जब मैंने देखा कि मिनट घड़ी के कांटे हैं कम, मुझे एक बार लगा कि नहीं यार, अर्जेंटीना फिर से एक गोल मारेगा और ये गेम जाएगी एक्स्ट्रा टाइम पे। आप भी कुछ सोच रहे होंगे, बट भैया उसके बाद अर्जेंटीना ने जब अपना दूसरा गोल जब मार दिया तो हमें पक्का यकीन हो गया कि दिस गेम इज डेफिनेटली गोइंग टू अर्जेंटीना, एंड दे प्लेड सो वेरी वेल। नाउ वी आर लुकिंग फॉर द फाइनल व्हिच इज डेफिनेटली गोना बी समथिंग टू लुक आउट फॉर। एक्साइटिंग गेम रही ना आज, आप सबने कहाँ कहाँ देखी, कैसे कैसे देखी, मुझे कॉल करके जरूर बताइएगा। एंड फॉर नाउ आई एम गोना टेल यू दैट दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय पैशन हेल्थ केयर। इफ यू हैवंट डिसाइडेड योर पीसीपी येट, देन पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर विल डेफिनेटली बी द वंस यू शुड चूज, बिकॉज दे हैव टू मेनी लोकेशंस अराउंड यू। मतलब टू मेनी लोकेशन का ये नहीं कि बहुत ज्यादा लोकेशन है, नहीं, इनकी लोकेशंस इतनी हैं कि आपके हर शहर में एक ना एक लोकेशन जरूर है, एंड दे आर द वंस that really take care, they go the extra mile to make sure that you're doing well and you are feeling well, better. And for that, their average consulting time is 30 minutes. Now, why do they spend 30 minutes? Because they want to know what's going on with you. It's not just a masking procedure, ke bhaiya steroid de diye, bande ko chalta kar diya, which is what you usually see with different ERs, especially here in the United States. But here, they take care of you. They speak your language, taaki aapke parents comfortable rahe. And they make sure that all of the procedures are done in-house. So, if you're looking for a PCP, my recommendation is get with Passion Health Primary Care with a location close to you.

आंख में अंजन, दांत में मंजन कॉल आया था मुझे, उनका नाम था रंजन। बोले मारवन, बात ऐसी है कि फुटबॉल की जो आपने बात कही, बिल्कुल एक्साइटिंग हो गया था मैच। एक टाइम पे तो लगा कि पेनल्टी शूट आउट पे जाएगा, फिर वो बोले कि मैं ना एक्चुअली ये काउबॉय स्टेडियम में जब गेम चल रहा था ना, तो मैं उनकी एक टीम में से इन्वाइटेड था, तो मैं उस इवेंट पर गया था। मैंने कहा हाँ मुझे पता है, वहाँ अनाउंसमेंट हुई थी कि वी आर मिसिंग मारवन दास, यही बताने के लिए कॉल कर रहे हो ना? बोले हाँ मैं लेट हो गया था। कोई बात नहीं, ज़िंदगी में कभी कोई बंदा लेट नहीं है भैया, हर चीज़ का टाइम है और खूबसूरत टाइम है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट। अगर आप ये सोचेंगे कि ज़िंदगी झंड है फिर भी घमंड है, तो वैसी रहेगी। और अगर आप सोचेंगे कि सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है, तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगी जाएगी। अब जैसे मेरा दोस्त है, इस दोस्त को बेचारे को बड़ी सैडनेस हुई, बड़ा डिप्रेशन में था। मैंने कहा अरे काम कर, तू पहाड़ों में जा और अच्छे से सीनिक व्यू पे इंजॉय कर, कहीं जाके वहाँ पे आवाज़ लगा कि अपना नाम गूंजता हुआ सुनाई देगा तुझे, जाके बोल वहाँ पे जिंदगी जिंदगी। तो वो गया गया, उसका वापस कॉल आया, कहता भाई मैं गया था और मैंने जाके वहाँ पहाड़ों में ज़ोर से आवाज़ लगाई जिंदगी। तो कहता वापस आवाज़ आई, झंड है झंड है झंड है झंड है।

0: जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजरवे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
2: हेलो टेक्सस परिवार, वेयर डू यू गो व्हेन बैंक सेज नो? आर यू सेल्फ एम्प्लॉयड and are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Co at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. And this 926641.
3: Mere kal wale khane mein dosa, आने वाले खाने में डोसा।
1: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है, या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
4: सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन, मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली, और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी। फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस।
1: विजिट सैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 120 or Custer Junction.
4: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
5: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
6: हाँ।
5: घर रिलोकेट करनी है?
6: हाँ।
5: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
6: हाँ भाई हाँ।
5: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
7: डॉक्यूमेंट शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
8: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट, ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट, ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 years or older to get

Storming into a million hearts. 104.9 FM. Number one hit station.

है जुनून, टेकन फ्रॉम द मूवी न्यूयॉर्क. प्रीतम का म्यूजिक, के के साहब की आवाज, एंड व्हाट अ लवली वॉइस ऑफ के के दैट वी लॉस्ट अ लिटिल टू अर्ली. आई थिंक इट वाज नॉट हिज टाइम टू गो, बट दैट इज व्हाट इज लाइफ मैन. एंड जिंदगी एक ही बार आती है, दैट्स व्हाट वी रियलाइज एवरी टाइम समथिंग लाइक दिस हैपेंस. उससे पहले हमें लगता है हम सब इनविंसिबल हैं, बट दैट इज नॉट द केस पीपल. यू हैव वन लाइफ, मेक द मोस्ट ऑफ इट व्हाइल यू कैन, व्हाइल यू हियर, बिकॉज स्वर्ग और नर्क तो भैया यही है. इट्स ऑल व्हाट यू मेक ऑफ योर लाइफ. बट इन अ गुड न्यूज देयर फ्रॉम हेमा मालिनी जी अप्रिशिएटिंग दीपिका पादुकोण, सेड कि अगर मेरा कोई वो बने, क्या बोलते हैं जी जिसको बोलते हैं बायोपिक, शी वॉन्ट्स दिस गर्ल दीपिका पादुकोण टू प्ले हर रोल, एंड सेज शी इज अ ब्यूटिफुल talented girl. Speaking at an event commemorating her 60-year journey in Indian cinema, the actress showered praise on Deepika and said she would be happy to see her step into the role. If she wants, she can do it. Anybody can do it. Deepika is a beautiful, talented girl, Hema said. That is the update from Fun Asia Studios and from Hema Malini ji about Deepika Padukone playing her role in maybe a next biopic that it might be in the plans. Ek gana aur hai, iske baad lena chahta hoon ji aapse ijazat. Stay tuned to Fun Asia for this next track while I come back.

0: और देखते हैं कौन है हमारे साथ जिनका टाइम नहीं निकलेगा बल्कि टाइम बन जाएगा, बिकॉज $50 के बिल पे $20 ऑफ पाएंगे ये। गुड इवनिंग फनेजिया, हु इज दिस? हेलो हेलो हेलो भैया, रेडियो का वॉल्यूम कम, अपना ज्यादा पीछे की आवाजों को बोलो, दरवाजे बंद, और अब बात करें मेरे साथ।
1: हाँ जी सर, मैं रचित बोल रहा हूँ।
0: कौन बोल रहे हैं? रचित
1: जी। सर
0: रचित जी कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर?
0: ऊपर वाला मेहरबान है सर, चला हुआ है काम, बस दुकान बंद करने का टाइम है। मैंने कहा जाते जाते शटर खुला है, एक आधा यू नो डील नीचे से पास कर ही दूं।
1: अरे वाह सर, देखिए अभी
0: सिंगर का नाम मालूम है? बाकी सब ठीक, बात चल रहा है। सिंगर का नाम मालूम है?
1: तो सिंगर हैं अमिताभ भट्टाचार्य,
0: अच्छा जी,
1: जिगर और सचिन।
0: जिगर और सचिन और अमिताभ भट्टाचार्य, बिल्कुल ठीक है भैया। यू हैव वन योर सेल्फ $20 और $50 बिल एट मिराज हुक्का लाउंज। मकीनी जा सकते हैं?
1: हाँ
0: जाने देती
1: बिल्कुल,
0: है, जाने देती है ना वहां भी?
1: हम साथ में जाएंगे
0: ना सर। बस पे ठीक है, होल्ड ऑन द लाइन, आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन। जाने दे या ना जाने दे, साथ जाओ ना यार।
2: तेरा भी भूल ना, मेरा भी चल रहा है। व्हाट अबाउट यू भाई, लिख के दूं क्या?

भेड़िया फिल्म से लिया गया था जी ये वाला गाना, एंड यस इट वाज द थ्री सिंगर सचिन जिगर एंड अमिताभ भट्टाचार्य, एंड दैट इज ऑल द टाइम दैट आई हैव फॉर यू टुडे, बट आई एम गोना लीव विद अ प्रॉमिस कि उस ऊपर वाले ने जिंदगी दोबारा दी जनाब, कल सुबह का अगर मैंने सूरज देखा तो आई विल बी हियर इन द इवनिंग टू एंटरटेन यू ऑल विद योर फेवरेट इवनिंग ड्राइव टाइम शो जिसका नाम है द बिंदास शो ऑन 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. जाते जाते हमेशा यही कहूंगा कि अपना ख्याल रखना सबसे जरूरी है. The most important person is the man or the woman that you see in the mirror. Everything revolves around you, your family members, your aspirations, your goals, your arts, you know, your talents, your little escapes that you look for. ये सब कुछ आपके अराउंड रिवॉल्व करता है. And if you take care of yourself, everything in the whole, you know, realm of you will become all right and will be able to see and reap the benefits of your joy. Because agar hum khud hi acche nahi honge, we are always in a bad mood or cranky, that reflects, man, and that goes to your kids, that goes to your dogs, that goes to your family. And it's surprising that, you know, I've learned a lot from my dogs also, ki agar main acche mood mein nahi hoon, even the dogs sense that and they start to keep a distance from me because they feel the anger. So just like that, a small thing inside you, which is your joy, which is your happiness, if that gets killed down, if your light is dim, trust me, your outer light is dim, and that can be felt. So make sure to keep the inner light happy, and that is all in your control. Jaate jaate ek caller hai, kar lete hain inse baat. Outer light is dim. Radio ka volume kam kar le, apna bada le. Ek minute hai aapke paas before I go. What can I do for you? ये तो बाजा बजाने के लिए बुलाया, टंग टंग टंग कर रहे हैं. बताओ, इनर लाइट ऐसे नहीं जलती. आराम से बैठिए, टेक द टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नीड फॉर यू एंड फॉलो दैट नीड, गेट टू दैट स्पॉट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अदर्स अराउंड यू. विद दैट, इट इज बंदा बिंदास, बार बिंदास साइनिंग ऑफ. शबा खैर, अदियोस.